0: Kira, namaste, sasrikaal, assalamu alaikum, bula aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein jiska naam hai Lunchbox Show. Thank you. Kaisa raha aapka din abhi tak so far? Bataiye mujhe 5599 pe. मेरा नाम केतन है और मैं हूँ 3 बजे तक बहुत सारी बातें करेंगे. सबसे पहले तो ये नया गाना मैं सुनता हूँ. आई मीन मेरे लिए तो नया ही है, आई एम प्रीटी श्योर आपने तो ऑलरेडी सुन रखा होगा, बट लेट मी प्ले इट हियर. बच्चे की जान लेगा क्या, अरिजीत सिंह की आवाज़ में. यार अरिजीत सिंह नहीं गए उन्होंने रिटायरमेंट लिया, बट डजंट लुक लाइक ही एक्चुअली टुक रिटायरमेंट. आई डोंट थिंक सो ही विल. यार मतलब हो सकता है इन्होंने प्री रिकॉर्डिंग हुई हो, कोई भी नहीं चाहता, बट इंडस्ट्री का जो बिजनेस का जो प्रेशर है यू नो कमर्शियल वे में, दैट इज व्हाट मेकिंग हिम, दैट इज व्हाट मेड हिम टू यू नो टेक अ ब्रेक, नॉट अ ब्रेक एक्चुअली, रिटायरमेंट फ्रॉम द प्लेबैक बॉलीवुड प्लेबैक. बट वो जिस जगह है, आई डोंट थिंक सो ही नीड्स एनीवन नाउ. ही हिमसेल्फ कैन क्रिएट अमेजिंग प्रोजेक्ट्स, ही कैन एक्चुअली डू, एंड उनके जो फैंस हैं वो उन्हें फॉलो करेंगे वहां पे भी. So yes, आप बने रहिए. कोई फेवरेट गाना आपका अरिजीत सिंह का तो मुझे बताइए. अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, आप इसको सुनिए. वेरी वर्सेटाइल, वेरी अमेजिंग, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी वेरी नॉलेजफुल सिंगर. ये नोट्स पे भी गाते हैं, दैट हाउ मच ही गॉट द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंड अबाउट म्यूजिक.
1: बचाओ क्या,

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan and thank you so much for sending the messages. This is the homesick remedies ka ek message jo maine pick kiya hai. Well, yes, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस मैसेज की. राहुल भाई ने भेजा है. Kira Ketan, last night I had a massive craving for proper fragrant biryani. I ordered an $18 authentic dum biryani, dum biryani, जैसे दम आलू होता है ना वैसे, from a local spot. Waited 40 minutes in the cold, cold तो था यार कल, ठंड बहुत थी, मतलब it was freezing यार, and opened the container to find out, find plain turmeric yellow rice with two dry boiled chicken piece toast on top, zero masala, zero aroma, क्या मतलब होता है उसका? Back home in Suva, biryani is a sacred art, laid with rich spices, crispy fried onions and tender meat cooked on a dum for hours. My Indian flatmate is also saying the same thing. Hyderabadi biryani is practically the religion. Paying $18 for a bowl of yellow colored boiled rice in Auckland just broke my soul. ये उन्होंने बताया है तो कहाँ पे? Well, I know few places, but of course मैं उनका यहाँ पे mention नहीं कर सकता, but I can just say tell you that location wise, और ये मेरी personal choice है जहाँ से मैं खरीदता हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि इसे वहीं पे मिलता होगा. I'm pretty sure यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से definitely try किया होगा. One is अभी तक मैंने खाया है जहाँ पे मुझे सेंड्रिंगम का जो बिरयानी है, आई लव्ड इट. मतलब इतना सही लगता था, मतलब इतना सही था कि मैं पापड़ टोटे जब शिफ्ट हुआ उसके बाद एवरी टाइम आई यूज़ टू ट्रैवल ओवर देयर टू सेंड्रिंगम एंड देन या आई यूज़ टू बाय देयर. बट देन फिर मुझे एक शॉप मिली जो ऑब्वियसली उतना बेहतरीन टेस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट स्टिल वॉज गुड इनफ. तो मैंने पापड़ोटे में एक जगह जो स्कूल है एक उसके जैसे सामने ही, अपोजिट स्कूल पापड़ोटे स्कूल है उसके सामने ही आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, तो वहाँ से हमने ये चीज़ मैंने ट्राई की, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो आई कैन फील द टेस्ट व्हाट आई वाज गेटिंग, बट इन मनी वे आल्सो इट वाज आई थिंक $2 or $2.5 चीपर. तो मैंने कहा यार हाँ ठीक है यार, मतलब इतना मेजर डिफरेंस भी नहीं है, और कभी अगर उस तरफ गया तो मैं लेके आ सकता हूँ, बट नॉट जस्ट फॉर दैट डजेंट मेक सेंस लाइक टू ट्रैवलिंग ऑल द वे. क्योंकि मुझे लगा कि हाँ उतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस तो है. बट अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता ना, क्योंकि मैंने और भी जगह ट्राई किया पापड़ टोटे में, मुझे कहीं पे नहीं लगा वो टेस्ट, इस वजह से मैं आई स्टिल यूज टू गो देयर. सो या यू ऑल्सो गो एंड ट्राई. आप मुझे कॉल करना ऑफ एयर में एंड देन आई टेल यू व्हाट लोकेशन इज दैट. बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द मैसेज एंड आई फील बैड फॉर यू व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड यस्टरडे. भैया बट थैंक यू अगेन फॉर सेंडिंग द मैसेज.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम keep calm because Punjabi swag is on.

0: idea. Streaming on Rover.
1: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enrol by midnight 4 October, so don't leave it too late.
2: Get your EasyVote card. Enrol by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
3: India comes to town. Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
4: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
5: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है हाँ
6: अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
9: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $10 million this Saturday. Get your Powerball ticket in-store or online.
10: Bunnings has great value nailed across the store. And with daylight savings starting this weekend, we can help you replace those smoke alarm batteries with EverReady 9-volt battery 2-pack, just $5.69. Head in-store or online for more great value. Bunnings win!
11: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 एएम टू 8 पीएम देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% आरओआई प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट डीएलडी डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर
12: Non-stop Bollywood.
13: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
12: हम playing Bollywood's biggest hits.
14: Lunchbox with Ketan.
15: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
14: हम office shoutout.
16: Welcome back, message आएगा. They know what shop I was talking about. So good on you. Yeah, I hope. मतलब ये तो बात अच्छी है that I made you hungry, right? So अभी अगर break मिलता, if you're working, थोड़ा सा break ले लो and then just go and visit to these places. Hope they are nearby only. और या फिर एक online apps, एक नहीं actually, काफी online apps भी हैं जहाँ से आप order कर सकते हो. But don't kill your, you know, you feel like यार मुझे इसकी craving हो रही है. So don't give the excuse to that. अनलेस आप बहुत ही जिम फ्रीक हैं वो सब चीज़ें हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करता जब मेरा मन करता है आई डोंट थिंक कि भाई क्या है क्या नहीं है मैं जस्ट खाता हूँ लाइक आई एन्जॉय बट थैंक यू सो मच आपके इस रिस्पॉन्स के लिए देवेंश भाई दिविनेश आनंद भाई ये रहा मैसेज अबाउट द ऑफिस शाउट आउट अंजलि ने किया है ये हाय केतन आई एम अंजलि फ्रॉम पापेटोटे माय रेंट इज अबाउट पीपल हु बोरो योर क्लोथ्स एंड रिटर्न्स देम वीक लेटर माय कजिन बोरोड माय फेवरेट जैकेट सेइंग दैट शी नीड्स इट जस्ट फॉर वन नाइट इट्स बीन 3 weeks नाउ एंड एवरी टाइम आई आस्क शी सेज आई विल ब्रिंग इट टुमारो एट दिस पॉइंट आई थिंक आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट जस्ट टू गेट माय ओन जैकेट बैक एंड देन देयर इज अ फनी इमोजी आफ्टर दैट That's so true. That is so true. दोस्तों को या siblings को देना is like यार कहावत यहाँ पे ये है कि भाई जो तेरा है वो मेरा भी है ये यहाँ पे होता ही है इनफैक्ट मुझे भी कभी लगता है यू नो आई यूज टू यूज अ लॉट ऑफ क्लोथ्स बाय यू नो फ्रॉम माई फ्रेंड्स बैक इन इंडिया यहाँ पे तो नहीं ऑब्वियसली देन वी रियलाइज कि यार पर्सनल कपड़े और ये सारे यूज़ नहीं करने चाहिए सो यस

0: है ना। थैंक यू, बट थैंक यू अंजलि, एंजॉय। ये गाना आप ही के लिए चलाता हूँ मैं, बंद 2.0।
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स शो। ये गाना वैसे जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में आपने सुना है, बूंद बूंद में। वेल यस, रिक्वेस्ट और भी आई है गानों की, हम डेफिनेटली विल ट्राई टू प्ले दैट, होपफुली हमारे लिस्ट में हो। ऐसे ही आप बस मैसेज भेजती रहिए। बट सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की। 24 सितंबर को 1905 को वेलिंगटन के हेनिंग स्ट्रीट में जो कुम योंग, जो चाइनीज इमिग्रेंट्स और रिटायर्ड माइनर थे, को लियोनेल टेरी ने गोली मार दी थी। और टेरी वाइट सुप्रीमेसिस्ट थे और न्यूजीलैंड से नॉन यूरोपियन इमिग्रेंट्स को हटाने की रेसिस आइडियोलॉजी रखते थे। जो कुम योंग की डेथ हॉस्पिटल में हुई, टेरी को अरेस्ट करके ट्रायल किया गया और डेथ सेंटेंस दिए गए, लेकिन बाद में सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिसनमेंट में बदल दिया गया। 2006 में हेनिंग स्ट्रीट पर जो कुम योंग की मेमोरी में एक मेमोरियल प्लेक भी लगाया गया था। एंड यस, ये इंसिडेंट न्यूजीलैंड में चाइनीज कम्युनिटी के खिलाफ उस पीरियड के रेसिज्म और एंटी इमिग्रेंट्स हेट्रेड को हाईलाइट करता है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए कुछ बात करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ, एक बहुत ही बढ़िया टॉकिंग कंटेंट आपके लिए हम लेके आए हैं, जो सचमुच आपको काफ़ी नॉलेज देगा। हर एक इंसान को कंसर्न होता है दैट वंस ही और शी इज यू नो लाइक उनके मरने के बाद, पता नहीं मैं जिस वे से बोला मुझे लगा शायद ऑफेंड हो सकता कोई, उसको मैं फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके जाने के बाद, अगर आप लाइफ छोड़ते हैं, अपना शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है। होपफुली एक्सट्रीम ना हो, बट दिस इज ट्रूथ, राइट। एक ना एक दिन तक सबको जाना है। सो आप जिंदगी भर तक जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं, जिंदगी भर तक जिसके लिए भाग दौड़ करते हैं, आप अपने एसेट्स बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसे को सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, किस चीज के लिए? फॉर ईदर योर फ्यूचर और योर चिल्ड्रंस फ्यूचर, राइट। सो यस, आई मीन योर एज एन यू एंड योर पार्टनर्स फ्यूचर। तो उसके बाद क्या, इफ समथिंग हैपन टू यू, उसके बाद क्या? आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लगता था कि यार अगर मुझे कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली शायद मेरे पार्टनर को जाएगा, या फिर मेरे बच्चों को जाएगा, या फिर मेरी फैमिली को जाएगा, राइट। दैट्स व्हाट आई थॉट, बट नो, इट डजंट वर्क ऑल द टाइम। सो यस, इसी कंफ्यूजन को, इसी बात पे अगर आपको लगता है यही सच है, तो मेरे को लगता है आपको ये ताने पिंटो, जो कि सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट, यही थी यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की इस बारे में और उन्होंने बताया है कि विदाउट अ विल निर्णय में क्या होता है। और इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमें ड्राइव लिखिए 5599 पे भेज दीजिए, ताकि आप तक ये लिंक डायरेक्टली पहुंच जाए। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यू नो नॉलेजफुल। एंड साथ में अगर आप व्हाट योर सोसाइटी थिंक अबाउट द सक्सेस, लाइक डेप्थ, व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन, अगर वो पॉडकास्ट सुनना है तो उसे भी आप BF लिख के हमें 5599 पे भेज दीजिए।
1: With Ketan.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: Few things sound better than logs crackling in a fire. Rain on a tin roof, my voice. And the words, you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
9: All right, Pepper, now we're going to do a radio ad.
10: Can't you just use my line from the TV ad?
9: Well, let's just do it again, please, Pepper.
10: Phone dollars are for phones. Obviously.
9: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
10: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
9: Q's and C's.
10: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/1Wallet.
9: Call any input.
10: One New Zealand. Let's get connected.
11: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
12: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat and this seat.
1: And that's it.
12: James, this is a radio ad.
1: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
11: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिल कैट रियल एस्टेट एंड BNW डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट JW मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट billcaps.com प्रमोटेड बाय वेबटाइम
13: Lunchbox with Ketan.
14: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
15: चटनी शॉट्स.
0: चटनी शॉट के सेगमेंट में स्वागत है. थोड़ा सा न्यूज पढ़ लेते हैं. न्यूजीलैंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कुछ फॉर्मर करंट स्टाफ ने एलिगेशंस लगाए हैं कि मैनेजर्स ने स्टाफ को कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने से अवॉइड करने को कहा है क्योंकि वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एक्ट OIA के थ्रू पब्लिक हो सकती है. एक हुई मीटिंग में स्टाफ को टीचर्स की करिकुलम क्रिटिसिज्म रिकॉर्ड ना करने पर को कहा गया है. कुछ विसल ब्लोअर्स के अकॉर्डिंग माओरी वर्ड्स जैसे ऑटेरोआ को डॉक्यूमेंट से रिमूव करने के इंस्ट्रक्शन भी वर्बली दिए गए हैं. मिनिस्ट्री का कहना है कि एलिगेशंस में ट्रांसपेरेंसी रिकॉर्ड कीपिंग और OIA कंप्लायंस से रिलेटेड इश्यूज हैं और इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है. चीफ ऑम्बड्समैन जॉन एलन ने कंसर्न को सीरियस बताया है और ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन कंसिडर भी करी है. तो ये थी अभी की लेटेस्ट खबर. बट यस, हमें एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई थी रिगार्डिंग दिस वन सॉन्ग. पाजी ने तो अपना नाम नहीं बताया बट यस, इन्होंने रिक्वेस्ट की है. अल्फाज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है नहीं वो गाना, बट आई ट्राई टू प्ले इट ऑन यूट्यूब. ज़्यादा तो नहीं, ऑब्वियसली लिमिटेशंस है, बट हियर यू गो. एंजॉय द सॉन्ग फॉर अ वाइल.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
2: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माइटिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग स्टोरेज शेल्विंग रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स टीज एंड सीज अप्लाई एंड्स अक्टूबर 14 स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
3: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us, Manukau and Poke Kohe, where dreams begin.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, आज 16 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 8 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, काफी सनी रहने वाला है, 0% चांस है बारिश के, हवा भी ठीक ठाक है, लेकिन आज का सनसेट होगा 6:19 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे,
1: लंच के मंच पे, वेल यस, लंच वर्क शो इट इज, और आपके इस आपका इस शो में फिर से स्वागत करता हूँ। द सेकंड आवर इज अबाउट टू बिगिन, अबाउट नहीं एक्चुअली हो चुका है शुरू। पहला गाना ही है एकदम तूफान वाला, यानी कि सिद्धार्थ महादेवन, यू ऑल नो हु इज ही, एंड अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, ही इज आई थिंक यंगर सन, दे आर टू सन, जो शंकर महादेवन है उनके दो बेटे हैं। आई एम अज्यूमिंग दिस इज यंगर वन, नो सिद्धार्थ इज बिगर वन, राइट, करेक्ट करो यार मेरे को, करेक्ट करो। पर एनीवेज ये गाना जो है तूफान, बहुत ही अमेजिंग गाना है, इसको एंजॉय करो। मिलते हैं थोड़ी देर में कुछ और चटपटी खबरों के साथ, बट यस, और एक और है काफी बढ़िया गाना है आप सभी के लिए, वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल।
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक. वेल यस, जल्दी से फोन उठाइए और मुझे मैसेज भेज दीजिए रिगार्डिंग लंच टाइम रन लाइन. जी हाँ, 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं. और एक और आपसे मुझे सवाल ये पूछना है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल एक्चुअली. न्यूजीलैंड में पहली बार ग्रेप वाइंस कब प्लांट हुआ था, ये मेरा सवाल है आप सभी से. न्यूजीलैंड में पहली बार ग्रेप वाइंस कब प्लांट हुआ था. 5599 से नंबर जहां पे आप मुझे दोनों चीज भेज सकते हैं.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: हम.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, sirf Rova par.
1: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
2: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
3: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
2: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
4: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
5: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
6: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
7: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
8: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरिज ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर
9: Lunchbox with Ketan.
10: मुझे पसंद है लड़का.
9: हम. Lunchtime Rant Line.
11: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है. यहाँ पे हम बात करते हैं यूजली दैट कुछ अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो सच में आपको इरिटेट किया हो तो यस यू कैन डेफिनेटली टेल इट टू मी. यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. अभी तक हाल फिलहाल तो मैसेज नहीं आया बट यस यू स्टिल हैव टाइम. आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे. मीनवाइल हम कुछ और चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज है मैं उसे पढ़ लेता हूँ. इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस. पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग. रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट. If you or someone is in immediate danger, please call 111 or emergency services. So yes, if you know anyone who actually need your help in this way, definitely help them. Ya fir aap 0800-862-342 pe call karke confidential chat bhi karwa sakte hain ya kar sakte hain. But yes, let's talk about other thing as well. Abhi just message aaya mujhe. Yes, ye hai message. Wait, let me just open it. There you go. Samir भाई ने भेजा है. समीर पता है समीर जब भी नाम सुनता हूँ मेरे को ना ठंडी हवा का झोंका यही दिमाग में आता है. इफ़ यू रिमेंबर इफ़ यू हैव सीन द मूवी मुझसे शादी करोगी तो जब सलमान खान जब पैदा होता है उस फिल्म में तो जो मदर होती है उनकी वो पूछती है पंडित जी से कि इनका क्या नाम रखें तो कुंडली देख के बोलते हैं कि ये हमेशा गुस्से में रहेंगे ये करेंगे तो समीर इनका नाम रख दो. समीर इज़ लाइक अपोजिट ऑफ गुस्सा सो इट्स लाइक ठंडी हवा का झोंका समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स वाई यू नो दैट थिंग यू नो मेरे माइंड में इतनी बैठ चुकी है दैट आई डोंट सी जब ये नाम आता ना मैं यही डायलॉग बोलता अरे वाह समीर ठंडी हवा का झोंका. बट समीर ब्रो आई एम सो सॉरी अगर ये मतलब नहीं है तो बट प्लीज़ बताइए मुझे आपके नाम का व्हाट यू थिंक इज़ द मतलब. तब तक हम मैसेज पढ़ लेते होंगे. माई रेंट इज़ अबाउट पीपल हु आस्क यू टू कीप अ सीक्रेट एंड देन टेल एवरीवन लाइक 5 मिनट्स लेटर. A friend told me something privately and made me promise not to tell anyone. Later that same day, I heard three other people talking about it. If you can't keep your own secret, please don't expect me to. ये सही है यार, ये सही जवाब दिया इन्होंने. एक्चुअली ऐसा होता है, ये कैसा, वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना, ये कैसा सीक्रेट है जो पूरी दुनिया को पता है. क्वाइट फनी बट हाँ, मतलब दे वॉन्ट टू टेल, दे वॉन्ट टू शेयर, बट एट द सेम टाइम दे टेल यार यार प्लीज यार किसी को बताना मत. और वही चीज़ वो रिपीट करते हैं टू अदर पीपल एज वेल. सो एवरी पर्सन थिंक यार मेरे को नहीं बताना है, मेरे को नहीं बताना है, बट देन दे हियर समवेयर कि भाई यार ये इसको भी पता है, इसको भी पता है, इसको भी पता है, तो सीक्रेट कैसा हुआ भाई? व्हाई यू ऑलवेज टेल कि भाई किसी को बताना मत, व्हेन यू योरसेल्फ इज टेलिंग टू एवरीवन. सो यस, सही जवाब दिया समीर भाई आपने, बहुत ही थैंक यू. समीर का फिर से मैसेज है, वो कहते हैं कि यस माय नेम मीनिंग इज ठंडी हवा का झोंका. अरे वाह, थैंक यू यार, सो आई वॉज ऑन पॉइंट, बट थैंक यू. एंड लेट्स प्ले दिस सॉन्ग अमेजिंग, सांसों की माला फॉर यू समीर भाई.
9: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स मेरा नाम केतन है मैसेज आया है किसी का रिगार्डिंग मैंने एक डायलॉग का बोला था ना दैट समीर नाम सुनते ही मुझे वो डायलॉग याद आता है ठंडी हवा का झोंका और मैंने कहा था कि मुझसे शादी करोगी मूवी का है इन्होंने कहा है कि उस मूवी का नहीं इसमें दिल दे चुके सनम की मूवी का है यार मेरे को पता नहीं दिल दे चुके सनम मूवी का है या नहीं है क्योंकि आज तक मैंने वो फिल्म जो है ना नॉन स्टॉप पूरी फिल्म नहीं देखी एक साथ मैंने टुकड़ों टुकड़ों में देखी है मतलब मुझे स्टोरी पता है क्या होता है क्या नहीं होता है गाने तो एक से बढ़कर यही है और आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई केम टू नो दैट मेरे फेवरेट के का भी उस मूवी में गाना है

0: तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा है। बट यस, हम दिल दे चुके सनम का ये गाना, मुझे पता नहीं वो डायलॉग उसका है नहीं है, बट मुझसे शादी करोगे का डेफिनेटली है। मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए एंड देन मुझे बताना इफ इट इज नॉट।
1: बाबा, इसका नाम क्या रखें?
2: समीर, ठंडी हवा का झोंका।
1: समीर,
2: इसका उग्र स्वभाव है ना, इसलिए इसको शीतल रखेगा, ठंडा रखेगा। आजा आजा आजा आजा आजा। आहा समीर, एक बात बताऊं
1: जी,
2: इसके विवाह के बारे में भूल कर भी मत सोचना।
0: यार ये मूवी सही है यार, कभी भी देख लो, कितनी बार भी देख लो, कभी मन नहीं भरता है। क्या मूवी है यार, मतलब क्यों नहीं बनती आजकल ऐसी फिल्में, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बट ब्रो, होप आपको जवाब मिल गया हो, बट अगेन थैंक यू सो मच यार ये बताने के लिए। बट मैं एक बार वहाँ पे भी सर्च करता हूँ अगर हम दिल दे चुके सनम में ये डायलॉग है या नहीं है। बट यस, ये डायलॉग मैंने जो अभी प्ले किया है ये डेफिनेटली मुझसे शादी करोगे का था। जी हाँ, आप एक बार सर्च करना, ये मेरे ख्याल से समवेयर बिफोर 3 मिनट के आसपास ही आता है ये डायलॉग। जस्ट वॉन्ट टू, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच एंड सी। आपने भी लिंक भेजी है, डेफिनेटली मैं चेक करूँगा। आई कांट कॉपी फ्रॉम देयर एंड ऑल, मेरे को मैनुअली यहाँ पे करना पड़ेगा। बट अगेन थैंक यू यार, थैंक यू ब्रो। चलिए ये गाना मैं आपके लिए चलाता हूँ, झूम झूम, ऐश किंग और लूलिया वंतुर की आवाज़ में।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए फटाफट से कुछ कीर्तन वाली बातें कर लेते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपको कीर्तन बहुत पसंद होंगे, आप डेली रोवा के जरिए भी बहुत सुनते होंगे। वेल यस, हम उसे अपडेट करने वाले हैं और उस अपडेट के प्रोसेस में एक्चुअली इस फ्राइडे यानी कि कल 25 सितंबर को वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो शाम के 7 बजे बाद अगर आप फ्री नहीं है तो हो जाओ और सीधे पहुंच जाओ इस जगह पापाटोटो वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू में, जहां पे हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग होने वाली है। इस पूरे प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हैं इस जगह पे। एंट्री कंप्लीटली फ्री है, दैट मींस देयर इज नो टिकट, वी विल बी लाइक वी आर सेलिंग, सो यू जस्ट कैन पॉप इन एंड एंजॉय द शो। वहां पे काफी रिफ्रेशमेंट होने वाला है और कावा भी वहां पे मिलेगा, तो यानी कि आप आइए और ये चीज आप खरीद सकते हैं वहां पे। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी एक और बढ़िया है, वो है प्राइजेस जीतने का, बहुत ही बढ़िया मौका आपके पास। तो यस, आ जाइए, कल मिलते हैं हमारी टीम के साथ एट वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो शाम के 7 बजे के बाद।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: ड्राइविंग यू होम, ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं है उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो।
4: अभी ब्रांड हो गया ना।
3: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.

0: Briscoe's Half Price Birthday Blowout is on now with half price off the entire store. That's right. Every single item in store nationwide is half price. All stores open till 9 tonight. Plus, we're giving away $25,000 cash. See online for TCs and exclusions.
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
4: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
3: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
6: This is warehouse country. Where on your way home from work, school or wherever, you can top up on eggs, nature's fresh bread and milk. At the best price in the country. From, well, the warehouse.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: Lunchbox with Ketan.
9: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
8: इसके पीछे
10: हम
8: लंच के मंच पे
11: थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉलीवुड की लेकिन यस जो अभी हमारे साथ डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग कि भाई वो जो फिल्म का जो डायलॉग है वो बेसिकली मुझसे शादी करोगी नहीं लेकिन कुछ और है लेकिन एक्चुअली मैंने भी पता किया वीडियो से तो यस वो भी सही है मैं भी सही हूँ यानी कि दोनों ही सही हैं लाइफ कितने सॉर्टेड हो जाती है ना लाइक जब सभी सही हों डू यू थिंक सो बट आई डोंट थिंक सो सभी सही होते हैं अब ये बात तो हो गया तब हम बॉलीवुड की कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक और बॉलीवुड की खबर पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी मैं न्यूज़ जो है आप तक पहुँचा देता हूँ और वही है कि फिल्म मेकर आदित्य धर उन्होंने 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड के टाइम धुरंधर के बारे में कहा कि होपफुली नेक्स्ट ईयर वो इस फिल्म के लिए भी अवार्ड सेरेमनी में आ सकेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि उस दिन का फोकस आर्टिकल 370 पर था क्योंकि फिल्म ने मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स जीते हैं आर्टिकल 370 ने बेस्ट फीचर फिल्म जीता यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला उसके थ्रू शाश्वत सचदेव को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड भी मिला था उस फिल्म से धर ने धुरंधर की डिटेल्स डिस्कस करने की बजाय कहा कि आज का दिन आर्टिकल 370 सेलिब्रेट करने का है धुरंधर को फ्यूचर नेशनल अवार्ड्स में एलिजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जा सकेगा सो यस आज के दिन तो लेट देम एन्जॉय 370 बट बढ़िया यार आर्टिकल 370 भी धुरंधर भाई साहब ने बनाई है क्या बात है यार नो वंडर क्या क्लासी बनी थी वो भी बढ़िया है
8: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI

0: नहीं आवाज गूंजेगी।
1: चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं, सो थैंक यू सो मच अगर आप मुझे सुन रहे हैं तब से। बट यस, अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप बस बने रहिए अंटिल 3। सैंडी विल बी ज्वाइनिंग आफ्टर दैट इन द कॉफी ब्रेक, एंड कॉफी ब्रेक के बाद उनका साथ देंगे रुजबे। सवाल पता है मेरा क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है, एंड स्पेशली मैं उनसे पूछना चाहूंगा जो कि कार लवर्स बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं या सच कुछ है। सो लेट्स फाइंड आउट। बट प्लीज यार, एक रिक्वेस्ट है, डोंट आस्क योर लोकल एआई, योर फ्रेंडली एआई, एंड ऑल्सो डोंट सर्च ऑनलाइन एज वेल इन एनी ऑफ द ब्राउजर। सो यस, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, जवाब दीजिए मुझे 5599 पे। आई वुड लव टू हियर क्या रिस्पॉन्स आता है। सो यस, अपना फोन उठाइए, नॉट वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के टाइम तो बिल्कुल भी हानिकारक हो सकता है, एंड देन वहां पर यू नो होपफुली कुछ होनी अनहोनी ना हो, नहीं तो अमिताभ बच्चन जी बोल देंगे देखा लापरवाही का नतीजा। सो यस, 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे जल्दी से बताइए व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड।
2: बचाओ क्या,

0: Well. मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि what is the most expensive car in the world? का जवाब तो मिला है. किसी ने बुगाटी बोला है, बुगाटी हेडर, रोल्स रॉयस. एक भाई साहब ने तो स्कूटर भी लिखा है, स्कूटर भी महंगा है. हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो. अभी तक यू नो इतना महंगा कोई होगा स्कूटर जो कार से ज़्यादा महंगा हो, बट कुड बी महंगा एज वेल. स्कूटर भी महंगे होते हैं यार, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. हमारे तो जेब $1,000 देख के लगता है कि यार नहीं भाई, हम पैदल ही ठीक हैं. बट यस, एक्चुअली किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है. एक ने दिया है रोल्स रॉयस, वो 50-50 है. आई मीन 50-50. वेल, जवाब के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए. फेसबुक पेज पे मैंने अभी जस्ट दो फोटो डाले. एक वो फोटो डाला है जो करंट मोस्ट एक्सपेंसिव कार है, जो कि एक ने सही जवाब दिया है, और एक मोस्ट एक्सपेंसिव कार जो है वो बिकी है इन ऑक्शन, वो भी मैंने फोटो डाला है. सो गो एंड चेक आउट एंड हिट अ लाइक बटन ओवर देयर एंड या थैंक यू सो मच अगेन. एक बार देख लो, फिर मैं बाद में आराम से यहाँ पे बताऊंगा. बट आप जाइए फेसबुक पे और वहाँ पे आप देखिए. बट जस्ट इन केस आप यू कैन नॉट सी, जस्ट फॉलो अस लाइक यू नो हम 104.2 FM के जरिए. बने रही, बिकॉज थोड़ी देर में मैं आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया खबर लेके आने वाला हूँ. लेटेस्ट खबर, जी हाँ, लेटेस्ट खबर बोले तो जो अभी न्यूजीलैंड में यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड कुछ मिडल अर्थ बैक इन न्यूजीलैंड. फर्स्ट लुक जो है वो आ चुका है उस फिल्म के बारे में, तो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
1: सनातन वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स इन कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड ब्रिंग्स यू वैलेंटाइन्स बफे रेस्टोरेंट लाल्स ट्रांसपोर्ट इन राम्स ग्रुप ऑफ कंपनीज 11th सनातन वर्ल्ड कप 2026 होस्टेड बाय एनजेड सनातन स्पोर्ट्स इन कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम सितंबर 30th ओकलैंड कम्स अलाइव विद सोकर नेटबॉल वॉलीबॉल एंड गोल्फ टीम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड फिजी ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड अमेरिका कॉम्पीटिंग अक्रॉस बिल मैकिनली पार्क एंड लोकल वेन्यूज यूनिटी थ्रू स्पोर्ट कल्चर एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्ट Tunman Chairperson Jiten Lal on 021-452-503. Stay tuned to Hub, your official media partner.
3: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for Nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
4: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
6: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
7: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
9: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: वेलकम बैक। चलिए फिल्म की बात कर लेते हैं। फिल्म बोले तो एक हॉलीवुड फिल्म की खबर यहाँ पे आ रही है और शूटिंग मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में हो रही है। द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग द हंट ऑफ गॉलम। यस, मिडल अर्थ के बाहर एक बार फिर न्यूजीलैंड वापस आ चुकी है द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग द हंट ऑफ गॉलम की फिल्मिंग जो है रुपेहो में हो रही है, वहाँ के रीजन में, जो ओरिजिनली LOTR फिल्म्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी। फिल्म को एंडी सर्किस डायरेक्ट कर रहे हैं, जो गॉलम का रोल भी करेंगे, और एलिजा वुड, फ्रोडो और इयान मैकलन गैंडल्फ के रोल्स में रिटर्न कर रहे हैं। वार्नर ब्रॉस ने शेयर और बैग एंड के फर्स्ट सेट फोटोज भी रिलीज किए हैं, जो अभी आई कैन सी, आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमारा रेडियो है, हमारा टीवी टेलीकास्ट नहीं है, बट यस, वंस वी गेट द परमिशन वी माइट शेयर इट ओवर देयर एज वेल। बट यस, फिल्म 17 दिसंबर 2027 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी कि अगले साल के अंत में। पीटर जैक्सन, फ्रैन वॉल्स और फिलिपा बॉयंस भी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड के आइकॉनिक लैंडस्केप में LOTR की दुनिया फिर से अलाइव हो रही है, और फैंस को ओरिजिनल कैरेक्टर्स के साथ मिडल अर्थ का नया चैप्टर देखने को मिलेगा। वेल, ये सारी चीज़ें सुन के मैं साउथ आइलैंड बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। खैर, ये तो नॉर्थ में ही है, बट बहुत ही खूबसूरत है यार, लाइक लिटरली। आप वैसे, मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ दैट आई कुड बी वन ऑफ द पर्सन जो एक्चुअली पूरा न्यूजीलैंड घूम के आ चुका है। मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को इतना डिटेल में नहीं, बट एक्चुअली अगर देखें ना तो मैं साउथ आइलैंड को पूरा, मैंने कोस्ट एरिया पूरा मैंने कवर किया है, यू नो, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इनुकागल जहाँ पे मैं पहले रहता था, उसके बाद क्वींसटाउन, वनाका से होते हुए, एंड देन यू नो पूरा फॉक्स ग्लेशियर, एंड देन पूरा नेल्सन, पिक्टन, देन इधर से क्राइस्ट चर्च, फिर से डनेडिन, एंड देन यू नो ये पूरा ट्रैवल किया। यहाँ पे भी इफ़ यू हैव सीन माय सफायर सॉन्ग, उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट 90% मैंने चीज़ें कवर की है इन द फिल्म, फॉर फिल्मिंग एक्चुअली। काफ़ी ऐसी जगह भी हमने फिल्म करी जो ऑब्वियसली हमने यूज़ नहीं की है फॉर द शॉट्स, बिकॉज ऑफ वेदर ख़राब हो गया। जैसे जो सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट रुपे हुए है ना, आई गेस माउंट रुपे, वो उसी को मैं यूज़ नहीं कर पाया, बिकॉज जहाँ पे गए पूरा आसमान खाली है सिवाय उस पहाड़ के, पूरा क्लियर है, सिर्फ आसमान जो है पहाड़ है वहीं पे क्लाउड से पूरा कवर कर रखा है। सो इट्स लाइक हाफ ऑफ द बॉडी यू कैन सी, बट हेड आप बिल्कुल नहीं देख सकते, वो छत से ऊपर जा रहा था। बट यस, बताइए मुझे 5599 पे इफ़ एनी वन इज़ ओवर हेयर जो सचमुच पूरा न्यूजीलैंड ट्रैवल कर चुका है, और कब की बात आई है। 5599 इज द नंबर।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

तू। बहुत ही सही गाना यार, बहुत ही सही है। कीर्ति सागरथिया ने गाया है। ये क्वाइट कॉमन है यार यहाँ पे, आई मीन इन बॉलीवुड। अगर आपको लगता है दैट एक गाना आ गया देन यू विल जस्ट बिकम लाइक यू नो स्टार और यू नो बैक टू बैक, तो ये नहीं है यार। बिकॉज यू सी, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, किसने मुझे बताया था ये फिल्म हम दिल दे चुके, किसने उसमें गाना है तड़प तड़प के, तड़प तड़प के, ये जो गाना है ये केके ने गाया था। एंड इमेजिन ये मूवी कब आई थी, बट एक्चुअली पब्लिक फिगर ये तब बने जब 2008 में, ऑब्वियसली बीच में गाने आए थे, बट ओनली दोज पीपल ओनली कुड नो हिम जो वो गाने सुनते थे। लेकिन जन्नत की मूवी, जो जन्नत जो मूवी है, उससे इनका नाम जो है हाउस होल्ड वाला हो गया था। लाइक लिटरली ऑलमोस्ट एवरी वन न्यू दैट हु केके इज। सो येस, दैट इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स एंड दैट इज वॉट वी कॉल द स्ट्रगल। बट येस, जस्ट टू गिव अ क्विक अपडेट, अगर आप हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं विद जीरो टैक्स, तो येस आपको ये जो एक्सपो होने वाला है इस वीकेंड, आपको मिस नहीं करना चाहिए। बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 इन न्यूजीलैंड होने जा रहा है, जो कि 26 एंड 27 को होने जा रहा है, 10th सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। शाम बोलेंगे या रात बोलेंगे, मेरे ख्याल से शाम ही होगी ना। उसके बाद JW मेरिट इन ऑकलैंड, ये यहाँ पे होने वाला है। आप काफ़ी डेवलपर्स प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, उनसे डायरेक्ट डील कर, आई मीन डायरेक्ट पर्सनल वन टू वन भी बात कर सकते हैं वहाँ पे। पर्सनल पर्सन टू एक्सेस भी मिल सकता है एक्सक्लूसिव डील्स के साथ, इंक्लूडिंग 0% अपफ्रंट DLD फीस ऑन क्वालिफाइंग यूनिट्स के साथ भी। बहुत कुछ है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी कंसल्टेशन की बात हो डायरेक्टली आप पे 101, तो यस buildcaps.com पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर ऑफकोर्स JW मेरिट ऑकलैंड, वहाँ तो आप आ ही जाइए। हमारी टीम भी होने वाली है सैटरडे को 10 बजे, तो यस मिलते हैं वहाँ।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की?
5: बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती.
5: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
7: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.in.
11: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
12: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाएं. हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर. ये है हर घर का बेस्ट चॉइस. अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध. आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है. स्वाद भी, सेहत भी.
13: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer, $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer, $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
14: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
15: Flooring Extra. Adore your floor.
13: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
16: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath, and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Two lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
0: Non-stop Bollywood.
17: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते
0: हैं. हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
18: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
0: इसके पीछे
2: हम.
0: Tech Talk.
19: वेलकम बैक. चलिए बात करते हैं कुछ अपडेट अबाउट AI स्मार्ट ग्लासेस. वेल एक्चुअली ये ब्लाइंड पीपल के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने बनाया है AI स्मार्ट ग्लासेस. विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल टेक्नोलॉजी बनती हुई नज़र आ रही है. Well, बाकियों का तो पता नहीं, but yes, for them it might be a very useful thing. Glasses में camera plus AI होता है जो सामने की चीजों को identify करके describe भी कर सकता है. For example, sign हो गया, sign board हो गया, या फिर कुछ text हो गया on the road या फिर on the side. Objects identify और surroundings के बारे में भी information देख सकता है. एक visual impaired यूजर ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी से उन्हें ज़्यादा इंडिपेंडेंस फील होता है, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न भी होता है वहाँ पे, बिकॉज़ ग्लासेस में कैमरे होते हैं जो आसपास के लोगों को बिना क्लियरली रियलाइज किए रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट देयर कंसेंट. सो यस, ये है कि इंफॉर्मेशन हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसीलिए ये अभी वाइट केन या ह्यूमन असिस्टेंस के कंप्लीट रिप्लेसमेंट हाल फिलहाल तो नहीं है. बट आप मुझे बताइए, आर यू कीन टू यूज दिस कैमरा और यू बिट वरीड अबाउट? वरी वाली बात तो है ही, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि सामने वाला बंदा जिसने ग्लासेस पहन रखे हैं, ऑफकोर्स इफ यू फोकस देन यू कैन सी यस देयर इज अ कैमरा और नॉट, बट समटाइम्स यूजली क्या होता है कि जब आप किसी बंदे से पहली बार मिलते हैं, यू डोंट लुक एट हेम इन अ वे कि आप उसे फोकस करें, या फिर यू नो इन शॉर्ट हिंदी में अगर बोले तो घूरना. So that thing, of course, we can't do. We can't make the other person feel uncomfortable. So in that way, of course, we might miss it. But on other side, useful to hai kaafi jagah. But let's see, yaar, abhi iska future kya aata hai? Future mein kya decide hota hai? Government kya decide karti hai? Kyunki mujhe lagta hai aane wale time mein kuch na kuch to, you know, update is pe zarur aayega regarding the privacy concern.
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफ़ी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. एंड वेदर के वैसे हालचाल देखते हैं तो वेदर आज का 13.3 डिग्रीज बाहर का टेम्परेचर रहने वाला है और आज का ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा. वैसे मौसम आज का सही रहा है लेकिन कल थोड़ा क्लाउडी हो सकता है. सैटरडे संडे इज फुल ऑन क्लाउडी एंड रेनी डे. एनीवे आपका डे आज का कैसा जा रहा है? इट इज़ 24 सितंबर एंड आज अगर आपका बर्थडे है अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है अ वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू.

0: 3:12 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। ऑकलैंड ट्रेन नेटवर्क जो है ये रिज्यूम हो चुका है आफ्टर अ पावर आउटेज। वेल, ये ब्रीफली स्टॉप हुई थी सर्विसेज दिस आफ्टरनून एंड ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट ने वार्निंग दी है ऑफ फर्दर डिलेज एंड कैंसिलेशंस बिकॉज सिस्टम रिकवर कर रहा है। सो ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट का कहना है कि ये जो पावर है ये अफेक्ट हुई थी ईस्ट वेस्ट लाइन में एट अराउंड 12:45 PM। सो पावर वॉज देन क्विकली रिस्टोर्ड एंड ट्रेन वर एबल टू रिज्यूम सर्विसेज विद इन मिनट्स। देर विल बी स्मॉल नंबर ऑफ ऑन गोइंग डिलेज एंड कैंसिलेशन जैसे आपको बताया। सो पैसेंजर्स को एडवाइस किया गया है टू चेक लाइव डिपार्चर बोर्ड्स या डिजिटल स्क्रीन्स ताकि यू नो बिफोर ट्रैवलिंग वो अच्छे से प्लानिंग कर सके। सो आपने सिटी रेल लिंक जब से ओपन अप हुआ है आपने क्या ट्रैवल किया है, बहुत ही डिफरेंट एंड मिक्स काइंड ऑफ फीडबैक भी एक्चुअली में आ रही है। काफ़ी लोगों का कहना है कि उन्होंने इस रेल लिंक को इंजॉय किया है। वेल, आपने और काफ़ियों के लिए ये डायरेक्ट रूट हो चुका है उनके डेस्टिनेशन के लिए, किसी के लिए थोड़ा बढ़ चुका है, तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में, आपका क्या रिव्यू है वो भी आप शेयर कर सकते हैं 5599 पर।
1: Coffee break with Sandy. वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
5: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
6: Hey, City Rail Link's now open and our first trip's going to the game.
7: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
8: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
9: CRL first trip, coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
10: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
11: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
12: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में। बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM। देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड। डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन। रजिस्टर नाउ, विजिट bilcaps.com। प्रमोटेड बाय वेब टाइगर।

0: most wanted.
1: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं?
2: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 3:22 हो चुके हैं। अब आते हैं आज के सवाल पे, व्हाट एम आई क्वेश्चन। सो आज का सवाल आपके लिए ये है, आपको बताना ये क्या है। इट सेज आई हैव ब्रांचेस येट आई हैव नो लीव्स, आई हैव ब्रांचेस येट आई हैव नो लीव्स, नो ट्रंक एंड नो फ्रूट, ये क्या है। सो इसकी ब्रांचेस हैं, इसके लीव्स नहीं हैं, नो ट्रंक एंड नो फ्रूट, ये क्या हो सकता है आपको बताना है। 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे मैसेज करके आपको बताना है। एंड टुडे इज थर्सडे, इट इज़ 24 सितंबर, और थर्सडे को एवरी थर्सडे यहाँ पे ड्राइव शो में आपके लिए हम इलेक्शन स्पेशल लेके आते हैं। और इस बार इलेक्शन स्पेशल में हमारे साथ यहाँ पे नेशनल पार्टी के कैंपेन मैनेजर नवतेज रंधावा ये शामिल हो जाएंगे 5 बजे के बाद, जहाँ पे वो नेशनल पार्टी की पॉलिसीज़ के बारे में, जो न्यूज़ बाहर आती है, जो कैंपेन्स बाहर आती है, उसके बारे में थोड़े डिस्कशन करने वाले हैं। और आपके सवाल कुछ यहाँ पे आए हैं वो भी हम पूछेंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि नेशनल पार्टी के साथ रिलेटेड है रिगार्डिंग दिस इलेक्शन, वो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ मैसेज कीजिएगा, एंड आपका सवाल हम ज़रूर पूछेंगे। ये 5 बजे के बाद वैसे डिस्कशन रहने वाली है फुल ऑन, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी एपिसोड है आपके लिए भी। इलेक्शंस के टाइम पे कौन सी पार्टी क्या पॉलिसीज लेके आ रही है, इसमें आपका क्या बेनिफिट हो रहा है, वो सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। सो सवाल मेरा आज का फिर से एक बार, आई हैव ब्रांचेस येट आई हैव नो लीव्स, नो ट्रंक एंड नो फ्रूट, व्हाट एम आई, आपको लेके भेजना है। 5599 इज द नंबर।
1: थोड़ा सा हॉल बना दे।
2: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate, up to 60% off on now.

0: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800 862 342 for free confidential support.

0: Show with Sandy and Rizvi.
1: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
2: साढ़े तीन बज चुके हैं एंड ड्राइव शो स्टार्टेड अर्ली टुडे. गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है आज 24 सितंबर. हाय सैंडी.
3: गुड आफ्टरनून रुजबे, कैसे हो तुम?
2: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
3: बढ़िया.
2: स्ट्रगल कर रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे.
3: ऐसा ये चेयर कुछ ज्यादा नीचे गई हुई है एक्चुअली में ये या कल आई थिंक ये चेयर नीचे की थी. अच्छा. या फिर आज सुबह विजय या पूजा पूजा में दोनों में से जो बैठा होगा इस चेयर पे उसका कमाल है.
2: ओ, तो ये ऊपर नहीं जा रही है फिर से?
3: नहीं जा रही यार, ये वो नहीं चेयर जो आपके ऑफिस में गाइस ऐसी चेयर होती है जो स्टक हो जाती है. आपको ऑफिस में ऐसी कौन सी दिक्कत आती है फर्नीचर को लेके? आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. 5599 इज द नंबर बिकॉज दिस इज वेरी रिलेटेबल काइंड ऑफ थिंग्स ना. जो लोग ऐसे ऑफिस में जाते होंगे
2: जी
3: ऐसे चेयर को लेके तो मेरे को लगता है बहुत ही पंगे होते हैं. और कई लोगों ने अपनी चेयर मार्क करके भी रखी होती है, या मेरी चेयर किसने ले ली, डू नॉट टच माय चेयर.
2: या काफी बार ऐसे होता है,
3: सारे पंगे कुर्सी के.
2: कुर्सी के पंगे तो बहुत है और ये कुर्सी के पंगों का आज दंगा जो है वो होने वाला है ड्राइव शो में. बिकॉज आज 5 बजे के बाद यहाँ पे नवतेज रंधावा आने वाले हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल पॉलिसीज टुडे.
3: Yes.
2: पिछले हफ्ते यहाँ पे डेविड सिमर आए थे, एक्ट की बातें की उन्होंने. और अगर आपको वो चेकआउट करना है तो वो हमारे आप जाके
3: ड्राइव कैचअप पे चेक कर सकते हो.
2: ड्राइव कैचअप पे जाके आप चेक कर सकते हो वो. तो ड्राइव लिखकर भेजना उसके लिए 5599 पे कि
3: आप रोवा पे जाइए, वहाँ पे ड्राइव कैचअप में ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुजबी अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये एपिसोड मिलेगा. एंड ऑल्सो कल ट्रेंड मेकर्स में एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड आपके लिए हम लेके आने वाले हैं गाइज. इट्स गोना बी वेरी स्पेशल एपिसोड विद सेलिब्रिटी. हम सेलिब्रिटी के साथ हम सेलिब्रिटी को उनके थीम के गाने आपके लिए यहाँ पे प्ले करते हैं. बट जो कल का एपिसोड हमारा होने वाला है फ्राइडे 6 PM का, वो सेलिब्रिटी के साथ ही होने वाला है.
2: एंड इट्स बेसिकली वीव कम अप विद द नेम, इट्स गोइंग टू बी ड्राइव इन कॉन्सर्ट.
3: ड्राइव इन कॉन्सर्ट, सो लाइव इन कॉन्सर्ट आपने देखा है, अभी आप ड्राइव इन कॉन्सर्ट सुनेंगे.
2: एंड आप मैं सच्ची बोल रहा हूँ, यू कांट मिस दिस शो.
3: अमेजिंग अमेजिंग.
2: आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव शर्ली सेठिया सिंगिंग लाइव फॉर यू and talking with us live on the radio.
3: Yeah. So Shirley Sethia ke sath podcast different aap sunenge aur ye ek different segment hai jo ki kal aap 6 baje se sunne wale hain. And you gonna have a really good experience. Aap ekdam Friday mode mein aa jayenge. Itni aapko hum guarantee zarur dete hain iske bare mein. And also Rizvi, by the way main news pad rahi thi ki New Zealand is once again standing in for Middle Earth. So Warner Brothers जो है रिलीज कर रहे हैं फर्स्ट लुक फ्रॉम द लोकल सेट ऑफ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द हंट फॉर गॉलम.
2: तो अभी एक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आ रहा है, मतलब
3: एक और आ रहा है.
2: क्या बात है.
3: ये जो प्रीक्वल है बेसिकली, इट मार्क्स द लेटेस्ट मिडिल अर्थ प्रोडक्शन जो कि न्यूजीलैंड में फिल्म होने वाली है. तो इसकी फर्स्ट लुक ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है.
2: क्या बात है, पैसा ही पैसा होने वाला है न्यूजीलैंड में.
3: दैट्स
2: गुड. या वी नीड
3: प्रोडक्शन चालू है वहां पे, बहुत सारी इमेजेस बाहर आई है.
2: ओके, तो चालू हो गया काम ऑलरेडी.
3: काम चालू है वहाँ पे.
2: क्या बात है, तो चलो बढ़िया है, अच्छे दिन आने वाले ऐसे लग रहा है यहाँ पे भी. तो इसके बारे में भी और बातें करेंगे आपके साथ, बट फॉर नाउ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए.
4: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZ PMI, योर

यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: सोनू निगम और उनके साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये बहुत ही तगड़ा गाना, सुखविंदर सिंह ने भी गाया है इस गाने में, एंड अलोंग विद दैट हु वाज द फीमेल सिंगर इन दिस
1: कम्बख्त
0: इश्क, बट हाँ बहुत ही मस्त गाना कम्बख्त। ये कौन सी मूवी का गाना है पता है आपको? उर्मिला मातोंडकर, प्यार तूने क्या किया,
1: प्यार तूने क्या किया, या
0: I don't know, फीमेल सिंगर का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे।
1: ओके,
0: एंड कंपोजर है संदीप चौथा,
1: संदीप चौटा या
0: आप जानते हो,
1: ही यूज्ड टू वर्क विद ए आर रहमान अलॉट।
0: अच्छा,
1: उन्होंने बहुत सारा काम ए आर रहमान के साथ किया है, तो इन फ्यू मूवीज एंड बहुत सारे सीरियल्स में भी एक्चुअली में इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है। इज अ वेरी गुड कंपोजर।
0: ऑलराइट,
1: तो ये जो सिंगर थी बाय द वे, मैं उनका नाम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको नाम पता है तो आप भी लिख के भेज सकते हैं यहाँ पे।
0: नहीं नहीं, आप पता कर दीजिए, हम आपके इसके लिए, आपने जो व्हाट एम आई सवाल पूछा था उसके काफ़ी आंसर्स आए यहाँ पे, रेड्स सुनील और काफ़ी लोगों ने सही जवाब यहाँ पे भेजा है। मानव ने अपने कंपनी का प्रमोशन करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं होता मानव, उसके लिए इनवॉइस आता है फिर उसका होता है प्रमोशन। आशा भोसले इज द नेम,
1: आशा भोसले,
0: मेरे को भी ऐसा लग रहा था सुन के,
1: हाँ
0: आशा भोसले का ही आवाज लग रहा है वो।
1: सवाल मैंने पूछा था, ऐसा क्या है जिसकी ब्रांचेस है, लीव्स कोई नहीं है, कोई ट्रंक नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, तो ये नाम आपको एक्चुअली में यहाँ पे बताना था, बट काफी लोगों ने सही एक्चुअली में आंसर भेजा है इसका।
0: यस, एंड द राइट आंसर इज
1: बैंक,
0: बैंक। बट अभी जो इन्होंने भेजा है मानव ने, वो भी सही भेजा है कि सिर्फ बैंक के ब्रांचेस नहीं होते ना, हमारी कोई शाखाएं नहीं है ऐसे, मतलब हमारी शाखाएं काफी अलग अलग चीजों की भी शाखाएं होती
1: है, काफी लोगों की शाखाएं हो गई है ना। या
0: सो या स्मार्ट,
1: वेरी स्मार्ट। सो आप भी बताइए अगर आपको आपके जहन में कोई और ऐसा नाम है तो वो भी आप यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं 5599 पर। बट ये आज 5 बजे के बाद आपके लिए इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम रहने वाला है, जैसे आपको हमने यहाँ पे बताया है, एंड ऑल्सो कल 6 बजे के बाद शर्ली सेठिया स्पेशल भी रहने वाला है, ड्राइव इन कॉन्सर्ट रहने वाला है, एंड बहुत ही जल्दी अपना अगला पॉडकास्ट भी हम यहाँ पे रिलीज करने वाले हैं, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड।
0: ओ, एक और पॉडकास्ट भी आ रहा है हमारा,
1: या एक और पॉडकास्ट भी आएगा ना,
0: क्या बात है।
1: yeah.
0: तो या बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान आउट की है, एंड वुड लव फॉर यू टू प्रोवाइड योर फीडबैक ऑन दैट, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। काफ़ी बार ऐसा होता है यार, आप जब फीडबैक देते हो तो फिर हम इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि यार कल मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ना कुछ हमारे पुराने पॉडकास्ट देख लिए और मेरे पास बहुत फीडबैक आ गया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये पुराना है, तो अभी ऐसा होता है ना कि आपको पुरानी आपकी चीज़ें थोड़ी वो लगने लगती है कि अरे यार ये,
1: बट इट्स गुड टू रिव्यू थिंग्स ना, बिकॉज तभी आप उससे, मेरे को लगता है सेल्फ क्रिटिक होना बहुत ज़रूरी है।
0: Yeah, yeah, I think it's one of the most important things, yeah, कि आप खुद का काम रिव्यू करो और वो भी कुछ सालों के बाद, तो आपको फिर तभी और ज़्यादा पता चलता है ना कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसा था वहाँ पे वैसा था। बट एनी वे, वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग शो फॉर यू लाइंड अप ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को ट्रेंड मेकर्स में हम लाइव ड्राइव इन कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप टाइमर, मतलब टाइमर नहीं क्या, अलार्म सेव कर लीजिए।
1: या सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग वन 6 बजे से। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी सूचना भी देना चाहते हैं रुजबे फॉर उबर ड्राइवर्स। सो इफ यू ऑलरेडी हैव अ क्लेम विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड अ क्लेम मैनेजर विल बी इन टच विद यू। इफ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, इनटेक 4 इज नाउ ओपन। सो प्लीज़ नोट कि नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज फोन टीम इज करंटली एट कैपेसिटी, सो आप कॉल मत कीजिएगा, इंस्टेड अप्लाई ऑनलाइन। और इनकी वेबसाइट है nyfservices.com, इट्स nyfservices.com।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Weather Kahal, काफी कमाल, आज ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी, फील्स लाइक 12 डिग्रीज, 3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग इज रिकमेंडेड, 1 विंड प्रूफ लेयर ऑल्सो, 8 डिग्री तक का आज होगा लो टेम्परेचर, 6:19 पे होगा सनसेट, कल से बारिश होने वाली है शुरू.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbain, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rusbain.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: 4:03 हो गए हैं. You're listening to the Drive Show with Sandy and Rusbe. Hi Sandy, good afternoon.
4: Good afternoon Rusbe. 4:03 and आज का Drive Show, इसमें आज एक टॉपिक भी आपके लिए हम लेके आएंगे जिस पे आप यहाँ पे कॉल कर पाएंगे 0800 00 हम पर. आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. एंड अपने बाली बैंकॉक के ट्रिप के बारे में डिटेल्स भी आपके साथ हम आज शेयर करने वाले हैं.
1: वेल, आज थर्सडे को ड्राइव थ्रू कन्फेशंस होते हैं और कन्फेशंस में हमने सोचा है कि इलेक्शन तक हम कोशिश करेंगे कि हम जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व है उनसे हम थोड़े बहुत कन्फेशंस ले
4: ऑफ डिफरेंट पार्टीज.
1: और हर किसी को यहाँ पे राइट है आके, मतलब पॉलिटिक्स कोई भी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हो, अगर आपके कोई पहचान में है जो उनके वॉइस को सामने रखना चाहेंगे तो प्लीज़ reach out to us and we can definitely arrange something.
4: Yeah. So, आप बताएगा और जो सुनेगा जरूर 5 बजे के बाद आज नेशनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव एंड कैंपेन मैनेजर हम कह सकते हैं वो यहाँ पे रहने वाले हैं.
1: नॉर्थ ईस्ट रंधावा यहाँ पे आने वाले हैं और उनसे बातें करेंगे हम, उनसे पूछेंगे काफी सारी चीजें.
4: सो नेशनल पार्टी के बारे में जो सवाल है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं आज.
1: हाँ, आपको क्या सवाल है, आपके मन में क्या सवाल है, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए या अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर आपको ऐसा कोई जानना है तो या इट्स योर चांस फॉर टू रीच आउट एंड सेंड अस द मैसेज.
4: एंड ऑल्सो रुजबे, ये जो वीकेंड आने वाला है ना, इस वीकेंड पे एक बहुत ही बड़ा दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो होने वाला है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो टैक्स के साथ, बिकॉज दुबई में टैक्स नहीं है, तो आप ये बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो जो है ये अटेंड कर सकते हैं, जो कि इसी वीकेंड पे 26 सितंबर एंड 27 को होगा, 10 AM टिल 8 PM JW मैरियट में ये रहने वाला है इन ऑकलैंड. सो काफ़ी एक्सक्लूसिव डील्स आपको वहाँ पे मिलने वाली है. सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. 1-to-1 कंसल्टेशन भी रहेगी एंड यू कैन गो एंड चेक द वेबसाइट buildcaps.com. buildcaps.com इज़ वेबसाइट.

लहू लहान हुआ है फलक, ये कैसा लोहा पिघला है। एक सूरज डूब गया पीछे, एक सूरज सामने निकला है।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने और ढेर सारी बातें ड्राइव शो में हम लेकर आते हैं. सैंडी क्या चल रहा है मार्केट? मेरे को एक न्यूज आया यहाँ पे, ह्यूज टायर फायर सेंस थिक ब्लैक स्मोक इन टू द स्काई.
1: ओ कहाँ पे
0: ये अभी हुआ है? लोकल टोल्ड टू क्लोज विंडोज, टायर का आग लग गया है.
1: Oh no.
0: और ये हुआ है फ्रॉम डनसेंडल फायर इन सीन इन क्राइस्ट चर्च में हुआ ये सब.
1: Okay. तो मैं पढ़ रही थी एक्चुअली
0: 40 किलोमीटर अवे से दिख रहा है यार ये.
1: Oh my god, that's huge actually. I hope everyone is safe around. Pollution और वो स्मेल के कारण काफी लोगों को दिक्कत भी आ रही होगी.
0: हाँ, बहुत बुरा होता है रबर का स्मेल. बर्नड रबर का स्मेल.
1: सो मैं न्यूज पढ़ रही थी रुजबे की ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है एंथनी, इन्होंने बोला है, इन्होंने अभी स्टेटमेंट दी है कि AI agent developed by OpenAI, they gained unauthorized access to Australian government website, जहाँ पे मेडिकेयर स्टैट्स थे इन जून 2026. ये हुआ था उनके साथ. सो दिस वाज नॉट रिपोर्टेड एज अ हैक ऑफ इंडिविजुअल ऑस्ट्रेलियंस मेडिकेयर रिकॉर्ड. द अफेक्टेड पोर्टल वाज अ पब्लिक फेसिंग स्टैट सिस्टम जहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन थी. सो बल्क बिलिंग ये सारी चीज़ें उसमें थी
0: public
1: काफ़ी.
0: सो
1: AI एजेंट वॉज अपेरेंटली गिवन अ रिलेटिवली ऑर्डिनरी रिसर्च टास्क, looking for information about medicine spending.
0: Oh, और उसने सब दे दिया.
1: Yeah. So while searching online, it came across कि जो Medicare stats portal है, when the site didn't provide the information it wanted, जो AI agent था reportedly found a way to access non-public files as well as public material.
0: तो non-public files भी access कर ली
1: उसने. So OpenAI says कि investigation में कोई evidence नहीं है कि patient records को access किया गया है. It says information involved aggregate the health stats and internal file names. So Australia angry क्यों है? Because timing of the notification is a major issue. जो breach है ये हुआ जून में. But Australian authorities का कहना है कि they were not notified by OpenAI until 10th September. जून में हुआ, सितंबर मतलब 10 सितंबर तक उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि ऐसा आपके रिकॉर्ड्स के साथ हो चुका है.
0: उनको भी पता नहीं चला होगा.
1: उनको पता नहीं चला. सो रफली 3 months लेटर.
0: तो मतलब यही है ना कि मॉनिटरिंग और रेगुलेशंस में बहुत ही अभी
1: इट्स एक्सट्रीम कंसर्न एक्चुअली. सो आई रिमेम्बर फ्यू डेज अगो मैं पढ़ रही थी कि न्यूज आ रही थी कि वन ऑफ AI एजेंट के जो CEO है उन्होंने बोला है कि हर किसी को अभी जो भी AI डेवलप कर रहे हैं हर किसी को अभी पॉज करना चाहिए बिकॉज इट इज बिकमिंग डेंजरस. तो हर किसी को थोड़ा स्टेप बैक करना चाहिए, थोड़ा पॉज लेना चाहिए into things they are developing.
0: मैंने तो एक चीज नोट की है यार, ये AI आने के बाद ना जो सिंपल टास्क होते थे ना पहले उसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिए लोगों ने. लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि पहले हम एक सिंपल लाइन ईमेल में काम निपटा लेते थे. अब वो एक सिंपल लाइन ईमेल भी लंबे लंबे पैराग्राफ आ रहे हैं क्योंकि AI लिख रहा है वो सब.
1: ओह या, और पता चलता है वैसे.
0: हाँ, मेरा एक दोस्त उस दिन सर पकड़ के बैठा था. बोलता है क्लाइंट ने ये ईमेल भेजा है लंबा चौड़ा एकदम ऐसे पूरा ऐसा ये.
1: और AI, उसमें क्या होता AI है पता क्यों चल जाता है? Because references are repeated.
0: हाँ, वो भी है.
1: एक बात जो आप कहना चाह रहे हो वो एक सेंटेंस की जगह एक पैराग्राफ में है, दो पैराग्राफ में है, तो इट्स अ रिपीटेड कॉन्टेक्स्ट.
0: और तो मैंने उसको वही सजेशन दिया, मैंने उसको बोला कि देख एक काम कर, उसको AI में ही डाल और AI को ही बोल के भाई इसका रिस्पॉन्स भी दे दे मेरे को.
1: It's going to be world जहाँ पे it's AI against AI, वही आपस में बात कर रहे हैं. There is no human communication.
0: समझ में नहीं आ रहा कि AI है इसका मतलब ये थोड़ी कि use करना जरूरी है.
1: Oh yeah, use it when you need it and you can use it to improvise your work.
0: Let's check today on air. अभी हम 0800-004-866. Give us a call if you have not used AI today. Sandy is not eligible for it.
1: I have already used it.
0: I am also not eligible for it. I have also used it today.
1: Yeah.
0: But कोई ना कोई तो होगा ना जिसने आज AI नहीं यूज किया बिल्कुल भी. 0800-004-866. सुबह से लेकर अब तक क्या आपने AI यूज किया नहीं है बिल्कुल भी? अगर नहीं किया है तो 0800-004-866 पे आप कॉल कीजिए और हमारे साथ यहाँ पे बात कीजिए.
1: पंगा तो ये भी हो चुका है ना, गूगल में भी अगर आप कुछ सर्च करते हो तो वहां पे भी पहले AI का आंसर ही आता है.
0: हाँ, वही है.
1: द प्रॉब्लम इज दिस कि आप अगर गूगल भी कर रहे हो कुछ तो वो भी AI बन चुका है.
0: वो भी AI का आंसर दे रहा है.
1: या या सो ताकि बाद में फिर वो नीचे बॉक्स देता है कि अगर इसके बारे में आपको और सवाल पूछना है। I don't think there's anyone
0: who's not used AI.
1: Because Google is AI as well now.
0: Yeah, no one's calling also.
1: So, अगर आपने बिल्कुल भी AI आज के दिन हम ever की तो बात ही नहीं कर रहे।
0: सुबह से लेकर अब तक अगर आपने नहीं यूज किया है तो आप यहाँ पे कॉल कीजिए। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ सर्वे टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग AI एक्चुअली यूज कर रहे हैं।
1: दिस इज AI चेक। सो
0: AI चेक,
1: लेट्स डू द AI चेक टुडे।
0: आप मैसेज भी कर सकते हो, चाहिए तो
1: 5599 पे मैसेज करो।
0: और अगर आपने बहुत ही मिनिमम ऐसा यूज, मतलब वो फेंस पे हो आप, क्या यार शायद नहीं किया है।
1: मैं सोच रही हूँ कि किसी ने कॉल नहीं किया, मतलब हर कोई AI यूज कर ही रहा है क्या?
0: हर कोई कर रहा है यार, मेरे को तो लग रहा है। बट आप भी बताइए, अगर आपने थोड़ा बहुत ऐसा यू नो ऑन द फेंस यूज किया है या आपका रेगुलर कोई टास्क है तो 0800-004-866 व्हाट डू यू यूज AI मोस्ट फॉर। विशाल ने मैसेज भेजा, AI इज हैविंग ओनली 10% बेनिफिट्स टू ह्यूमन लाइफ एंड द रेस्ट 90% इट्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन। हाँ, क्योंकि पानी का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन,
1: वो तो जा ही रहा है ना, एनवायरनमेंट या की और अगर देखा जाए तो उस वजह से तो है ही। सो या आप भी बताइए, अगर आपने विशाल क्या आपने क्या किया,
0: आपने ये AI पे तो नहीं डाला ना
1: आपने अपना नहीं बताया, आपने ये तो लिख के भेज दिया कि क्या बेनिफिट है उसका, बट आपने अपना नहीं बताया कि आपने यूज किया कि नहीं। तो मैसेज कीजिए, 5599 इज द नंबर,
0: या कॉल कर सकते हो आप 0800-004-866।
2: डेली डोज ऑफ विजडम, विट एंड वाइल्ड कन्वर्सेशंस,
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्बे।
4: आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए।
0: यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, और हमारे साथ यहाँ पे कोई जुड़े हैं। हाय, आपका स्वागत है।
5: हाय
1: क्या नाम है आपका?
0: फ्रीशा, बोलिए फ्रीशा, क्या यूज किया आपने AI आज, यूज किया कि नहीं किया?
5: Not at all. I'm not fan of this AI stuff. I think we should go back to our original how we were in 70s. I think it was natural, easy and very beautiful time. All of this new technology is just ruining people's mind and ruining all this new generation.
0: But see, going
1: so
0: back,
1: ऐसा क्या है वो 70s का?
0: Going back to 70s is more scary, I would say, na yaar, because imagine there's no phones also 70s mein, to no phones na?
5: Phones were there in 70s, yeah.
1: Okay.
5: Phones were there and people were like more self-sufficient, like they will grow their own vegetables. And it was all organic, it's healthier, people were using less cars, so it's healthier. So it was healthier lifestyle than now.
0: Right, okay.
5: I know it's not AI related, but I think AI is just not, it's worse than actually what humans thought it's going to be.
1: Have you ever tried using AI?
5: Let's see. Not really. I don't go into this GPT whatever, and I don't go into AI.
1: तो Google किया आपने?
5: No, I normally don't Google anything because it just makes my mind completely confused. They have all sorts of answers, and sometimes I don't agree. So
1: I stop
5: using it.
0: That's so cool, yeah.
5: Yeah, because I don't think it's good for human's brain. I don't think it's
0: too much information na.
1: कई बार गूगल सिर्फ उसके लिए नहीं, और ये भी होता है ना कभी कभी गूगल आपको कोई चीज ढूंढनी है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्टोर कहाँ पे है, लाइक स्टफ लाइक दैट एज वेल।
5: Yeah, no, I don't use any of these new things because I don't really agree with it, and I think it's going to corrupt human's mind, and besides it's taking away a lot of people's jobs. Which is really not good.
0: Right. You're saying it'll take away jobs as well. Yeah.
5: Which is not good.
0: Yeah, so there's the kind of a debate around that ke it'll take jobs but it'll also create new jobs.
1: Because abhi nayi study bhi shuru ho chuki hai na kafi jagah pe AI ke bare mein.
0: So yeah, I don't yeah.
1: So
5: look,
1: AI,
5: the other thing about AI is AI is that it's going to investigate human body and say, okay, in 10 years, you're going to have XYZ illness. That means the people are going to live longer and longer, and there will be a lot of old generation. I don't I don't really have anything to say about old people, but I feel like, you know, the natural death that God has given, why should you actually artificially elongate it?
0: But then if you go to see... मतलब पहले ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा पहले के जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा साल जीते थे ये वो हेल्थी रहते थे एंड या वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट
5: इट ग्रोइंग देयर ओन वेजिटेबल्स दे हैड हेल्थी लाइफस्टाइल लेस कार्स दे वर यूजिंग मोर पब्लिक वॉकिंग साइकिलिंग इट वाज हेल्थियर नाउ यू लुक एट द कार्स एंड यू लुक एट एवरीथिंग इट्स जस्ट टू इजी एंड पीपल जस्ट सफर
1: या यू गॉट अ पॉइंट दो
0: Thank you so much for sharing your thoughts
1: with
0: us.
5: Thank you.
0: Are you first time calling?

0: कुछ जल्दी करने के लिए और कुछ डबल चेक करने के लिए इजी हो जाता है।
1: क्या काम करते हो आप? मतलब कंपनी
0: कस्टम्स
1: की नाम लेने की
0: रिलेटेड,
1: जरूरत नहीं है, बस जस्ट इन जनरल लाइक मतलब कस्टमर सर्विस में हो,
0: या
1: आईटी
0: लाइक
1: में हो?
0: कस्टम्स रिलेटेड एंड ऑल।
1: अच्छा,
2: ओके
1: कस्टमर
2: ओके
1: रिलेटेड में हो। अच्छा,
2: सही है। और पर्सनल
0: तो
2: लाइफ में,
0: बॉर्डर प्रोटेक्शन मतलब।
2: पर्सनल
1: अच्छा,
2: लाइफ
1: बॉर्डर
2: में डू
1: प्रोटेक्शन,
2: यू
1: क्या बात है, सब मसाले उसको आपने ही पकड़ा है मतलब।
2: सो पर्सनल लाइफ में डू यू आस्क द क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ या फिर अपनी चीजों के बारे में, लाइक क्या किस वे से यूज करते हो आप?
0: अभी तक चैट जीपीटी में तो नहीं गया हूँ, बट गूगल तो करता रहता हूँ। गूगल में भी एआई है ऑलरेडी
1: दैट्स राइट,
2: या इट्स ऑलरेडी देयर।
0: लाइक आई लाइक द वे ब्रेक्स इट डाउन आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग। लाइक पहले जैसे अपने को सारे पेजेस में जाके चेक करना पड़ता था खुद का। It just gives you a result like what they think is good for you.
2: Yeah.
0: Depending on your prompt as well. Prompt अच्छा होगा तो और अच्छा result मिलेगा. But yeah, you know, like it's just becoming a daily life for a lot of probably teenagers and stuff rather than us. But definitely work-wise, we're using it heaps. Like the co-pilot thing is all over our workplace. It just fascinates me because it just knows who am I, what I do, what my job is, what sort of things I should be looking for. So yeah, it just fascinates me sometimes. So
2: nice. Okay.
0: But in a good way. Recently, I did like comparisons, like electricity bill ka compare kiya tha. So that gave me a really good result as well. So yeah, it can be used in a good way, but yeah, obviously it's good and bad.
1: That's right. Awesome.
2: Okay.
1: Thank you so much for sharing. Yeah. Thank you for your call.
0: Yes, thank you. Bye-bye.
1: Bye.
2: Thank you. Bye.
3: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ। क्लीनिंग, स्टोरेज, शेल्विंग, रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स। टीज एंड सीज अप्लाई, एंड्स अक्टूबर 14th। स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: Get the kids creating these school holidays with free arts and crafts workshops at Warehouse Stationery. From making slime or clay craft to creating loom band jewellery, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.co.nz.
4: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now. For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
6: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havoc.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, कुछ टॉपिक भी लेकर आते हैं. यहाँ पे आज हमने AI के बारे में आपको सवाल पूछा कि आपने सुबह से AI यूज किया कि नहीं किया. एक मैसेज भी आया हमें, हाई इट्स पम्मी, आई नेवर यूज AI इन माई लाइफ अंटिल नाउ. समटाइम माई किड्स आस्क मम, यू कैन यूज दिस थिंग्स ईजी विथ AI. But I don't take my time to solving. ऐसा उन्होंने कहा है यहाँ पे. विशाल ने भेजा है, I didn't use AI today so far. Just listening हम on Rova since morning while working. क्या बात है यार.
2: And don't worry, Rova फिलहाल AI नहीं है. आगे जाके हो जाए नहीं पता है.
1: क्या Rova?
2: हाँ.
1: हाँ मतलब उसमें भी फंक्शनैलिटीज थोड़ी बहुत तो आई जाएगी AI वाली ना. अभी हर केस में आ रही है.
2: आगे जाके हो जाए नहीं पता है, बट अभी तक तो नहीं है. सो फार तो इट्स लाइक यहाँ पे जो लोग हैं वो ऑपरेट करते हैं उसको. अच्छा. वो उसके ऊपर काम करते हैं. बट एनीवे गाइस,
1: बट यू नेवर नो वो उसको वेबसाइट बनाने में AI यूज हुआ है कि नहीं हुआ है.
2: आई डोंट थिंक सो. काफी समय की है ना वेबसाइट. या या इट्स बहुत पुरानी वेबसाइट तो उस समय पे नहीं था.
1: अच्छा,
2: ऐसा मुझे लगता है.
1: ठीक है,
2: बाकी हुआ है उसमें नहीं हुआ है नहीं पता, बट मेरे को लगता है कि रेगुलेशंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है AI को लेके, कि कहाँ कहाँ पे AI कितना यूज़ हो सकता है. वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए. एंड और बॉलीवुड में क्या हो रहा है रुजबे?
1: बॉलीवुड में क्या हो रहा है यार, मेरे को कुणाल खेमू की वाइब देखनी है लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है यार सैंडी वाइब देखने का. तो बस वही है कि अभी मैं बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ.
2: और वाइब मूवी के जो रिव्यू है ये मिक्स ही आए हैं.
1: मिक्स ही आए ना.
2: या कईयों को बहुत अच्छी लगी है और कईयों को बहुत ही बेकार लगी है.
1: राइट, हो सकता है ऐसा, क्योंकि इट इज आई थिंक आई डोंट थिंक इट्स अ मास प्लीजर मूवी. इसका एक नीश ऑडियंस ही है. बट मडगांव एक्सप्रेस काफी लोगों को अच्छी लगी थी ना वैसे.
2: या
1: सो या एनीवे, रणदीप हुडा भी न्यूज़ में है. उन्होंने डेडिकेट किया अपना नेशनल अवार्ड टू डॉटर न्योमिका, और स्वतंत्र वीर सावरकर टीम को उन्होंने थैंक्स किया है और उनको कहा है कि आई फील सो एनकरेज्ड. सो या नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है उनको डायरेक्टरियल डेब्यू स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए.
2: ओके. एंड आयुष्मान खुराना की एक और मूवी आने वाली है सारा अली खान के साथ,
1: उड़ता तीर.
2: उड़ता तीर लिया है.
1: इसके बारे में और भी बातें करेंगे हम, लेकिन आज 5 बजे के बाद होने वाला है स्पेशल सेगमेंट आपके लिए, इलेक्शन स्पेशल. तो सुनते रहिए, बिकॉज वोट करना है आपने इस बार, और अगर करना है तो प्रॉपरली सुन के, मतलब समझ के, हर पार्टी का मत देखकर फिर अपना मत दीजिए.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, Trendmakers. आज यश राज चोपड़ा स्पेशल आपके लिए लेकर आ रहे हैं. उनको उनका बर्थडे है सैटरडे को ना,
1: या उनका संडे को,
0: सॉरी बर्थ एनिवर्सरी
1: उनकी संडे को है. एंड सो आज हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं. यश चोपड़ा फ्रीक्वेंटली इन्होंने रोमांटिक सॉन्ग सीक्वेंस स्विस जगह पे बहुत शॉट किए हैं. उनका स्विस कनेक्शन रहा है इनका, DDLJ, डर, चांदनी. सो मेरे को लगता है इसी की वजह से इंडियन टूरिज्म वहाँ पे बढ़ा है उस कंट्री में.
0: बहुत मानते हैं वो उस कंट्री में, मुझे लग रहा है.
1: या उन्होंने वहाँ पे इनके नाम पे एक लेक की हुई है, चोपड़ा लेक.
0: मैंने सुना था ये इसके बारे में कि
1: एंड एक स्टैच्यू भी है
0: ना. या दैट्स व्हाट आई थॉट.
1: ब्रॉन्ज स्टैच्यू भी है. इमेजिन ना, स्विस गवर्नमेंट ने अब इनके नाम पे लेक रखी है, चोपड़ा लेक है वहाँ पे. इमेजिन यार, बॉलीवुड सेलेब के नाम पे.
0: बट अगर आप देखो तो इतना स्विट्जरलैंड का वो था हाइप कि हॉलीडे के लिए स्विट्ज़. आज भी आप किसी को भी पूछो, 10 में से 7 पीपल विल से आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड फॉर अ हॉलीडे.
1: मेरी भी लिस्ट में है, मैं अभी तक नहीं गई हूँ.
0: देखा, सो स्विट्जरलैंड तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमने मूवीज में देखा है बचपन से ही कि अरे स्विट्जरलैंड, ट्रेन जर्नी, रोड जर्नी,
1: वो सीनरीज एंड एवरीथिंग.
0: यही अगर सोचो न्यूजीलैंड का अगर हुआ रहता तो आज न्यूजीलैंड भी एक बढ़िया सा डेस्टिनेशन होता.
1: वो तो कहो ना, प्यारे से मेरे समझ में आया. बट एनीवे, वैसे ये लाहौर में पैदा हुए थे, पता है, जो कि प्रेजेंट अभी पाकिस्तान में है. ही वॉज यंगेस्ट ऑफ द 8 चिल्ड्रन. So his family moved after 1947 partition, and he's also the uncle of Karan Johar.
0: Oh, Karan Johar ke uncle hai wo.
1: Yeah, he's also producer direct, Karan Johar ke uncle bhi hai ye.
0: Right.
1: Yeah.
0: Wow. And so cool na, kyunki Karan Johar ke papa ka naam bhi Yash hai.
1: Yeah. यश जौहर.
0: यश जौहर. और एंड इसलिए मेरे को बचपन में बहुत कंफ्यूजन होता था.
1: मेरे को इसीलिए यशराज फिल्म्स और उसका बहुत कई बार ऐसा कई बार कंफ्यूजन होता है कि उनकी है कि इनके, पर उनका धर्मा प्रोडक्शन
0: है. धर्मा है. इनको काफी ऑनर्स भी हुए हैं, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2001 में इनको मिला था, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन सिनेमा. पद्म भूषण 2005 में, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. एंड 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स इनको मिले हैं फॉर डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन. तो अभी काफी काम किया है उन्होंने, शाहरुख खान के साथ काफी काम किया है. वैसे जो गाना आपने सुना वो शाहरुख खान की मूवी का ही था, डर मूवी का, जिसमें उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग दैट वी आर प्लेइंग इज अगेन फ्रॉम अ शाहरुख खान मूवी, जहाँ पे उन्होंने हीरो का प्ले रोल
1: प्ले किया.
0: दिल तो पागल है.
1: बाय द वे, इसमें यश चोपड़ा rejected 54 dresses designed by Manish Malhotra for Madhuri Dixit character. Because उनको simple classic सलवार कमीज चाहिए थी. तो मनीष मल्होत्रा लेके आ रहे थे भारी.

0: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स, यशराज चोपड़ा स्पेशल आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ट्रेंड मेकर्स में।
1: रुज़बे, हम ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप की बात कर रहे थे, सिलसिला मूवी।
0: अरे सिलसिला मूवी, दैट्स राइट, यश चोपड़ा ना।
1: तुम्हें पता है इसके लिए कास्टिंग पहले स्मिता पाटिल एंड परवीन बाबी की थी, बट आफ्टर डिस्कसिंग विद अमिताभ बच्चन ही अप्रोच्ड जया बच्चन एंड रेखा, सो दैट रियल वर्ल्ड की जो मीडिया रूमर्स थी उसको वो मिरर कर सके वहां पे।
0: माय गॉड,
1: इमेजिन,
0: दैट्स सच अ रिस्की थिंग। मेरे को लग रहा है
1: बट इट वर्क्ड राइट।
0: अमिताभ बच्चन ने बहुत पैसे मांगे होंगे इसके लिए।
1: हो सकता है, मुझे तो लगता है बाकी दोनों ने बहुत पैसे मांगे होंगे साथ में काम करने के लिए।
0: दैट इज आल्सो ट्रू एक्चुअली,
1: बट एंड द लास्ट मूवी टुगेदर।
0: बट यार आई डोंट नो हाउ इट वुड हैव बीन टू वर्क अलोंगसाइड, वो तभी वाइफ हो गई थी ना जया बच्चन, वो टाइम पे वाइफ तो थी।
1: बॉलीवुड की मोस्ट फेमस कास्टिंग मोमेंट है ये।
0: वाओ,
1: इमेजिन, मतलब कन्विंसिंग जो लगा होगा ये करना, ये सब तीनों को साथ में लेके आना इस मूवी में, जहाँ पे र्यूमर्स वही चीज कर रही है जो मूवी की कास्टिंग है, सेम
0: या
1: सिलसिला।
0: बट इसमें अपेरेंटली जया बच्चन ने यशराज चोपड़ा को कन्विंस किया ना कि एंडिंग उनके मन में कुछ और थी एंडिंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूंगी मूवी अगर तुम एंडिंग नहीं चेंज करोगे, तो
1: हीरो रियल लाइफ की तरह मेरे पास ही आना चाहिए,
0: हीरो मेरे पास ही आना चाहिए। एंड देन या ही हैड टू बाउ डाउन, उन्होंने बोला ठीक है एंडिंग चेंज करते हैं।
1: यार उस टाइम की 60s 70s 80s के टाइम की मेरे को लगता है जो कहानियां है ना वो आज के टाइम में नहीं है।
0: नहीं है क्या,
1: मतलब उस वे की जो ये जो सारी कहानियां आज के टाइम इज टू कन्वीनियंट टाइम, अच्छा नहीं ओके बाय बाय।
0: हां बट अभी आज का टाइम भी वैसा है ना सैंडी,
1: वही मैं कह रही हूं कि बिकॉज ऑफ द टाइम,
0: टाइम ही ऐसा है।
1: लेकिन वहां की कहानियां कितनी ऐसा बाहर आती है ना, तो मतलब ऐसा कभी पुराने गानों के बारे में बात होती है तो कितनी कहानियां उसके रिलेटेड आती है।
0: या अभी आजकल तो गाने भी, गानों की लाइफ भी उतनी लंबी नहीं है ना जितनी पहले हुआ करती थी।
1: अब तो ब्रेकअप पार्टी होता है।
0: नहीं आई मीन गानों की लाइफ लंबी नहीं है, एज इन गाने हम पहले एक एक साल दो दो साल दस दस साल सुनते थे एक ही गाने को। अभी तो हम, मेरे को लग रहा है मैक्स 1 week 2 weeks।
1: पिछले साल का नंबर वन याद होगा लेकिन आपको 24 का नंबर वन गाना याद है क्या?
0: नहीं पिछले साल का, हाँ चलो याद है,
1: सही आ रहा, चलो या
0: सफायर वन ऑफ द टू, उसके पहले नहीं, उसके पहले वाला नहीं याद। बट एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ, बट अभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना अगेन फ्रॉम यशराज चोपड़ा मूवी।

0: with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: Sanathan World Cup Sports and Cultural Incorporated brings you
2: Valentine's Buffet Restaurant,
1: Lal's Transport in Ram's Group of Companies,
2: 11th Sanathan World Cup 2026,
1: hosted by NZ Sanathan Sports and Cultural Incorporated.
2: From September 30th, Auckland comes alive with soccer, netball, volleyball and golf teams from New Zealand, Fiji, Australia, Canada and America, competing across Bill McKinley Park and local venues.
1: Unity through sport, culture and community. Contact Tournament Chairperson Jiten Lal on 021-452-503.
2: Stay tuned to Hum, your official media partner.
0: Hum, accurate traffic.
3: Get a Kogan Smart TV at an even smarter price.
4: Clear overnight with a low of 8 on the northern from town to Constellation Drive, 21 minutes to Silverdale, 35. On the northwestern, it's still quite busy from Waterview through to Te Atatū. On the southern, town to Manukau, 30 minutes to Drury, 41. It's heavy heading south from Grafton to Penrose Road. Southwestern's busy in both directions through Mangere Bridge.
3: Shop Kogan TVs now at Mighty Ape.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
10: Indelible Homes, your building expert.
0: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक सिलेक्टेड न्यू ओमुडा या जेकू मॉडल्स पर सुपर हाइब्रिड सिस्टम से मिलते हैं इलेक्ट्रिक डेली ट्रिप्स और पेट्रोल के कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्गर जर्नीज अप टू 1,100 किलोमीटर कंबाइंड रेंज प्लस एंजॉय 7 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर व्हीकल वारंटी मोर वेज टू सेव एट विंगर मोटर्स ईस्ट ऑकलैंड नॉर्थ शो एंड पुकेकोई और winger.co.nz ऑन नाउ टिल 30th September क्रेडिट क्राइटेरिया फीस टीज एंड सीज अप्लाई
11: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
12: Let's go! 3, 2, 1!
13: Trend Makers.
14: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
15: आप सुन रहे हैं हम playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे आज यशराज चोपड़ा special लेकर आ रहे हैं. And trend makers को आप Rova app के जरिए भी सुन सकते हैं. Rova app download कर लीजिए अगर नहीं है. या फिर rova.hum
16: वहाँ पे भी सुन सकते हैं. वैसे वहीं पे जो कीर्तन संग्रह है इसकी रिकॉर्डिंग कल वैदिक सेंटर में होने वाली है शाम के 7 बजे से. आप भी वहाँ पे जरूर पहुँच सकते हैं. यश चोपड़ा स्पेशल
15: हम भी पहुँचने वाले वहाँ पे.
16: हम भी पहुँचने वाले हैं.
15: मैं मिलना वहाँ पे यार आके प्लीज.
16: या प्लीज हमें भी आके जरूर मिलना वहाँ पे. सो यश चोपड़ा का स्पेशल आज हमने यहाँ पे किया. 50 ईयर का डायरेक्टर करियर जो उनका रहा है एंड काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने काम किया. इनफैक्ट सॉन्गलेस मास्टरपीस भी बनाई इत्तफाक ओरिजिनल मूवी,
15: बिना कोई गाने के,
16: बिना गाने के 1969 की जो मूवी थी, जिसका बाद में रीमेक बना. सो दैट वाज अ मर्डर मिस्ट्री, जो कि सिर्फ 28 डेज में इसकी मूवी को कंप्लीट किया, जीरो सॉन्ग्स.
15: That's so cool, yeah.
16: Yeah.
15: So he's done different kind of things. Like एक इसमें नहीं अटके थे वो.
16: He was multiple total genres different kind of director.
15: उनकी last movie भी बहुत special थी. I think Shahrukh Khan got very emotional during that last movie.
16: And I think उसका वो जो dialogue भी था, जब तक है जान का, it suited him ना. यश चोपड़ा को.
15: जब तक है जान, जब तक है जान.
16: Yeah.
15: Yeah, and I really like the movie. Movie, I don't know if इतना चली कि नहीं चली, पता नहीं.
16: Movie चली थी. Actually, movie चली थी.
15: मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो movie.
16: Yeah, even I like the movie. मुझे इसमें कैटरीना अनुष्का दोनों की pairing बहुत अच्छी लगी थी.
15: Yeah, और दोनों की acting भी बहुत बढ़िया थी.
16: Yeah, दोनों का role suit कर रहा था इसमें.
15: Yeah, and शाहरुख तो यार शाहरुख है.
16: Yeah.
15: शाहरुख को मेरे को लग रहा है uniform में देखने का मजा ही अलग है.
16: मुझे वही शाहरुख अच्छा लगा था इस मूवी में, जो यूनिफॉर्म वाला दिखाया था. सो या एनी वे गाइज, इसी नोट पे अब आपको हम कहते हैं टाटा बाय बाय. रिमेंबर कल का ट्रेंड मेकर्स में यहाँ पे शर्ली सेठिया विल बी लाइव. सो अपने गानों के बारे में वो बात करने वाली है, गाने भी वाली है. गोना बी डिफरेंट ट्रेंड मेकर्स फॉर यू.
15: सो डू लिसन इन एंड वी विल एनी वे सी यू टुमारो. हैव अ गुड वन.
16: बाय
15: बाय.

ಹೆಲೋ 9821026212 BPL. ಅರೆ 9820026232

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
5: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5k min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
7: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
10: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
12: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
13: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
14: राज, रोमांस, एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, एम तमन्ना।
15: इस वन की काली शक्तियाँ रात के साए से भी काले।
14: द वन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 25th September।
16: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास।
14: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
17: हमें माता का बुलावा आया है।
18: Check. Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
19: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
20: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Labour's hoping its plans to get people back to work slows the talent pool leaking overseas. The party says it will deliver more social housing as well as school and hospital improvements if elected. ACT says the invoice from what it calls Labour's spending spree will end up with future generations. The fallout from a major storm in Marlborough in July has been costed at just over $8 million, and US President Donald Trump's administration has been ordered to end its ban of US media outlets CNN, MS Now and Politico from the White House. In sport, MPC Rugby in Nelson, it's right on half-time, and it's Tasman leading Bay of Plenty 26-12. In just on half an hour, the opening practice session for this weekend's Azerbaijan Grand Prix will be getting underway. Kiwi Formula One driver Liam Lawson back with the Racing Bulls team. Motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty. And a chance for the All Whites to put that World Cup experience to the test in China from 9:30 tonight, playing Palestine in a friendly for the first time ever. It is half-time in the rugby. It is 26-12 Tasman.
19: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
21: World's best, hamari koi branch nahi hai.
19: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
8: गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द शो. मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए. आज ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम जो प्ले करता है आपके लिए बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं आपके लिए होंगे सारे रोमांटिक सॉन्ग्स. आज थर्सडे नाइट है, रिदम एंड रोमांस प्रोग्राम तो होता है, जिसमें प्यारे प्यारे गाने मैं लिख रहा हूँ, एक एक करके मैं तैयार कर रहा था कौन कौन से गाने मैं आपको सुनाऊँ. तो आज प्यारे गाने होंगे और कुछ शेर व शायरी भी आपके लिए हम पेश करेंगे. बहुत सारी सूचनाएँ हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हम लेकर आएंगे. But first, let's start today's or tonight's rhythm and romance for you.
10: Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
17: Whispers of ishq.
8: Welcome everyone to Rhythm and Romance. इस थर्सडे को हम लेकर आते हैं, हर थर्सडे इसको इनफेक्ट लेकर आते हैं, और आज भी आपके लिए रहेगा सारे रोमांटिक सॉन्ग्स. तो रोमांस का जो माहौल है या जो समा है वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं. गुड रोमांटिक वाइब्स भी क्रिएट करना ज़रूरी होता है ताकि एवरीबडी कैन फील इन लव, और प्यार की बातें जो है एक दो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. मैं क्रिश आपके साथ दूंगा ऑल द वे टिल मिडनाइट. हमारा फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक बिल्कुल तैयार है आपके लिए. आप ये एंजॉय करें और फिर मिलते हैं और भी प्यारे प्यारे गानों के साथ.

0: सारा बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: You're listening to number one, Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. प्यारे गाने तो होंगे ही लेकिन शेर व शायरी की महफिल जब तक ना हो तब तक रोमांस का माहौल नहीं बनता है तो आपके लिए अर्ज है रात खामोश है चांद भी तन्हा सा है रात खामोश है चांद भी तन्हा सा है दिल में किसी पुरानी याद का सिलसिला सा है कुछ बातें कहनी थी मगर कह ना सके कुछ बातें कहनी थी मगर कह ना सके शायद इसीलिए आज दिल थोड़ा उदास सा है मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You are listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा, 60s और 70s के हिट्स. 80s जुकबॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इंजॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए. Thank you.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You are listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ अनफिल्टर्ड ड्राइव. सुनना ना भूले पॉडकास्ट की अगर बातें करें तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातें होती है. ये इलेक्शन ईयर है तो ड्राइव शो में स्पेशल इलेक्शन सेगमेंट आता है एवरी थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 6 PM, जिसके जरिए आपको तैयार किया जा रहा है और आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए ये सेगमेंट लाया जाता है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड पोजिशंस ऑफ द पार्टी शेपिंग न्यूजीलैंड्स फ्यूचर. तो फर्स्ट एपिसोड में एक्ट पार्टी लीडर डेविड सीमोर रिज़बी और सैंडी के साथ एक ओपन कन्वर्सेशन का हिस्सा बनेंगे अबाउट एक्स पॉलिसीज एंड हिज विजन फॉर न्यूजीलैंड. और ट्रीटी ऑफ वाइटांगी और कमेंट्स मेड बाय परमजीत परमार, इमिग्रेशन के मुद्दों पर बातें होंगी, एक्स प्रपोजल टू फ्रीज द अडल्ट मिनिमम वेज और अदर इश्यूज शेपिंग द कंट्री, इन मुद्दों पर बातें होंगी आपके लिए. तो फिर अनफिल्टर्ड ड्राइव सुनना ना भूले. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी पॉडकास्ट के बारे में बातें करेंगे, खासतौर पर ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: At Bunnings, you'll find our aisles and shelves are packed full of rewards. That's because you can now earn Bunnings rewards in every aisle.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant, and so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
2: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माई टिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग स्टोरेज शेल्विंग रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स टीज एंड सीज अप्लाई एंड्स अक्टूबर 14 स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माई टिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
3: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
4: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
3: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
5: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI
6: Elite Bathroomwear Spring Sale is on now. Huge range of LED vanity mirrors. Complete range of kitchenware in any colour theme, including brushed bronze. There's handles, sinks, taps and Wastemaster accessories. Heated towel warmers in all sorts of styles, even floor mounted. All the brands, all the advice, all in one store. Elite Bathroomwear, your Kiwi-owned bathroom superstore. Come in, be amazed and touch it firsthand. Spring Sale on now for September only. Visit in-store or apply online for VIP access.
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
9: अब हमारा क्या होगा
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
11: तो क्या करें
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
13: Drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
14: Check.
15: Brought to you by Maan Tires for all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
14: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Good evening to you. With the latest at 10, I'm Jeff Ryan. A trans-Tasman drug operation has seen 34 people arrested and multiple Auckland grow houses shut down. Police carried out 560 raids across New Zealand and Australia in a week. A challenge has been laid down for politicians as Head Start proposals take a breather. The government says it will decide which ones to progress next year after filling in some gaps. Local Government NZ's Rehet Stoltz says councils want assurances the goalposts won't move again. Fresh support for families to leave violent situations sooner. Associate Justice Minister Nicole McKee has announced $2 million from the Proceeds of Crime Fund will go to Pet Refuge. In sport, Kiwi golf star Ryan Fox will fulfil a career ambition at 4:29 in the morning. That's when he'll make his President's Cup debut, teaming with Australian Adam Scott in a four-ball match against the US pairing of Wyndham Clark and Colin Morikawa. And NPC Rugby and Nelson, Tasman overwhelming Bay of Plenty 45-26, 7-4, and the Steamer season pretty much evaporated.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
17: Playing Bollywood's biggest hits.
14: Night Cafe. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
17: Whispers of Ishq.
14: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
9: वेलकम बैक एवरीवन. आपके लिए जारी है नाइट कैफे, और नाइट कैफे में लेकर आते हैं रिदम एंड रोमांस, जिसमें प्यारे प्यारे लव मेलोडीज आपके लिए हम शामिल करते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, सेंशुअस गाने और बेस्ट बेहतरीन गाने जो चुन चुन कर लाते हैं, बिकॉज हम प्लेज बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. तो ऐसे ही हिट गाने लेकिन रोमांटिक गाने जो होते हैं वो लेकर आते हैं आपके लिए. जिंदगी ने हर मोड़ पर एक नया रंग दिखाया, जिंदगी ने हर मोड़ पर एक नया रंग दिखाया, कभी हंसाया कभी चुपके से रुलाया, हमने हर दर्द को मुस्कुरा कर सह लिया, हमने हर दर्द को मुस्कुरा कर सह लिया, और वक्त ने हमें खुद से मिलना सिखाया. कृष का साथ है, वेलकम टू द शो.

0: Coffee on Hum.
1: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai Rova. Agar aapne abhi tak download nahi kiya hai to zarur kijiyega. Rova ko use karne mein bahut fayde hain. Aapko pata hai bahut sare competitions bhi Rova ke zariye hote hain. Hamare music plus stations bhi aap Rova par sun payenge. Hum rewind ho, hum 80s jukebox ho, Fiji bhajans ho ya chardi kala Punjabi hits ho, Fiji kirtan sangra ho ya phir Rahat Fateh Ali Khan ke Sufi aur Qawwali songs ka ek bahut hi pyara list ho. तो ये सभी कुछ आपको रोवा पर ही मिलेंगे. तो रोवा पर पॉडकास्ट का भी एक्सेस आपको मिल सकता है. तो इस तरह से आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं. कॉम्पिटिशन्स और प्राइजेज जीतने के लिए भी रोवा बहुत ही फ़ायदेमंद है. तो आज ही डाउनलोड करें आपके फ़ायदे के लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम, नाइट कैफे जारी है एंड इट विल बी फॉर यू अंटिल मिडनाइट. मैं क्रिश आपके साथ देता रहूँगा.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
1: Flooring Extra. Adore your floor.
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
3: The Specsavers Specstraver Games are store-wide sale is on now. Phew, bit of a tongue twister, hey? Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends October 3. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. Night Cafe. Number one, humbling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अगर आज आपका जन्मदिन है, a very happy birthday everyone जिनका आज जन्मदिन है and those who are celebrating. I'm sure आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर weekend के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं. अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं तो अ बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं. आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर. तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो. हम मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You are listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा, 60s और 70s के हिट्स. 80s जुकबॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट, अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है, जो आप इंजॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका, तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.
2: पतंग संग उड़ गया बचपन, झनक झनक मन, डगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसक मसके, क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे.

0: के पेड़े, रेवड़ी मेरठ वाली चाट तरी बाकी लाएगा। अरे मैं हुक्म करूँ तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाओ।

0: से on hum just baat ki narmi mohabbat ke raaz
1: whispers of ishq
0: aapka moment krish ka magic only on hum.
2: Welcome everyone to the show. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और this is our final hour आपके लिए जारी है rhythm and romance जिसमें प्यारे प्यारे romantic songs आपके लिए हम पेश कर रहे हैं. तो आप ये enjoy करते रहो हमारे साथ. तेरी यादों का मौसम अभी गुजरा नहीं, तेरी यादों का मौसम अभी गुजरा नहीं, दिल ने तुझे बुलाया है मगर भूला नहीं. हम मुस्कुरा देते हैं दुनिया के सामने, हम मुस्कुरा देते हैं दुनिया के सामने, पर अंदर से ये दिल कभी संभला ही नहीं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ शेर व शायरी आपके लिए हम भी शामिल कर लेते हैं. चलो और भी प्यारे गाने 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आपको सुनाता हूँ.

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक एक करके प्यारे गाने आपके लिए हम पेश कर रहे हैं. वेद प्रचार वीक ये होने जा रहा है from 28 September to 4th October at 32 Glasgow Avenue, Papatoe from 6:20 PM. और highlight of this year's program रहेगा 30th anniversary celebration of the establishment of Arya Samaj in New Zealand. तो वेद प्रचार वीक में शामिल होना ना भूले. तारीख याद रहे 28 सितंबर टू 4th अक्टूबर और जगह 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोए फ्रॉम 6:20 PM. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Best Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
3: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
2: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
3: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी.
2: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
3: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
4: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
5: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
6: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
7: CRL first trip, coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
8: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
9: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
10: राज, रोमांस, एक्शन और सुपरनेचुरल पावर से भरी कहानी. एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर. द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना.
11: इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले.
10: द वन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 25th September.
12: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास.
10: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
13: हमें माता का बुलावा आया है.
14: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
15: James, this is a radio ad.
14: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.

0: Coffee on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग ये 25th सितंबर को होने जा रहा है और वैदिक सेंटा में ये होगा पापटोए में रिकॉर्डेड कलाकारों के कीर्तन आप रोवा पर हम फीजी कीर्तन संग्रह पर सुन सकेंगे जॉइन दी हम टीम टू सी हाउ इट ऑल हैपेंस एंट्री इज फ्री फॉर ऑल रिफ्रेशमेंट्स और कावा भी यहाँ पर बेचा जाएगा You will also have the opportunity to win prizes. तो यहाँ पर आप पहुँच जाए याद रहे हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग Friday 25th September को वैदिक सेंटर पापटोई में होगी मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब मुलाकात होती है संडे आफ्टरनून को आ जाएंगे, इवनिंग को आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए 6 PM टू मिडनाइट आपके लिए संडे नाइट मेलोडीज़ लेकर. मैं क्रिश आपका साथ दूंगा तब. अपना बहुत ही ख्याल रखें. हैव अ वंडरफुल फ्राइडे, हैव अ वंडरफुल वीकेंड. संडे को मुलाकात होती है. गुड नाइट एवरीवन.

0: Night Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
6: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. T's, fees and credit criteria apply.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
11: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very
2: acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: flight on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Radio. Streaming on Rover.
1: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग स्टोरेज शेल्विंग रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स टीज एंड सीज अप्लाई एंड्स अक्टूबर 14 स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
2: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manikau and Pokekohe, where dreams begin. सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI
5: MediaWorks Complaints. How can I help?
6: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
5: Nice.
6: And you talked me into creating this funny character.
5: Great.
6: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
5: Are you?
6: Yes.
5: Are you Bobby the Baker?
6: Yes.
5: What's that thing you do again?
6: Stop it.
5: You bring the mouse.
6: Stop it.
5: I'll bring the pie.
6: Stop it, please.
5: Okay.
6: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
5: So what's the problem?
6: My name's Bruce.
7: Advertise with MediaWorks.
5: New Zealand listens to us.
8: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
9: yeah.
8: हम
9: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
10: तेरे किट धूम तेरे किट धूम तेरे किट

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
3: वर्ल्ड्स बेस्ट। हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा. कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं.
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Night Fly.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 7 डिग्रीज है और आज हाई ऑफ 15 एक्सपेक्टेड है। बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर रहेगा 10 डिग्रीज तक। मौसम के बारे में कहा गया है, बादल छाए रहेंगे विद अ फ्यू शावर्स, मेनली आज शाम के समय बारिश होने की संभावना है। सनराइज अभी से करीबन 3 मिनटों में 6:06 AM पर होगा, जबकि सनसेट आज का 6:20 PM पर होने को है।
0: Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune at Harrington Living Monaco. Big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Breakfast catch up. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
1: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फिलहाल 3 मिनट हो रहे हैं 6:00। गुड मॉर्निंग आपको।
4: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
1: आई एम नॉट टू गुड टुडे, आई मीन आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तबीयत यार अच्छी नहीं रही है एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट फ्राइडे वाला वाइब टुडे। बट इधर है तो डेफिनेटली कोशिश यही रहेगी कि अच्छा फील हो, ताकि आप सबके साथ अच्छा आज का फ्राइडे हमारा जो ये बीते ना।
4: जी बिल्कुल, आगे हैं आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। देयर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट टुडे और ये सिलसिला जो है 4 घंटों तक जारी रहेगा आज आपकी खातिर।
1: एब्सोल्युटली, तो इसके लिए हमारे साथ ही बने रहेगा। वी आर गेटिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे इन द प्रोग्राम और कब क्या हम शेयर करने वाले हैं ये तो जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। फिलहाल आपको बस इतना याद दिलाना है, दिस इज द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ द शो एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इस घंटे आपके लिए हम करते हैं कैचअप बहुत सी चीज़ों के साथ, स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद क्या कुछ जो है ये दुनिया भर में हो रहा है व्हेन इट कम्स टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ अपडेट्स खबरों के मामले में। तो इसके साथ शुरुआत थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस में हम जरूर करेंगे।

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Tubo jao, papi ho. Tubo jao.
2: Sanathan World Cup Sports and Cultural Incorporated brings you Valentine's Buffet Restaurant, Lal's Transport and Ram's Group of Companies 11th Sanathan World Cup 2026, hosted by NZ Sanathan Sports and Cultural Incorporated from September 30th. Auckland comes alive with soccer, netball, volleyball and golf teams from New Zealand, Fiji, Australia, Canada and America, competing across Bill McKinley Park and local venues. Unity through sport, culture and community. Contact Tournament Chairperson Jiten Lal on 021-452-503. Stay tuned to Hub, your official media partner.
3: डिब्बा खुल गया
4: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
5: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा, फिर यही तो होगा
4: डिब्बा खुल गया।
5: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ, अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
11: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
12: Playing Bollywood's biggest hits.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau. Global headlines.
14: आज सुबह के मुख्य समाचारों में, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट साहिल वकोडे के सुसाइड मामले में उनके माता पिता ने एफआईआर में नामित ऑफिशियल्स की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आजाद मैदान पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। साहिल ने अपने परिवार से जातिगत भेदभाव और कास्ट स्लर्स की शिकायत की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जाँच शुरू की थी। फिजी में विजिन ऑस्ट्रेलिया की कैबिन क्रू मेंबर के साथ रेप और सेक्सुअल असोल्ट के आरोपों से 24 साल के इलाइसा तानोअन देंगई को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार देंगई पर नांदी में 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 के बीच 21 साल की एक महिला के साथ इस क्राइम को अंजाम देने के आरोप लगे थे। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस ने कहा है कि वो इस वेडिक के खिलाफ अपील करने का फैसला कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू करने के बाद ही करेंगे। एनआरएल के अंतर्गत जो एलिमिनेशन फाइनल है, उसके बाद इस सप्ताह अंत प्रिलिमिनरी फाइनल्स की तैयारियां चल रही हैं। आज 9:50 पीएम पर डॉल्फिन्स रूस्टर्स से खेलेगा, जबकि संडे को 7 पीएम पैंथर्स और नाइट्स का मैच खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हमले कराएंगे। यूएफा नेशंस लीग के मैचेस जो हैं, ये आज एक बार फिर जारी रहेंगे। आज के मैचेस की ओर अगर देखें तो 7:15 बजे से नॉर्वे डेनमार्क से खेलेगा। इसके अलावा लिथुएनिया राइचर्डसन से खेलेगा, कोसोवो की भिड़ंत आयरलैंड से होगी, नेदरलैंड्स जर्मनी का सामना करेगा, ऑस्ट्रिया इसराइल से खेलेगा और पोर्चुगल और वेल्स के बीच मैच जो है ये खेला जाना है। उससे पहले आज सुबह हुए एक मैच में एंडोरा और माल्टा के बीच जो खेल हुआ उसमें माल्टा की जीत एंडोरा के खिलाफ 2-1 से हुई। आज वैसे एक और मैच सेबिया और ग्रीस के बीच भी खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Bollywood's most wanted.
15: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं?
16: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: यो यो हनी सिंह की आवाज़ में आपके लिए आज का पहला चार्ट बस्टर जो है कि हम शामिल कर रहे थे रीमेक जो कि इन्होंने किया था फॉर द मूवी मशीन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और इस फिल्म में कियारा आडवाणी ने काम किया था एंड आई थिंक उन्हीं के ऊपर ये गाना भी पिक्चराइज किया गया था। नेवर्थलेस बॉलीवुड की बातें करें तो आज हमारे पास जो सबसे पहली खबर आई है, आई हैड नो आइडिया कि ऐसी कोई फिल्म भी आने वाली है, बट अपेरेंटली एक अपकमिंग मूवी जिसमें सलमान खान दिखने वाले हैं कुछ सीरियस एक्शन सीन्स जो है ये करते हुए। अच्छा। और इनकी जो अपकमिंग फिल्म है इसका रिपोर्टेडली टाइटल इज मॉन्स्टर। करंटली इसकी शूटिंग मुंबई में हो रही है और कमाल की बात यह है कि एक मेजर एक्शन स्केड्यूल के लिए इन्हें ज्वाइन करने वाले हैं अरविंद स्वामी। ये एक बड़े यू नो आर्टिस्ट है, कलाकार है व्हेन इट कम्स टू रीजनल सिनेमा।
1: आई थिंक बॉम्बे में इन्होंने काम किया था एंड अभी तो बहुत एस्टेब्लिश्ड बिजनेस पर्सन है।
0: जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज में भी नजर आए थे ना इन्होंने, उसमें भी काम किया था। सो कहा गया है कि 10 days की शूटिंग जो है मुंबई में होने वाली है, इंक्लूडिंग 3 days जिसमें ये स्क्रीन स्पेस सलमान खान के साथ भी शेयर करने वाले हैं। एंड द एक्टर्स हैव रिपोर्टेडली हैव अ नॉट सो गुड रिलेशनशिप व्हेन इट कम्स टू इन द फिल्म, नॉट लाइक रियल लाइफ। और एक नेगेटिव रोल में जो है अरविंद स्वामी जो ये दिखने वाले हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म राइट नाउ एक मैसिव ट्रेन बेस्ड एक्शन सीन इन्वॉल्व करता है जिसमें काफ़ी मेहनत लग रही है, कोरियोग्राफी, एक्सिक्यूशन और एक बड़ी टीम जो है इसके पीछे अभी फिलहाल प्लानिंग कर रही है। फिल्म जो है इसे वाशमी पेदपिल्ले जो है ये डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें नयनतारा भी दिखने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू सम क्लोज सोर्सेज टू द प्रोडक्शन इन्होंने कहा है कि सलमान खान ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ इस फिल्म के कॉन्टेंट में अपना भरोसा जो है ये दिखाया है। एंड लेट्स सी हाउ डज दिस मूवी डू, क्योंकि लाइनअप ऑफ एक्टर्स साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। और फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा नहीं पता है, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं पता है, बट इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे चलकर ये फिल्म जो है जब रिलीज़ होती है तो सलमान खान और अरविंद स्वामी बोथ ऑफ देम शेयरिंग स्क्रीन स्पेस अलोंग विद नयनतारा, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितना इंटरेस्ट करता है लोगों को ना।
1: बिल्कुल, ओनली टाइम विल टेल और इस पर डिटेल्स हम आपको देंगे आज बाद में चलकर। देखेंगे कौन कौन सी और फिल्में जो हैं या वेब सीरीज हैं इस वीकेंड पर रिलीज़ होने वाली हैं, अपडेट्स डेफिनेटली आपको हम देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो वेटरन एक्टर हैं मुश्ताक खान, इनके इंतकाल होने की खबर जो है ये आई है।
0: यस, एंड इफ यू थिंकिंग कि अच्छा ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है बट चेहरा नहीं याद आ रहा, तो फिल्म वेलकम में इनके जो रोल है उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा जाना गया था, जहाँ पर एक वॉकिंग स्टिक के साथ इन्हें हमेशा देखा जाता था एंड ही हैड सेड दैट मेरी एक टांग नकली है, व्हाटएवर डायलॉग जो था उनका, मोनोलॉग जो था। तो या दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर गेव हिम अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड पॉपुलैरिटी ना। फिलहाल
1: जी, फिलहाल और भी खबरें बॉलीवुड की आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आज वैसे 25th of September है, इतना आपको याद दिलाते हैं। फाइनली द डे हैज कम, जब आज रात वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापा टोयटोय में हम कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग जो है ये की जाएगी।
0: एब्सोल्युटली, और हमने आपको कितने दिनों से याद दिलाया है, एवर सिंस दिस वाज अनाउंस्ड, हमने आपको तभी बताया था कि इट्स हैपनिंग ऑन 25th of September व्हिच इज टुनाइट, 32 ग्लासगो एफ पापा टोयटोय वैदिक सेंटर पर। और सबसे ज़रूरी बात, हमने ये भी आपको याद दिलाया था कि यहाँ पर जो कलाकार आएंगे अपनी अपनी कीर्तन जो है ये रिकॉर्डिंग के लिए, आप आकर बिल्कुल फ्री में, विदाउट पेइंग एनी एंट्री फी या एनीथिंग, बिल्कुल फ्री में आप आकर यहाँ पर दरअसल इन कलाकारों को प्रोत्साहित तो कर ही सकते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड एक पूरा प्रोसेस जो होता है रिकॉर्डिंग का ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
1: सो देयर्स बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज बीन पुट इन, अब आज वो मौका आ गया है और इसके मौके पर आप पहुँच सकते हैं। तकरीबन 7 बजे से रिकॉर्डिंग जो है ये आरम्भ हो जाएगी वैदिक सेंटर पापा टोयटोय में। और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं, जो लोग आएंगे यहाँ पर आपके लिए भी कुछ खास हम लेकर आने वाले हैं, यू नो देयर विल बी गिव अवेज, देयर विल बी मर्चेंडाइज और वो सारी चीज़ें भी होंगी आपके लिए।
0: तो इन सारी चीज़ों के लिए आज रात पहुँचना है आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए फॉर जी दिफी जी कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग, और इसका हिस्सा जो है आप श्योरली बन सकते हैं। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आज का हमारा पहला सवाल और साथ ही साथ आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो आपने भेजे हैं, we'll check that out as well. The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Hey, dekho maa gaye.
2: computer traffic.
3: Flying overseas soon?
4: Mostly fine and cloudy one today. Possible showers, a high of 16. Into the city, still fairly calm at the moment. Northwestern, 18 minutes, Massey to the city. A little bit of traffic, but no major hold-ups. Southern, fairly similar. Building south of Monaco, slow at Manurewa, but still just 20 minutes in from Monaco. Northern, fairly good, 16 in from Constellation. Southwestern, fine. Little bit of traffic on George Bolt heading to the airport terminal.
3: International check-in is changing at Auckland Airport. Plan ahead and know your check-in zone.
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
0: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
0: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
10: Hey. City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
11: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
12: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
13: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
14: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
15: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
16: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेबटाइट
17: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
18: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
17: Breakfast Catch Up.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और इधर जबकि देखा जाए तो आज गुड मॉर्निंग के कई मैसेजेस आपके हमारे पास आए हैं. सबसे पहले तो वो देख लेते हैं. आज गुड मॉर्निंग मैसेज मिस्टर माठा माठा की ओर से सभी के लिए. हैप्पी फ्राइडे इन्होंने विश किया है. और उसके अलावा आज रवनेश मोदलियार जी इन्होंने भी अपना गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड किया है.
1: विनीता जी आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
0: एंड ऑफ कोर्स बॉबी मान जी आपका भी गुड मॉर्निंग मैसेज हमें मिला है. सो थैंक यू सो मच आपके भी साथ और समय के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया.
1: 25th of September आज इतनी सारी चीजें जो है ये मार्क की जा रही हैं. इट्स इंटरनेशनल एटेक्सिया अवेयरनेस डे. एटेक्सिया जो है जस्ट इमेजिन वेकिंग अप एंड स्ट्रगलिंग टू वॉक स्ट्रेट स्पीक क्लियरली या फिर यू नो बिना किसी तकलीफ के कोई भी चीज़ निगलने में भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है. और यही हकीकत होती है उन लोगों के लिए जो एटेक्सिया के साथ रहते हैं. और आज उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का स्पेशल दिन है. आज इंडिया यूके यूएसए ऐसे कई कंट्रीज हैं जहां पर नेशनल डॉटर डे ये मार्क किया जाता है. इसके अलावा इट्स योगा फिट डे. और साथ में आज जो अन्य चीज़ें मार्क की जा रही हैं लंग हेल्थ डे. साथ में नेशनल साइकोथेरेपी डे ये भी बहुत सारी कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जा रहा है. एंड उसके साथ इट्स नेशनल कुकिंग डे जो आज मार्क किया जा रहा है. इट्स वन हिट वंडर डे.
0: ओके
1: वन हिट वंडर डे आज मार्क किया जा रहा है. और क्या बोलते हैं उसको कैसेडिया. आज कैसेडिया को सेलिब्रेट करने का दिन भी है. इट्स वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे. इट्स वर्ल्ड ड्रीम डे.
0: ओह ड्रीम डे.
1: हाँ ड्रीम डे ऐसा नहीं कि आप खुली आंखों से ख्वाब देखें, जो ख्वाब शायद खुली आंखों से आपने देखे हैं उनको पूरा करने का दिन है या उनको पूरा करने के लिए कदम उठाने का दिन है।
0: ओके,
1: लॉबस्टर डे है आज, वेजिटेरियन डे और हग वेजिटेरियन डे और कॉमिक बुक डे, ये सारी चीजें आज मार्क की जा रही हैं।
0: टू मेनी थिंग्स मैन, लाइक देयर सो मेनी थिंग्स जो आज मार्क की जा रही है ना, जिसकी आपने शुरुआत में बताया था। सो देयर यू गो, आप का जो भी दिल करे, व्हाटएवर यू कैन सेलिब्रेट, गो अहेड सेलिब्रेट दैट। आज इस दिन को भरपूर जिए, खुलकर जिए और इसे एंजॉय भी करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज का हमारा पहला सवाल। आज जो सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं, इसके लिए आपको हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं आपको, ये गाना जो बज रहा है ये सुना रहे हैं, इस गाने का आप मज़ा लीजिए, इसके बाद ये सवाल आपके लिए हम लेकर आएंगे। बिकॉज आज कुछ डिफरेंट है, इट्स नॉट द सेम क्वेश्चन टाइप जैसे कि हम पूछते हैं आपसे। आज हम आपको कुछ और करने के लिए कहेंगे, क्या करने के लिए कहेंगे ये जानने के लिए बस आप साथ ही बने रहिएगा, बिकॉज थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे क्या आपको करना क्या है।
17: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
0: वैसे जितने भी Uber drivers हैं, attention, आपके लिए ये खास जरूरी सूचना, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and a claims manager will be in touch with you. If you have not applied yet, intake for अब खुल चुका है, please note कि Not Your Fault Services के phone lines जो है और उनकी team currently at capacity है, मतलब आप call करेंगे भी तो भी वो आपकी call receive नहीं कर पाएंगे, so you are advised not to call, instead up online nyfservices.com, nyfservices.com पर अप्लाई कर सकते हैं।

0: अरमान मलिक की आवाज में आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा सबसे पहला स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपको हम सुना रहे थे, और ये जो ट्रैक है हमने आज आपके लिए लिया फ्रॉम द फिल्म कबीर सिंह 2019 में ये जो फिल्म आई थी, फिल्म ने तो धूम मचाई लेकिन आई थिंक 2019 का जो बेस्ट एल्बम उस साल का अगर रहा होगा, जहाँ पर फिल्म के जो गाने हैं इनकी अगर तारीफ की जाए, दिस इज़ वन ऑफ दोज मूवीज इन 2019 जिसके सभी गाने जो है बहुत खूबसूरत थे, और ऑलमोस्ट ऑल द सॉन्ग्स गेन्ड पॉपुलैरिटी इन देयर ओन वे।
1: जी
0: आपको इस फिल्म का कोई गाना याद है कबीर सिंह का?
1: एक गाना था, थोड़ा ऐसे स्लो सा, गाने का टाइटल नहीं याद है, बट
0: आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट बेख्याली। तो यस, कबीर सिंह, और अगर आपने फिल्म नहीं देखी, अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिटिसाइज द मूवी फॉर देयर ओन रीजंस एज वेल, बट ऑन द अदर हैंड पीपल हैव एब्सोल्युटली लव्ड इस फिल्म के गानों को, और अगर आपने भी इन गानों को पसंद किया, आज उसी का ये एक ट्रैक अरमान मलिक की आवाज़ में हमने पेश किया। हमने कहा था कि आज आपके लिए जो कॉम्पिटिशन हम लेकर आए हैं थोड़ा डिफरेंट होगा, और आपको बस क्या करना है, एक चीज़ हम आपके लिए प्ले करेंगे और आपको ध्यान से ये सुनना है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल जो ये करूंगी। सो हियर वी गो, पे अटेंशन टू दिस।

0: ये जो इन्होंने बोला ना अभी,
1: हाँ
0: आपको बताने इन्होंने क्या बोला?
1: ये ऐसे थोड़ा पूछते हैं।
0: ऐसे नहीं पूछते, मतलब ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था, लव आजकल का गाना ये, जब लव आजकल फिल्म जब आई थी कई सालों पहले, तो ये गाना बहुत चला था और आज भी इनफैक्ट इफ यू लिसन टू दिस सॉन्ग तो आपको अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन हमारी आदत होती है ना, हम क्या करते हैं, हम लिरिक्स जो है गाने का, गाने के हिसाब से लिरिक्स को नहीं गाते, जितना हमें जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है वो गाते हैं। और बहुत से लोग शायद गलती से इसको कुछ और तरह से गाते हैं। तो क्या आपने पहचाना कि ये जो इन्होंने अभी कहा, मैं एक बार फिर से सुना देती हूँ आपको, जस्ट टू क्लियर आउट, यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ये जो इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा आपको बस ये बताना है।
1: इट्स वेरी इजी, मुझे तो पता ही नहीं चलता।
0: हाँ पता नहीं चलता और आप बता रहे वेरी इजी। तो लेट्स सी क्या आपने आइडेंटिफाई किया। कॉल आ रहा है, गुड मॉर्निंग, हेलो,
2: हेलो
0: जी, सॉरी क्या कहा आपने?
2: हाय, आई वाज जस्ट वंडरिंग इफ यू वर्क इन द सेम बिल्डिंग एज द एज रेडियो।
0: Yes, we do.
2: So basically, I'm calling because they're doing the Every Caller Wins Electric Avenue tickets, and I was just seeing if there's any possibility at all that you have access to the studio and would be able to like get the phone call to them.
1: Who's this, by the way?
2: My name's Emma.
0: You're right. You're on air right now with the Hum, live on air. Everyone is listening to you, whoever is listening to Hum right now. And I'm really sorry, unfortunately, if you give us a call on Hum, we won't be able to transfer your call to Edge.
1: Where did you get our number, by the way?
2: Sorry?
1: How did you get hold of our number?
2: I searched up where the Edge building is and

0: in other companies in that building.
1: that's called dedication, man. And thank you so much for calling. But I'm really sorry, won't be able to help you in this matter. Especially, it's a promotion where you have to call them. And if your line gets through, then only you'll be able to win. And we can't do anything in that matter. But we're really sorry about that.
2: The phone has to be answered
1: by the
2: Edge studio, not our studio, unfortunately.
1: But we'll definitely convey your message that you tried to call up and you ended up calling us.
0: Yes, I would love it if you could convey my message. Yes. That would be great.
1: We'll surely do. Thank you so much. Thank you. Have a nice day.
2: All the best.
1: Bye. Oh my God, this was fun.
2: हमारे सवाल का अब देखो उनका उनका डेडिकेशन ये तो चैलेंज है हमारे लिसनर्स के लिए आपके लिए उनको इतना वो है कि
1: जीतने जीतना चाहती है वो कि उन्होंने नंबर ढूंढा और ये देखा कि एज के साथ और कौन कौन से स्टेशंस हैं
2: जो
1: इस बिल्डिंग में हमारा नंबर ढूंढकर हमको कॉल बेचारी उनको हिंदी में नहीं आती और उन्होंने कॉल करके बोला कि कॉल ट्रांसफर कर सकते क्या डेडिकेशन माय गुडनेस गुड मॉर्निंग हेलो
3: हेलो हाय पूजा
1: हाय कैसी हो आप
3: मैं ठीक हूँ मेरा नाम स्मृति है हेलो विजय जी
2: गुड मॉर्निंग मैम कैसी हैं आप
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ If I am not wrong, this song definitely was popular. Eh? So, I think Run the Track.
1: Is it what? It's Run like, the...
3: Run the Track.
1: Smriti, okay. Thank you so much for calling up and letting us know. कि आपका जवाब क्या है मैं थोड़ी देर बाद कंफर्म करूंगी कि आपने जो बताया वो सही है या गलत ओके थैंक यू टेक केयर बाय तो अभी एक कॉल आया हमारे पास और साथ में एक मैसेज इधर हमारे पास हरमिलाप ने सेंड किया है इन दोनों ने कोशिश की है सही या गलत ये तो खैर थोड़ी देर बाद हम ज़रूर आपको बताएंगे पर फिलहाल हमने आज आपके लिए जो कंपटीशन आई मीन जो सवाल पूछा है थोड़ा डिफरेंट हमने कहा था कि आज क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आदत है भाई हमारी कि कोई भी गाना हो अगर मतलब नहीं भी समझ में आ रहा कि क्या गा क्या रहे वो लाइन में हम अपना खुद का एक वर्ड अपना खुद का एक लाइन जो ये इन्वेंट कर वहाँ गा कर चिपका कर काम चला लेते हैं
2: मैं तो बहुत स्मार्ट हुआ ऐसा करने में
1: मैंने भी बहुत बार किया लेकिन ये जो गा रहे हैं आपको बताना है ये क्या बोल क्या रहे अगर आपको समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं लिसन टू दिस अगर ये समझ में आ गया कि इन्होंने क्या बोला ऑल यू कैन डू राइट नाउ इज आपको लिखना है बी एफ फिर उसके बाद में अपना जवाब और सेंड करना है 5599 पर याद रहे बी एफ स्पेस योर आंसर योर नेम सेंड इट अक्रॉस ऑन 5599

0: everyday driving ke liye smarter choice, visit Winger Motors West Auckland, Green Lane or Pukekohe or winger.co.nz. Offer ends September 30th. Comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
1: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
2: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
3: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
5: 10 minute baki hai sab hamari studios mein 7 bajne mein. Theek saath par news and sports update aapke liye rahega. Today is 25th of September and the final day of school. Kiki, ab Monday se schooli chuttiyan shuru ho rahi hai na? Aap thoda aise surprise ho gaye.
6: नहीं, वो भूल गया था ना. अब स्कूली छुट्टियां शुरू हो रही हैं, वहीं पर डेलाइट सेविंग शुरू हो रहा है,
5: संडे से शुरू हो रहा है. यस, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टार्टिंग ऑफ इस वीकेंड से. बट स्कूल हॉलीडेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज में बच्चों को एंटरटेन रखना, उन्हें यू नो रूटीन में रखना, उनको बोर ना होने देना, एंड लेट देम एन्जॉय द ब्रेक एज वेल. ऐसे नहीं कि फिर सिर्फ पढ़ाई कराते रह जाए. हाँ. वो भी ज़रूरी है, गिव देम दैट ब्रेक. इसीलिए तो ये ब्रेक उनको मिला है ना, बिकॉज दे डिजर्व इट. दे नीड टू रिचार्ज एंड नॉट जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी ऑल द टाइम. तो मेक यूज़ ऑफ दिस स्कूल हॉलीडेज. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स वगैरह लेकर आते रहेंगे. इनफैक्ट स्कूल हॉलीडेज में कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, जहाँ आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं टू बी पार्ट ऑफ इट, ये भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे. पर आज का जो हमारा सवाल, ओ माई गॉड, व्हाट अ रिस्पॉन्स. फिजा ने हमारे पास मैसेज किया है. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. फिर हर मिलाप थे और स्मृति, इन तीन लोगों ने ही आज अटेम्प्ट किया. इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, पर आप तीनों ने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
6: आखिरी बार आप सुना दो.
5: अच्छा, सुना दूँ. ओके फाइन, ओके आई कैन डू दैट. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लिसन टू. पे अटेंशन टू दिस ऑडियो, अच्छे से आप इसे सुनिएगा. एंड फर्स्ट लिसन टू दिस, फिर हम आपको बताएंगे आपको करना क्या है. तो आपको बस इतना बताना है कि ये बोल क्या रहे हैं.
6: कुछ नहीं बोल रहे, वो तो गा रहे हैं.
5: अरे मतलब गा क्या रहे. वर्ड्स क्या है, लिरिक्स क्या है, या जो भी हमने आपको
6: सुनाया, जितना हमने आपको सुनाया
5: उतना ही
6: आइडेंटिफाई करना है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट.
5: ओह लुक हू इज टॉकिंग. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. जो बोल रहे कि मुझे कुछ भी नहीं पता है.
6: मुझे पता है.
5: आपको कैसे पता है? आपको पता है. बोलो क्या बोला उन्होंने, बताओ क्या बोला.
6: नहीं यार,
5: बोलो,
6: सबको आंसर मिल जाएगा.
5: ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताइए.
6: नहीं नहीं
5: नहीं, बताओ ना.
6: मैं 7 बजे के बाद बताऊंगा.
5: 7 बजे पता ही नहीं है. आप ऐसे ही सबको वो क्या बोलते हैं, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम उतने उल्लू हैं नहीं जितना आप समझ रहे हैं. नेवर्थलेस 8 मिनट बाकी है 7 बजने में. अगर आपको पता है कि ये जो बोल हैं गाने के जो हमने आपको सुनाए द बिट क्या है, तो आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन 5599. ऑल यू नीड टू डू इज बीएफ लिखना है सबसे पहले, फिर अपना आंसर और सेंड कर देना है ऑन 5599.

0: सब कुछ खोल के सुन लो।
1: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आज है फ्राइडे द 25th ऑफ सितंबर और आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं मॉर्निंग मैडनेस।
2: इस घंटे तमाम चीजों के बारे में बातें होंगी और आज जो सवाल हमने आपसे पूछा उसकी तो जो गति हुई है
1: इट्स ओके। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं जरूरी नहीं कि एकदम अच्छा सही सही सेम सेम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिस्पॉन्स हो ना, थोड़ा अलग भी होता है कभी कभी। इट्स टोटली गुड। राइट नाउ हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए मोहितेश इज अनदर पर्सन जिनका मैसेज आया है, तो हमने आपके लिए अप्लाई किया था एक पीस मतलब छोटा सा बिट ऑन एयर एंड इफ यू डोंट माइंड तो आई लाइक टू प्ले। सॉरी ये क्या प्ले हो गया? नहीं ये नहीं था एक मिनट। हाँ तो ये हमने आपके लिए प्ले किया था और ये आप अच्छे से सुनिए। दिस इज व्हाट वी प्लेड फॉर यू। This is what you played and we asked कि इन्होंने क्या बोला, मतलब lyrics बोल गाने के क्या है यहाँ पर, इतने इतना जो beat हमने आपको सुनाया and जितने लोगों ने हमारे पास call किया या message किया all of them got it right and it is run the truck. Run the track. Truck गलती से निकल गया यार मुँह से। So yeah, it's run the track. But जिस तरीके से जिस लहजे से वो बोल रहे हैं ना, that's why it sounds so different. तो that is correct. जितने लोगों ने हमारे पास messages अपने send किए फिलहाल thank you so much हमारे साथ part लेने के लिए। 5 मिनट हो रहे हैं या 6 मिनट हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, 7 बजकर और morning madness की शुरुआत हो रही है, जबकि तो थोड़ी देर बाद आज का आपका दिन कैसे रहेगा अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप्स ये जानेंगे।
2: यस, वो तो आपको बताएंगे ही और उसके अलावा 7:30 न्यूज हेडलाइंस जो है ये भी आपकी खातिर इस प्रोग्राम में हम लेकर आने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफिस हम से बहुत कुछ लोग घर से काम करते हैं, कुछ लोग छुट्टी पर हैं, वो सारी बातें अलग है, लेकिन आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम आपको बताएंगे 5 dirtiest places in your office that you probably touch every day.
1: Oh, okay.
2: हमें एहसास भी नहीं होता है कि शायद ये इतना dirty होगा, but होता है, but बहुत। तो ये कौन कौन सी जगह है ये हम आज आपको बताएंगे on the breakfast show with Vijay and Pooja। इस घंटे की शुरुआत with your kind permission एक चीज से करना चाहेंगे।
1: हाँ जी बताइए।
2: और ये चीज जो है इनफैक्ट इसे मैंने खुद प्रिपेयर किया था।
1: ओके।
2: मैंने खुद प्रिपेयर किया था एंड नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट ये जो है विद इन 48 आवर्स इट गेन्ड मैसिव 50,000 views।
1: 48 आवर्स में क्या?
2: ओवर 50,000 views।
1: ओह नॉट बैड।
2: हाँ,
1: I mean not bad, क्या very good
2: क्योंकि ये एक बहुत ही niche audience के लिए है।
1: Niche audience मतलब
2: जो लोग शायद relate कर सके या एक अलग से group of audience के लिए।
1: Oh, it's not for everyone।
2: हाँ, शायद सब लोगों को उतना समझ में नहीं आए ना।
1: हाँ,
2: तो it's just 2 minutes, अगर आपके पास उतना time हो तो आप सुना दे।
1: अच्छा, okay, okay, I can do that।
2: हाँ, वो आपके आपके उस पे है ना,
1: पर आपने मुझे बताया थोड़ी ना मेरे को क्या अप्लाई करना है। ओके,
2: जो आपके मैसेंजर पे है
1: वो। अच्छा, ऐसे बताइए कि आपने कुछ भेजा हुआ है, देन आई विल नो ना, बिना बताए कैसे मैं बजा दूं। ओके, दिस इज व्हाट यू वांट मी टू प्ले।
2: यस, इट्स जस्ट
1: एक काम करते हैं, ये गाना हम शुरू करते हैं, प्ले करते हैं, यू लिसन टू दिस सॉन्ग, इसके बाद हम वो प्ले करेंगे जो आप बोल रहे हो।
2: हाँ,
1: एटलीस्ट विल बी प्रिपेयर्ड टिल देन।
2: इन द मीन टाइम आप क्या करें, आप BF, सिर्फ BF लिखकर 5599 पर भेजें हमारे पास।
1: अपना नाम लिखना है, नहीं लिखना
2: ना, कुछ नहीं लिखना।
1: Okay.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. I'm Kelly Jari here on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. So finally, जो हमने तैयार किया या जो मैंने तैयार किया था वो आपको सुनाने जा रहा. Within 48 hours, over 50,000 views. Have you had time to listen to it?
1: हाँ, मैंने दो तीन बार तो सुनी लिया है. कुछ views तो मेरे भी हैं इस पे.
0: कुछ views आपके भी हैं? क्या views हैं?
1: अरे मतलब मैंने जो सुना है वो contribute किया मैंने. हाँ.
0: मुझे लगा आपके कुछ आपका कुछ opinion है.
1: किसी ने already message कर दिया है कि उन्होंने शायद ये सुना है जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं.
0: अच्छा, कौन है तो आप ये गाना सुने. ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि नीश ऑडियंस के लिए लिखा था मैंने.
1: लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये शायद हर किसी को पसंद ना आए, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्टेक्स्ट गाने का.
0: नहीं, समझ में तो शायद आ जाए. इट्स बेसिकली फिजी हिंदी सॉन्ग.
1: राइट,
0: फिजी हिंदी सॉन्ग. और ये एक फन सॉन्ग है जो आई थिंक अ कपल ऑफ डेज बैक मैंने लिखा था.
1: आपने लिखा था?
0: मी माइसेल्फ एंड आई.
1: वाह वाह वाह, क्या बात है. तो चलिए आपको सुनाते हैं. आप बताना चाहेंगे गाने का टाइटल क्या है?
0: नहीं, वो मैं नहीं बताना चाहूंगा.
1: आज शुक्रवार के दिन
0: आप ऐसा करें, इस गाने का लिंक आपको मिल सकता है. हाँ. बस BF लिखकर, और जब गाना सुन ले तो बताएं कैसा रहेगा.
1: वाह, माय गुडनेस.
0: या आई मीन इट फील्स गुड व्हेन यू वर्क हार्ड, क्योंकि आई थिंक दिस
1: इट फील्स गुड व्हेन यू वर्क हार्ड एंड आपको वो अप्रिसिएशन मिलता है. आपने लाइन कंप्लीट नहीं की, बिकॉज आई कैन सी द एक्साइटमेंट इन यू नो इन यू कि जब आपने ये नोटिस किया कि विद इन टू डेज बेसिकली आफ्टर यू रिलीज्ड इट इसे इतने सारे व्यूज मिले, तो वो खुशी हुई आपको, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ट्रैक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जिसे इतने सारे व्यूज मिले ना.
0: नहीं, इससे पहले एक और गाना था, मैं आपको बाद में बताऊंगा. It went, I think, around 300,000 views or something
1: nice.
0: Like that.
1: Not
0: yeah.
1: bad. तो चलिए ये आपको सुनाते हैं. अगर आपको गाने का टाइटल या बाकी सारी चीजें जाननी है क्या, तो ये आपको लिंक पे मिल जाएगा ऑटो रिप्लाई में. जैसे कि उन्होंने कहा, BF लिखकर अगर आप भेजोगे. Everyone is working hard and जब उनको appreciation मिलता है तो खुशी होती है, तो बस वो खुशी ये आपके साथ बांट रहे हैं ये शेयर करते हुए. Obviously that's what you are doing if I'm not mistaken. तो ये सुनिए जो written and composed but not sung by Vijay Verma.

0: हाँ खत्म हो गया। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई फीडबैक है कि दिस इज हाउ इट साउंडेड टू यू, आप जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट एज वेल, जैसे कि हमने कहा लिंक मिल जाएगा। किसी ने पूछा है सुरवा का क्या मतलब है?
1: यार सुरवा का ये क्या तरी बोलते हैं?
0: तरी बोलते हैं, यस तरी, ग्रेवी, दैट्स द मीनिंग।
1: ओके
0: तो थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए, फिलहाल जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने मैसेजेस सेंड करे। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड इट्स टाइम फॉर
2: राशि वाइब्स।
1: दिन कैसा रहेगा आज का आपका? सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि आज जो कोशिशें आप कर रही हैं उसका एक बड़ा रिजल्ट आपको मिल सकता है, बिजनेस से पूरा फायदा होगा और फाइनेंशियली दिन बढ़िया रहेगा।
0: और उसके बाद वृष ने टॉरस, आपके लिए कहा गया कि आज चीज़ों को आराम आराम से करें, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आज आपके लिए कहा गया है कि फाइनेंशियल मैटर हो या कोई प्रैक्टिकल मैटर, ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यू जस्ट कैन इग्नोर इट कि बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, वो नहीं करना चाहिए आपको। सो पे अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग टुडे।
1: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज जो लोग नौकरी करते हैं आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, अटके हुए काम पूरे होंगे, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा और मेंटली यू विल बी एट पीस टुडे।
0: कर्कट ने कैंसर, यू मे बी क्रेविंग कंफर्ट और फैमिली कंपनी जो है इसकी तलाश आप कर रहे हैं, जो शायद आपको अच्छा फील कराता था इज नो लॉन्गर बीइंग शेयर्ड विद यू, तो उसकी कमी आज आपको महसूस होगी। आपके लिए कहा गया है मेक टाइम फॉर द पीपल हु मेक यू फील रिलैक्स्ड एंड अप्रिशिएटेड, बहुत जरूरी है कि आप उनको भी अपना समय जो है ये दे।
1: सिंह यानी लियो, आज अगर आप, आपके बारे में कहा गया है कि आपका इंपॉर्टेंस जो है ये ऑफिस में बढ़ेगा, बॉसेस काम से बहुत खुश रहेंगे, कुछ नए डील्स आज आप फाइनल कर सकते हैं, पूरा दिन काफी एनर्जेटिक गुजरेगा।
0: कन्या यानी वर्गो, फाइनली आपके रिजल्ट्स जो है आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर आप बहुत मेहनत कर रहे थे इतने दिनों से, एंड यू वर थिंकिंग कि अच्छा इसको कैसे अचीव करें, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं आपके सामने सच होता हुआ। बस एक सलाह दी गई है कि डोंट स्पेंड द होल डे इस बात की चिंता करते हुए कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, बस थोड़ा आराम से थोड़ा पोज लीजिए और पोज लेते हुए अप्रिशिएट कीजिए ऑफ व्हाट हैव यू अचीव्ड, कितना प्रोग्रेस आपने अभी तक देखा है।
1: तुला यानी लिब्रा, आज बिजनेस ठीक ठाक ही रहेगा, जहाँ तक हो सके गैम्बलिंग से दूर रहें और अपनी निजी जिंदगी में गलत फहमी की कोई जगह आज ना छोड़े, एकदम क्लैरिटी के साथ बातें करें, इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस जो है इस पर थोड़ा ध्यान दें।
0: और उसके बाद आज वृश्चिक ने कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आपके पास एक पावरफुल रियलाइजेशन जो है ये आपको हो सकता है आज, ये जो रियलाइजेशन है आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग और आपका अप्रोच बदल सकता है, समथिंग दैट हैज़ बीन कंफ्यूजिंग यू सडनली आपको और ज़्यादा सेंस जो है ये मेक करने लगेगा। एक और एक सलाह दी गई है कि आज अपने ऊपर भरोसा रखें, जो भी आपके इंस्टिंक्ट्स आपको यू नो चीख चीख कर बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू प्लान योर सेल्फ अनटिल आप तैयार है।
1: धनी यानी सेजिटेरियस, नेटवर्किंग और मीडिया से अगर आप जुड़े हैं तो आज आपको काफ़ी फायदा हो सकता है, बिजनेस में अगर कुछ यू नो ऐसे डिसीशंस आप लेते हैं जो शायद लेने से आप डर रहे थे, तो इससे आपको फायदा हो सकता है, सेहत आज एकदम बढ़िया रहेगा।
0: और उसके बाद आज मकर यानी कैप्रिकॉन, आपके लिए कहा गया कि इस पूरे वीक आपने काफ़ी मेहनत की है एंड आज वो दिन है जहाँ पर इस मेहनत का आप फायदा जो है ये उठाए। आज आपके लिए ये भी कहा गया है कि आप अपना वीकेंड एक ऐसे अंदाज में एंजॉय कर पाएंगे विच विल ऑलवेज मेक यू रिमेंबर कि यार बहुत अच्छा टाइम जो ये स्पेंड किया।
1: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज आपकी पर्सनालिटी एकदम निखर कर सामने आएगी, हर काम में सक्सेस हासिल करेंगे, बिजनेस करते हैं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं और अचानक पैसों का फायदा भी हो सकता है।
0: और उसके बाद आज फाइनली मीन यानी पाइसेस के लिए कहा गया है कि आपके इमोशंस जो है थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं आज आप इस चीज़ को लेकर, तो ख्याल रखें, बट दैट इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू एक्चुअली बिकम मोर क्रिएटिव, तो कंपैशनेट है आप, इसका मतलब ये नहीं वीक है, इसीलिए ये चीज़ समझनी भी आपको ज़रूरी है कि अपने आप को हमेशा आपको कम नहीं समझना है, बिकॉज व्हेन यू वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट तो इसका असर जो है ये आपकी क्रिएटिविटी पर भी पड़ता है। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, तभी आप लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका मजा उठाते हुए खुश रहना सीखेंगे। ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ मूविंग ऑन, कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म।
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ।
4: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
5: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
6: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
4: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके। लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे। नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
11: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
10: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL। T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
12: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
13: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
12: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
14: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
15: All right, Pippa, now we're going to do a radio ad.
16: Can't you just use my line from the TV ad?
15: Well, let's just do it again, please, Pippa.
16: Phone dollars are for phones. Obviously?
15: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
16: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
15: QTs and Cs.
16: Eligibility and Ts and Cs apply. For more info, visit 1NZ/1Wallet.
15: Cool, and the NBIT.
16: One New Zealand. Let's get connected.
17: It's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
2: Celebrity Alarm. Hit it.
0: चलिए बारी है कि आज की सेलिब्रिटी लाम जो है ये आपके लिए हम लिख रहा है, मतलब एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनकी आवाज़ आपको सुनाएंगे और आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन है। आज फ्राइडे है तो ट्राइंग टू थिंक मीन कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। और आज आपको चलिए जो आवाज़ हम सुनाने वाले हैं, इट इज़ दिस वॉइस। बहुत शॉर्ट ऑडियो क्लिप है ये, तो आपको एकदम ध्यान से सुनना होगा।
18: कितना काम करवाता है गोपाल हमसे और खुद दादागिरी करके आराम करता है। ए, तुम दोनों चुप बैठे हो, इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी है।
0: तो आपको बताना है कि ये किसकी आवाज है। एकदम छोटा क्लिप था, दैट्स व्हाट आई सेड, इसीलिए मैंने बोला था कि यू विल हैव टू पे अटेंशन टू इट, बहुत ध्यान से, अदरवाइज आप मिस कर दोगे कि अच्छा ये आवाज आपको समझ आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो हमने आपको आवाज़ सुना दी है, अब आपको क्या करना है?
1: आपको अपना जो आंसर है ये भेजना है कि ये आवाज़ किसकी है। BF अपना आंसर और अपना नाम 5599 पर आप हमारे पास भेजिए। आज का पहला सवाल पिछले घंटे जो था हमारा, ये तो कमाल गया। अब देखें आज सेलिब्रिटी अलार्म जो है उसकी क्या हालत होती है।
0: तो चलिए एक आखिरी बार आपको सुना रहे हैं बिफोर मूव ऑन टू विद बॉलीवुड मोस्ट वांटेड। ये आवाज़ आपको पहचाननी है, पे अटेंशन टू दिस वॉइस।
18: कितना काम करवाता है गोपाल हमसे और खुद दादागिरी करके आराम करता है। ए, तुम दोनों चुप बैठे हो, इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी है, वरना मैं
0: तो जल्दी से बताइए किसकी आवाज है ये. BF स्पेस योर आंसर योर नेम 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है.
2: Hollywood's most wanted.
19: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
20: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 800-634-234.
1: News headlines.
2: आज सुबह के मुख्य समाचारों में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत हुई 85 रेड्स में 34 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस सिलसिले में हजारों कैनबिस प्लांट, चार बंदूकें और ऑकलैंड के वियतनामीज क्राइम लिंक्ड ग्रो हाउसेस से 270 केजी लूज कैनबिस सहित भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए। दोनों देशों में कुल 560 रेड्स के तहत 1,203 लोगों पर 3,339 मामले दर्ज किए गए हैं। न्यूजीलैंड फर्स्ट ने स्मॉल बिजनेसेस के लिए कंपनी टैक्स रेट को 28% से घटाकर 20% करने का इलेक्टोरल वादा किया है। ये स्कीम $30 मिलियन से कम टर्न ओवर वाली कंपनीज पर अप्लाई होगी, जिससे गवर्नमेंट पर पड़ने वाला $1 बिलियन का बोझ आगे चलकर इकोनॉमिक ग्रोथ और नई जॉब्स से पूरा होने का दावा किया गया है। न्यूजीलैंड ऑल वाइट्स और पैलेस्टाइन के खिलाफ कल हुए एक फ्रेंडली इंटरनेशनल में दोनों टीमें दो दो गोल से बराबर ठहरी। एनपीसी के एक मैच में कल टेस्मिन माको की जीत बे ऑफ प्लेंटी के खिलाफ 45-26 से हुई। आज रात 7 बजे ऑकलैंड मनवातु को होस्ट करेगा। इसके अलावा अन्य स्पोर्ट्स की ओर अगर देखा जाए तो यूएफए नेशंस लीग के कई मैचेस जो है ये फिलहाल खेले जा रहे हैं। आज हो रहे मैचेस पर अपडेट की ओर अगर देखें तो फिलहाल नॉर्वे की जीत डेनमार्क के खिलाफ 2-1 से हो रही है। हाफ टाइम पर लिथुएनिया और लिचिटसन निलोल से बराबर, कोसोवो और आयरलैंड भी निलोल से बराबर हैं। जर्मनी की जीत नेदरलैंड्स के खिलाफ 1-0 से हो रही है। ऑस्ट्रिया 1, इसराइल 0, पोर्चुगल 1, वेल्स 0 और सेबिया की जीत अभी ग्रीस के खिलाफ हाफ टाइम पर 1-0 से हो रही है। इन मैचेस पर और भी अपडेट्स आपके लिए बारी बारी से हम पर हम लेकर आते रहेंगे।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Hum, accurate traffic.
3: ThePropertyDirectory.com.
4: Fine on and off today with cloudy patches, a high of 16 degrees. Northwestern motorway, 28 minutes messy to the city. We're slow on the causeway and heavy patches from Point Chev and a slow join at the Lincoln Road off ramp with a breakdown in the middle lane there. Southern motorway, half an hour, Manukau to the city, just slow on and off, Manukau to Green Lane. Northern 20 in from Constellation, but slow close to the bridge. Southwestern fine.
3: Thinking about property? Everyone you need in one place. ThePropertyDirectory.com.
5: It's the one you've been waiting for. Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected big brand clothing, footwear and more. Big brand, big savings. Get into Rebel Sport today. These deals and so much more. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enrol by midnight 4 October. So don't leave it too late.
7: Get your EasyVote card. Enrol by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
8: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
9: Celebrate Macca's 50th with the Meal Steal Combo for $17. That's a Big Mac, cheeseburger, fries, a soft drink, plus a birthday bonus from the warehouse or time zone for a limited time. The Meal Steal Combo. On now at Macca's. T's and C's apply.
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Paramesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
11: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में। बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM। देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड। डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन। रजिस्टर नाउ, विजिट bilcaps.com। प्रमोटेड बाय वेब टाइगर।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
13: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
2: आज 25th of September, सबसे पहले राजेंद्र कुमार जी फ्लैटबुश में आज अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं. आज का ये स्पेशल डे आपको अनिको

0: 34।
1: 20 मिनट बाकी है 8 बजने में। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे न्यूजीलैंड में एक नया रिसर्च जो है ये सामने आया है और इट इज समथिंग इन रिगार्ड्स विद AI जनरेटेड जो चीजें हैं, जो फेक चीजें होती है जो AI से जनरेट की जाती है ना, इसके रिगार्ड्स में है। बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है तो ये थोड़ी देर बाद आपको हम जरूर देंगे, इसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना है। लेकिन उससे पहले आज आपको बताना चाहते हैं साल 2010 या 2010 अगस्त का महीना जो दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसा छपा कि इसके बारे में सोचकर भी भाई बहुत घबराहट होती कि ऐसा कुछ कभी मेरे को फेस ना करना पड़े।
2: क्या हुआ था?
1: 2010 में अगस्त महीने में वर्ल्ड का सबसे मैसिव ट्रैफिक जैम जो है ये हुआ था
2: चाइना में
1: बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे जो है नेशनल हाईवे 110 यहाँ पर ये ट्रैफिक जैम हुआ था। पर ये कोई आम ट्रैफिक जैम नहीं था, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम था क्योंकि ये ट्रैफिक जैम इट स्ट्रेच्ड अबाउट 62 माइल्स विच इज 100 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स लंबा एंड द वर्स्ट पार्ट इट लास्टेड 10 to 12 days 10 से 12 दिन। इनफैक्ट कुछ ऐसे इंडिविजुअल ड्राइवर्स हैं हु रिपोर्टेड बीइंग स्टक फॉर अप टू 5 days एज वेल, लेकिन 10 से 12 दिन तक ये ट्रैफिक चला था। एंड द मेन कॉज वाज रोड कंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से हाईवे कैपेसिटी जो है एकदम कम हो गई थी। ह्यूज नंबर ऑफ हैवी ट्रक्स पर्टिकुलरली कोल ट्रक्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे कोल्स फ्रॉम इनर मंगोलिया और ट्रैफिक हैड ऑलरेडी ग्रोन ड्रामेटिकली जिसकी वजह से जो रोड है इट वॉज बियॉन्ड इट्स इंटेंडेड कैपेसिटी वैसे भी एंड ब्रेक डाउन्स माइनर एक्सीडेंट्स ने सिचुएशन को और भी गंदा बना दिया। एंड यस द ह्यूमन इंटरेस्ट पार्ट इज ट्रू कि जो विलेजेस है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बाहर आए ट्रैफिक पर रास्तों पर, उन्होंने खाना बेचा, पानी बेचा, इंस्टेंट नूडल्स बेचे जो स्ट्रैंडेड ड्राइवर्स थे और सम चार्ज फार मोर देन नॉर्मल प्राइस क्योंकि ड्राइवर्स के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं तो अभी इनको जो भी मिल रहा था वो ले रहे थे। बट 10 से 12 दिन एक ट्रैफिक में फंसे रहना, द थॉट ऑफ इट इज सो स्केरी। पागल हो जाऊँ अगर ऐसा कोई सिचुएशन मेरे को फेस, आई जस्ट कांट सर्वाइव इट। आप इमेजिन करो अगर अभी यहाँ ऑकलैंड का ट्रैफिक आप ले लो, मैक्सिमम 20 मिनट भी अगर आप ट्रैफिक में फंसे रहते हो, आई एम सेइंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वेयर यू नॉट इवन मूविंग दैट मच, बस धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी गाड़ी मूव हो रही हो, 20 मिनट में हालत खराब हो जाती है। एंड दिस हैपेंड इन अ बिग कंट्री जहाँ पर टेक्नोलॉजी, जहाँ पर चीज़ों की काफ़ी तारीफ की जाती है, फटाफट सब कुछ हो जाता है। अ कंट्री लाइक चाइना वहाँ पर 10 से 12 दिन तक ये लास्ट किया, सो इट इज़ काइंड ऑफ स्कैरी एट द सेम टाइम एंड वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। बट येस इट इज़ ट्रू, ऐसा सच में हुआ था और अगर आप चाहें तो इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। बट ऑन द अदर हैंड हमने आज जो सवाल पूछा काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर आए, मुझे लगा नहीं था कि इसका कोई गलत आंसर आएगा बिकॉज इतना ईजी था ये, बट बावजूद उसके गलत आंसर आए हैं। कुशाल ने कहा है कुणाल खेमू, सृष्टि ने कहा है कुणाल खेमू और उसके अलावा प्रियम ने कहा है फरदीन खान, तो ऐसे आंसर्स जो है ये आपने हमारे पास भेजे हैं। एज आई सेड आई डिडंट थिंक कि ये जवाब जो है किसी न किसी तरह से गलत हो सकता है बिकॉज आई थॉट कि बहुत इजी है, आज फ्राइडे है, वी ट्राई टू कीप इट इजी एट द सेम टाइम। तो एक फाइनल टाइम आपको सुना रहे हैं, ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी जिनकी आवाज आपको पहचाननी है, पे अटेंशन टू दिस।
3: कितना काम करवाता है गोपाल हमसे और खुद दादागिरी करके आराम करता है।
4: ए!
3: तुम दोनों चुप बैठे हो इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी है वरना मैं
4: ए?
1: तो ये किसकी आवाज है आपको बताना है। इफ यू थिंक यू नो द आंसर BF लिखना है सबसे पहले, फिर अपना आंसर और सेंड कर देना है इसे 5599 पर। अराउंड थ्रोबैक हम आपको सही जवाब बताएंगे।
5: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: morning special drive.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
2: अभी. ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Accurate traffic.
6: Kitchen Mania free installation.
7: Fair bit of cloud, still plenty of sun, a high of 16 today. Coming in on the northwestern, a breakdown at the Lincoln Road off-ramp sorted. We're just slow on the motorway from Point Chef, little heavy to St. Luke's, 24 minutes in from Massey. Northern pretty good, 21 in from Constellation, bit slow there and close to the bridge. Southern half an hour, Manukau to the city, slow Manukau to Papatoetoe and Mount Wellington to Green Lane, southwestern all good.
6: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz, T's and C's apply.
8: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
9: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800 862 342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800 722 462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
4: तो अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि AI जनरेटेड जो फेक चीज़ें होती है इसके बारे में एक खबर है और बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में बातें करेंगे. अपेरेंटली न्यूजीलैंड में एक नया रिसर्च जो है ये किया गया है, और इस रिसर्च में बहुत से ऐसे कीवीज हैं हु आर कॉन्फिडेंट दैट दे कैन रिकॉग्नाइज AI जनरेटेड फेक, लेकिन उनका ऑनलाइन बिहेवियर टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी.
11: किनका?
4: जिन लोगों ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया है उनका.
11: अच्छा, ओके.
4: और एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, इनका नाम है एवेस्ट्स, और एवेस्ट्स ने 2026 सेफ टेक रिपोर्ट जो है ये रिलीज की है, जिसमें ये बात सामने आई है कि 66% ऑफ न्यूजीलैंड एडल्ट्स बिलीव दे कुड आइडेंटिफाई एन AI फेक, लेकिन एट द सेम टाइम 40% ने कहा है कि दे हैड शेयर्ड या फिर कंसीडर्ड शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक AI टूल के साथ, जिसमें CVs और वर्क डॉक्यूमेंट जैसी चीजें शामिल है, विद 21% रिपोर्टिंग ईच कि उन्होंने ऐसा किया है. एवेस्ट का कहना है कि दिस इज द AI कॉन्फिडेंस ट्रैप, नोइंग की रिस्क है लेकिन बिकमिंग लेस कॉशियस, क्योंकि AI टूल्स जो है ये ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट स्टेफन को का कहना है कि लोग अक्सर ऐसी बहुत सी कन्विंसिंग स्कैम्स जो है ये फेस करते हैं, एंड AI कैन नाउ क्रिएट रियलिस्टिक फेक वॉइस, वीडियोज, वेबसाइट्स एंड मैसेजेस जहाँ पर जो ट्रेडिशनल वार्निंग साइंस लाइक बैड स्पेलिंग या फिर यू नो ब्लर्ड इमेजेस वगैरह जो है इसे स्पॉट करना अब और भी हार्ड हो जाएगा. इनका एडवाइस है शेयर लेस इन्फॉर्मेशन विद AI एंड रिमूव पर्सनल डिटेल्स बिफोर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है ये किसी भी AI टूल पर अपलोड कर रहे हैं. और इस बात को याद रखिए, इफ़ यू डोंट वांट टू हैंड योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन टू अ स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट, दो तीन बार अच्छे से आप सोचें बिफोर पुटिंग एनीथिंग ऑन एन AI चैटबॉट. क्योंकि अगर आप AI चैटबॉट पर अपना कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी चीज़ें डाल रहे हैं, इट्स बेसिकली लाइक शेयरिंग योर प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद अ स्ट्रेंजर. जो उसका कैसा इस्तेमाल करेगा, यू हैव नो आइडिया.
11: साउंड्स स्कैरी.
4: इट इज स्कैरी. एंड हम अक्सर ऐसे बहुत से AI टूल्स जो है ये देखते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं या फिर वी कम अक्रॉस इट एंड हम जस्ट बिकॉज, जैसे कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि वो इजी है, कन्वीनियंट है, तो हम यूज कर लेते हैं. बट वी डोंट पे अटेंशन कि हम उसको कितना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन होनी नहीं चाहिए, इंटरनेट पर जानी नहीं चाहिए, बट वी टेंड टू डू इट बिकॉज हम जानते हैं वो नहीं करना चाहिए. कन्वीनियंस देखकर we still do it. They don't understand the risks behind it, na?
11: Exactly. उसके बारे में जानना और समझना जो है कि बहुत ही जरूरी होता है.
4: हाँ, तो चलिए ये कुछ जरूरी चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहे थे. होपफुली इट मेक्स यू थिंकिंग एंड आप भी इस पर गौर करते हुए अब थोड़ा और कॉशियस होकर कोई भी चीज करें. दूसरी ओर आज हमने सेलिब्रिटी अलार्म में जो आवाज सुनाई थी, सबसे पहला जवाब अजय ने हमें दिया था, उसके बाद गुंजन, अरमान, अनमोल, रॉबिन का आंसर आया था, सलू है, गुरविंदर सिंह जी है मनुरीवा से, साथ में सोम ने हमारे पास मैसेज किया था, सनी है, रविनेश फ्रॉम फ्लैटबुश, और उसके साथ साथ रवि है, शोएब है, रोजलीन है, साथ में मोविन है, श्रुति है, विनील फ्रॉम मनुरेवा, इन्होंने अपना आंसर दिया, और शवीन का भी मैसेज आया था. सर, जितने लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स भेजे उसमें से लास्ट में भी एक दो गलत आंसर्स आए. किसी ने श्रेयस तलपड़ी कहा था, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि आज के हमारे सेलिब्रिटी थे
11: शर्मन जोशी.
4: शर्मन जोशी, यस.

0: accurate traffic.
1: Meanwhile, in warehouse country,
2: mainly fine, but plenty of cloud as well. Got a high of 16 today. Coming into the city, motorways fairly good. Northern, 21 minutes in from Constellation Drive, 34 from Silverdale to town. Slow at Silverdale, Constellation, and close to the bridge. Northwestern, 24 minutes in from Massey. Slow from Partiki, little heavy around St. Luke's. Southern, half an hour Manukau to the city. Slow there to Papatoetoe. Heavy at Mount Wellington and slow to Green Lane.
1: And the country's cheapest Nature's Fresh bread, eggs, and milk are waiting at the warehouse.
3: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग स्टोरेज शेल्विंग रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स टीज एंड सीज अप्लाई एंड्स अक्टूबर 14 स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
5: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
7: Get it sorted with Cheap As Deals. Save over 30% on wet and forget moss and mold remover, 5-litre concentrate, now $65. And a 30-centimetre Gardener's Edge green hanging basket, only $5. Limited stock. Cheap As Deals, in Sunday at Mitre 10.
8: Freedom's Outdoor Furniture Flash Sale is on now. Get 30% off outdoor furniture and homewares. From outdoor lounges to outdoor cushions, save 30%. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.
9: Check.
10: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
11: Good morning, is Samiti Kaart Bajrahi hai. Hum
9: News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 8. The government insists there will be no further delays to the council amalgamation process. It has delayed work on the plan, sparking outrage from local bodies. Minister Simon Watts says they are still committed to the new timeframe.
13: The direction of travel around ensuring that this reform is legislated in 2027 for the removal of regional councils in 2028, that remains the destination.
12: There's congestion on State Highway 2 at Maramarua in Waikato after a truck trailer rolled. No injuries are reported, but police say traffic is backing up. Large homes are renting for 9% more year on year. Five or more bedroom houses are up to $1,100 a week on Trade Me. Spokesperson Casey Wild says friends and families are banding together to try split living costs.
14: Which has driven up demand for bigger homes. Because inventory is naturally limited, even a small spike in interest pushes prices up fast.
12: Israel's Prime Minister waged an assault on New York's mayor during his address to the UN General Assembly. Benjamin Netanyahu honed in on Zoran Mamdani, who earlier called him a war criminal.
15: Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide. And that's exactly what Mr. Mamdani's Hamas buddies would have done to us had we not stopped them.
12: In sport, England's made three changes for Sunday's test against the Black Ferns at Twickenham. Coach John Mitchell says the Black Ferns are looking dangerous.
16: Definitely a side that looks like they're on the up under Whitney's leadership, so we're going to certainly have to be at our best.
12: And Tasman are up to 6 on the NPC table after beating Bay of Plenty 45-26 in Nelson last night. Rugby news with All Blacks Travel and Hospitality.com. Eden Park Bledisloe Cup hospitality packages selling now.
9: Sports news. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best. Hamari koi brands nahi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: ऑकलैंड में आज मौसम जो है बीते दिनों के मिलान में अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा बदलेगा, कुछ बादल छाएंगे, हल्की बारिश आज हो सकती है। अभी टेम्परेचर्स अराउंड 12 डिग्रीज, आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 10 डिग्रीज रहेगा।
9: Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
0: ट्रेंड पेट्रोल की बारी आई है तो चलिए आज का ट्रेंड पेट्रोल जो है ये आपको हम सुनाते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन और आई केम अक्रॉस दिस ट्रेंड, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई ट्रेंड जो है ये हो रहा है फिलहाल। और कमाल की बात ये है कि ये जो ट्रेंड है ये दरअसल चाइना से शुरू हुआ है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई मीन आई कम अक्रॉस दिस वीडियो जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि चाइना में ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। और ये ट्रेंड कुछ ऐसा है कि जो मम्स हैं वो क्या करती है, अपने बच्चों को अपना फोन देती है और उनको बताती है टू रिकॉर्ड अ वीडियो वेयर दे हैव टू, द मम्स हैव टू मेक अ वीडियो। और कैमरा जो है इट फेसेस द चाइल्ड, इट फेसेस द किड, राइट। और बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप मम्मी का वीडियो जो है ये बनाओ, व्हेन द किड डजंट नो कि मम्मी उनका वीडियो बना रही है सीक्रेटली। और इस वीडियो में द मम्मी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द पर्सन आई लव द मोस्ट।
11: अच्छा,
0: द पर्सन आई लव द मोस्ट उनका बेसिकली टॉपिक होता है। और इस वीडियो में वो क्या करती है, उस शख्स को डिस्क्राइब करती है जिनको वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। और जो कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन कॉन्टेक्स्ट में अपने बच्चे को वो खुद डिस्क्राइब कर रही होती है जबकि उनका बच्चा जो है ये वीडियो बना रहा होता है। और धीरे धीरे वो रियलाइज करती है कि उनकी मम्मी उनके बारे में बोल रही है।
11: हाँ, तो उनका रिएक्शन
0: जो है ये कैप्चर कर रहे हैं, देयर पोस्टिंग इट अप ऑनलाइन एंड पीपल आर लविंग दीज tiny humans giving this मतलब overwhelming reaction, जहाँ पर कुछ बच्चे जो इतना खुश हो जाते हैं कि वो मतलब उनके चेहरे पर से स्माइल ही नहीं खत्म होती when they hear and they realize कि उनकी मम्मी उनके बारे में बोल रही है। तो इतना स्माइल वो करते कि वो खुद को रोक नहीं पाते कि वो इतने हैप्पी है कि वो अपनी मम्मी के सबसे फेवरेट मोस्ट लव्ड पर्सन है। कुछ वीडियोज ऐसे भी आए जहाँ पर बच्चों का इमोशनल होकर रोना भी शुरू हो गया।
11: अच्छा,
0: जस्ट कुडंट होल्ड देयर इमोशंस और वो इतने इमोशनल हो गए कि वो वीडियो में रोने लगे व्हेन देयर मम डिस्क्राइब्स देम कि किस शख्स को वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में। एंड दीज वीडियोज आर गेनिंग सो मच अटेंशन एंड सो मच लव दैट पीपल आर सेइंग कि यार दिस ट्रेंड इज वर्थ टॉकिंग अबाउट एंड अप्रिशिएटिंग। एंड आई अग्री, आई कुडंट हैव अग्रीड मोर कि इतना खूबसूरत रिएक्शन जो है बच्चों का देखकर बहुत खुशी होती है कि when you see them happy ना कि they are the most loved person in their mom's life, तो वो itself is
11: या मुझे सुनकर ही खुशी हो रही है। I haven't seen a single video, I haven't seen any article, कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह से आप बता रही है वो सुनकर ही I'm feeling very very happy.
0: Yeah, it is a very beautiful trend I would say, और this is currently something जो you know mummies कर रही है particularly in China, जहाँ पर बहुत से videos जो है ये सामने आए हैं। And if you get a chance to witness a few, do that. And अगर आपको मौका मिले ऐसा कोई trend, in case you are a social media content creator है, आप social media influencer है, content creator है, if you'd like to do that trend with your kids, make sure I get that done and see their reaction. If you're not a social media content creator or anything, आप अपने बच्चों के videos online नहीं post करते हैं, no worries at all. मेमोरी के रूप में आप रिकॉर्ड कर रख सकते हैं, बिकॉज व्हेन योर किड ग्रोज अप दीज आर द थिंग्स दैट विल स्टे विद यू।
11: या आप जब वो बड़े हो जाए तो उनको दिखाएं आप ना,
0: हाँ,
11: कि ये दिस वाज द रिएक्शन जो आपने दिया था व्हेन यू वर अ किड।
0: और जब वो बड़े हो जाए तो जब आप उनको याद करेंगे अ डे व्हेन दे आर नॉट स्टेइंग विद यू बिकॉज दे विल मूव ऑन इन देयर ओन लाइव्स इन देयर ओन फैमिली, तो यही वो मोमेंट्स होंगे जो आपको हमेशा खुश रखेंगे। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रेंड, आप भी अगर ट्राई करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं।
11: फिलहाल 6 मिनट हुए हैं 8 बजकर, थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए होगा जिस पर हम बातें करेंगे। आई थिंक पिछले घंटे हम लोग बातें कर रहे थे कि या फिर 6 बजे के बाद कि आज वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापा टोयोटो में हम कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग जो है ये की जाएगी। कई आर्टिस्ट जो है ये register हुए हैं recording करने के लिए, तो तकरीबन 7 PM से recording शुरू हो जाएगी. आप सभी के लिए भी entry absolutely free है. All you've got to do is come down Vedic Center, 32 Glasgow F Papatoi 2. और हमने कहा है कि आप सभी के लिए बहुत सारे जो giveaways वगैरह है ये हम लेकर आ रहे हैं. Merchandise है जो आपके लिए वहाँ पर available होगा आज on the night. इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले जो revelation है ये नहीं किया था, क्योंकि we were waiting for the day. एंड लेट्स सी आज आप में से कितने लोग, अगर अभी जितने लोग सुन रहे हैं आप आज आने वाले हैं, तो आपको एक एडवांस अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं टू गो इन टू द ड्रो टू विन समथिंग जो आज वहां पर हम देने वाले हैं. अगर ये आपको जीतना है, बट द कंडीशन इज जब ये ड्रो हो you have to be at Vedic Center.
0: Then only you'll be able to claim it.
11: हाँ, otherwise ये price किसी और को चला जाएगा. और आपको क्या करना है, बस अगर आज आप आ रहे हैं, हम कीर्तन संग्रह recording 32 Glasgow F Papatoi 2 स्थित Vedic Center में, तो आप अभी BF लिखें, अपना नाम लिखें और उसे 5599 पर हमारे पास भेज दें. दो गानों का वक्त हम आपको देंगे.
0: ओके, गेट स्टार्टेड. 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं अपने नाम के साथ.

0: show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile, or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
5: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
6: The Entrust dividend of $377 has just been paid. Woohoo! 374,000 Auckland households and businesses in the Entrust district are sharing $141 million. So go on, celebrate having a bit extra in your pocket. Treat yourself, pay some bills, or stash it away. You choose. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. Enjoy your Entrust dividend, Auckland.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
11: अभी 19 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। लेकिन आज हमने कहा था एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नथिंग कंट्रोवर्शियल, या ऐसा नहीं कि कहीं से हमने रिसर्च किया है और उसके बारे में बातें करने जा रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू टेक यू बैक डाउन मेमोरी लेन और कुछ यादों को ताज़ा करेंगे और ऐसी यादें ताज़ा करेंगे जो आज भी आपके पास हैं।
12: ओके,
11: जैसे कि हम में से कितने लोग हैं जिनके घर पर अभी भी फोटो एल्बम्स हैं?
12: ओह, फोटो एल्बम्स?
11: हाँ,
12: नहीं, आई डोंट हैव एनी। आई हैव गॉट फोटोज, प्रिंटेड फोटोज मेरे पास अभी भी ऐसे लाइक एनवेलप में रखे हुए हैं, बट एल्बम में नहीं डाला है।
11: हम में से कैसे कितने लोग हैं जिनके पास पुराने जमाने के वो करेंसीज हैं?
12: करेंसीज,
11: नोट्स, पैसे?
12: नहीं है, मेरे पास तो नहीं है भाई।
11: और इस तरह की और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती। कई लोग बहुत सजो कर संभाल कर रखते हैं, जैसे कि आपको कोई बर्थडे कार्ड मिला होगा किसी एक मौके पर, या आपकी शादी की शादी का कार्ड जो था वो आपने बचा कर या अच्छी तरह से
12: संभाल
11: कर
12: रखा हुआ।
11: हाँ, कुछ लोग जो है यू नो, जब पहली बार डेट पर जाते हैं तो वहाँ का जो क्या बोलते हैं वो पेपर नेपकिन जो होता है ना, अरे यार वो हाथ पोछने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू, उसको एज अ मेमोरी रखते हैं।
12: ओह रियली?
11: हाँ हाँ, वो भी रखते हैं।
12: अच्छा, नहीं,
11: या फिर
12: आई हैव नो आईडिया अबाउट दिस वन।
11: किताबों में फूल छुपा कर रखना,
12: ये पहले बहुत से लोग करते थे।
11: या आपके पुराने समय की कोई किताब जो अभी भी आपके पास है। तो बेसिकली आज उन यादों को हम ताजा करने जा रहे हैं।
12: ओके, सो लेट्स सी, आप अगर हमारे साथ ऐसी कोई मेमोरी जो है रिफ्रेश करना चाहते हैं, 0800 00 हम 0800 00 4866 पर आप कॉल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सपना। हेलो, क्या हो गया? अच्छा इन्होंने फिर कॉल डिस्कनेक्ट भी कर दिया है अभी देखते हैं इफ शी कॉल्स बैक तो डेफिनेटली विल टेक हर ऑन 0800-004-866 जैसे कि हमने आपको बताया दिस इज आवर टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल करते हुए हमसे बातें जरूर कर सकते हैं एंड ऑन द अदर हैंड 5599 पर आप अपने मैसेजेस हमें भेज भी सकते हैं गुड मॉर्निंग हेलो हेलो
10: मॉर्निंग
12: गुड मॉर्निंग
10: Deepali here.
12: Yes, Deepali, how are you?
10: Good, good. Just wanted to say ki yes, हमारे पास album भी है और मेरे husband कि जब वो छोटे थे तो 1940s I think around that उनके दादा जी ने उनको वो चांदी की ग्लासी दी थी जिसमें वो दूध पीते थे छोटे होते तो अभी भी हमारे पास है It's banded but it's still there.
12: वेरी नाइस तो दादाजी की मेमोरी है ना इन वे की उनकी एक याद
10: यादगार दादाजी की मेमोरी है
12: राइट
10: बहुत ही एंशियंट मतलब मुझे लगता नहीं है उस क्वालिटी की चांदी अब मिलती भी होगी
12: ओ या दैट इज ट्रू यार पहले के जमाने की क्वालिटी जो होती थी चीजों में वो आजकल नहीं मिलती है कई कई चीजों की बातें अगर हम करें यू कांट फाइंड इट इन थिंग्स दीस डेज
10: और इवन जब हम 2000 में आए थे तो तब उस समय एल्बम का ही ट्रेंड होता था यहाँ पे मोबाइल्स तो होते नहीं थे स्मार्टफोन
12: एग्जैक्टली या
10: उस समय भी मैंने एल्बम शुरू की थी वो भी मेरे पास है मेरी मम्मी पापा की एल्बम भी मेरे पास है
12: दैट इज सो स्वीट यार थैंक यू सो मच दीपाली आपके कॉल के लिए हैव अ वंडरफुल डे थैंक यू हमारे साथ शामिल होने के लिए थैंक यू बाय बाय अच्छा किसी ने टेक्स्ट किया इनका नाम है मोहितेश इन्होंने कहा है माय होम मतलब शायद ये बोल रहे कि इनके घर पर एल्बम है सपना जी आपका भी स्वागत है फाइनली आई होप यू कैन हियर अस नाउ गुड मॉर्निंग
13: पूजा जी गुड मॉर्निंग विजय भाई कैसे हैं आप लोग
14: मैं ठीक हूँ आप कैसी हो
12: आपकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है
13: मुझे आपकी भी ऐसी लग रही थी दो दिन पहले वो सर्दी खासी
12: वो अभी भी है वो पता नहीं क्या अच्छा। अजीब सा है यार इट लाइक कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी थोड़ा ठीक होता है आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन
13: वो इट स्टार्टेड विद बॉडी गर्म हो रही है बॉडी पेन हो रहा है और नेक्स्ट डे सर्दी खासी हो गया
12: या सेम बोट तो बताइए ऐसा क्या है आपके पास अभी भी
13: मेरे पास एल्बम्स भी रखे हुए हैं और मेरी मदर इन लॉ को उनकी मदर इन लॉ ने कुछ ज्वेलरी भिजवाई थी पाकिस्तान से अ पीस ऑफ ज्वेलरी
12: ओ वाओ
13: तो आई थिंक इट आल्सो एक्चुअली हम लोग सिंधी है ना तो वो पार्टीशन के टाइम पे आधे पाकिस्तान रह गए आधे इंडिया आ गए थे
12: ओके
13: तो मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ कभी अपनी मदर इन लॉ से मिली नहीं बट जो चीजों का आदान प्रदान और लेटर्स का आदान प्रदान होता है
12: ओह वाओ तो वो लेटर्स है क्या
13: आई डोंट नो नहीं लेटर्स नहीं होंगे क्योंकि लेटर शायद मेरे फादर इन लॉ को लिखे जाते थे तो वो तो उनको पास हुए आई थिंक 27-28 ईयर्स हो गए
12: ओके
13: तो नहीं मतलब वेल बिफोर डॉटर इन लॉस केम इन फैमिली डैडी पास अवे
12: ओके No worries. Thank you so much, Sapna. आपके कॉल के लिए have a wonderful day. Bye. जी गुड मॉर्निंग शेरल कैसी हो आप हेलो हेलो
15: गुड मॉर्निंग
12: गुड मॉर्निंग शेरल कैसी हो आप
15: आई एम गुड पूजा हाउ
12: आई एम गुड टू
15: I have kept all my albums and when my daughter was born I made a scrapbook and album. She's only 10 so सबसे उसके मैंने दो small fingers I mean हाथों के पैरों के पूरे एक महीने से 12 महीने तक बना के scrapbook बनाया इतना photos and everything from school and daycare it's all in there Until even for today, her swimming lesson, जो सिर्फ एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी मिलता है मैंने रखा हुआ है एंड ऑल्सो आई हैव गॉट नीसेस एंड नेफ्यूज हू व्हेन दे वर बोर्न मैंने सबके एक एक जोड़े कपड़े रखे हुए हैं
12: ओह वाओ
15: आई हैव यस एंड मैं झूठी बोल रही हूँ आई हैव गॉट माई ब्रदर्स डॉटर्स आई हैव गॉट वन ऑफ जस्ट रंपा एंड फॉर माई हस्बैंड सिस्टर्स जोड़ा मीन मेरी नीचे के लिए जो बिब होता था ये सब मैंने सभी बच्चों के रखे हुए हैं एंड आई गेट टोल्ड डोंट डू दैट एंड आई समटाइम्स टेक इट आउट एंड उसमें बच्चों की वो स्मेल अब नहीं है बट आई जस्ट यार केप्ट इट फॉर लाइक ऑल द चिल्ड्रन अभी तो मैंने उसको वो कर दिया है ना यू कैन पुट इट इन अ वे दैट वो खराब नहीं हो उसको अच्छी तरह से रैप करके sold it. So I get a small things. I kept my nani sari, my ajis. I am a hoda. Maine sabhi ke kapde rakhe hue hain nani aji ko. As memories, there is good memories for my life.
12: Oh yeah. That is sweet, yeah. Thank you so much, Cheryl, for sharing that with us. Thank you. Have a nice day. Sandhya ne message kiya, unhone kaha ki I have got the memory of an album. I think that's what she means.
11: Okay.
12: Ki inke paas ek album hai jisme bahut sari memories hai. Yeah.
11: Aapne kuch sambhal kar rakha hai?
12: Mere paas kuch birthday cards hai. जो मुझे मिले थे या आपको मिले थे, आपको जो मिले थे वो भी मैंने संभाल कर रखा है. एंड आई थिंक आवर डॉटर हर फर्स्ट बर्थडे के लिए जो बर्थडे कार्ड्स थे वो मैंने संभाल कर रखे हैं. और जैसे कि शेरल ने कहा, मैंने उसके कई कपड़े, द फर्स्ट क्लोथ्स शी वोन आफ्टर बीइंग बोर्न, वो भी मैंने रखा हुआ है.
11: ओके.
12: और फर्स्ट बर्थडे से लेकर अभी जो लास्ट बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया था, हर बर्थडे पे जो आउटफिट पहना था वो आउटफिट भी रखा हुआ है. Every birthday ka.
11: Okay.
12: So I've got everything, yeah.
11: Oh.
12: So basically, I've saved memories in regards with her.
11: Huh.
12: But when it comes to like, kuch aise cheeze jo mere parents ne di thi, my mom and dad, both of them had given me, my brother had given me Raksha Bandhan ke liye. When apni first kamai se, I would say, when he first started earning on his own, to wo bhi cheeze sambhal kar rakhi hai. To aise cheeze mere paas.
11: Okay. I have.
12: Huh.
11: अभी वही मैं निकाल के देख रहा था
12: जी.
11: सिंस आई एम फ्रॉम फिजी, तो मेरे पास दो कॉइन्स हैं.
12: ओके.
11: एक कॉइन है, अरे साल भूल गया मैं,
12: 1952. ओके.
11: 1952 उस समय पर हाफ पेनी यूज होता था.
12: हाफ पेनी?
11: हाँ. आई डोंट नो हाफ पेनी का अभी कितना वैल्यू होगा. ये मेरी माँ ने संभाल कर रखा था.
12: ओके.
11: तो उसके बाद अभी ये मेरे पास है, हाफ पेनी. और 1958 का ये है शिलिंग.
12: शिलिंग?
11: हाँ. शिलिंग भी एक कॉइन है, करेंसी थी. हाँ. तो 1958 का एक शिलिंग फिजी का, और 1952 का हाफ पेनी.
12: वाओ.
11: So I've got
12: vintage coins है ना ये.
11: हाँ.
12: Value तो होनी चाहिए, but
11: value है ना, obviously इतना ज़्यादा value है इसका.
12: I know कि it's from your mom, but I mean like कि उसका money wise value तो होगा ही, but it's more valuable because it's something that your mom had kept ना.
11: Yeah.
12: तो of course beautiful memories are always something जो आपको खुश भी करते हैं और आपको emotional भी बहुत करता है यार.
11: Have you ever seen a shilling? दिखने में कैसा लगा?
12: मैंने वो देखा है जो आपके हाथ में.
11: हाँ.
12: हाँ.
11: और पेनी
12: नहीं देखी.
11: द पेनी, आई मीन सॉरी, हाफ पेनी जो है. हाँ. उस समय पर जो कॉइन है.
12: हाँ.
11: उसमें बीच में एक होल हुआ करता था,
12: लाइक अ डोनट. इंटरेस्टिंग. हम फोटोज उतार के उसके डालेंगे ना अभी सोशल मीडिया पर, आप चेकआउट कर सकेंगे. गुड मॉर्निंग.
14: गुड मॉर्निंग
12: जी, किन से बात हो रही है?
14: निकिता.
12: हाय निकिता, हाउ आर यू?
14: आई एम गुड, हाउ आर यू?
12: आई एम ऑल गुड. फाइनल डे फॉर स्कूल ना?
14: Yeah, I'm so excited.
12: For school holidays, kuch plans banaye aapne?
14: Yeah, I have a birthday party tomorrow.
12: Aapka birthday?
14: Yeah.
12: Oh, happy birthday in advance. Hamari or se.
14: Thank you.
12: May God bless you with loads of success and happiness in life. Aur umeed hai ki kal ka aapka jo birthday party hai, ye best birthday party ho. राइट. अब बताइए आपने क्या संभाल कर रखा है एज अ मेमोरी? वैसे तो अभी आप बहुत छोटी है, बट फिर भी कुछ तो ऐसी मेमोरी होगी ना.
14: Yeah, I don't have anything, but my mom does. So my mom bought me a brown dress when I turned 1 year old.
12: Huh.
14: And she has that, and I think she has one of my like hats or like hoodies from when I was a baby.
12: Oh, okay.
14: And for my sister, I think when she was 1 year old, she has her
12: आपके कॉल के लिए. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एट स्कूल टुडे, एंड ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे अगेन इन एडवांस. ओके, हमारी ओर से एंजॉय योर डे. थैंक यू. बाय बाय. फाइनल कॉल हो जाए
11: जैसी आपकी मर्जी.
12: अच्छा, रख दिया इन्होंने.
11: तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं आप
12: आगे इनका कॉल वापस से. गुड मॉर्निंग. हेलो.
16: हेलो
12: जी,
16: मेरा नाम जिया है. मैंने जो संभाल के रखा वो मेरे बच्चों के कपड़े है, वो जो फर्स्ट बोर्न है और उनका जो फर्स्ट शाल्स है हॉस्पिटल में जो रेप हुआ वो भी है. और व्हेन वी वर सिंगल तो जो बर्थडे कार्ड्स मेरे हस्बैंड मुझे दिए थे, वैलेंटाइन कार्ड, वो जो फर्स्ट गोल्ड चेन मुझे दिया था, वो सब मैंने संभाल के रखा अभी तक.
12: ओह दैट्स सो स्वीट यार, थैंक यू सो मच हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू, यू हैव अ वंडरफुल डे. इन्होंने जो बर्थडे कार्ड्स वगैरह मेंशन किया उससे मुझे एक चीज याद आई. मेरा 21st बर्थडे था एंड माय
17: सिस्टर,
12: आई मीन मैं उस टाइम का बता रही हूँ कि जब था, जिस साल था 21st बर्थडे, तो माय सिस्टर हैड प्लान दिस स्पेशल बर्थडे सरप्राइज फॉर मी.
17: ओके,
12: तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेरे लिए 7 गिफ्ट्स लिए थे, 7 तोहफे जो ये लिए थे, और उन गिफ्ट्स को मुझे खुद ढूंढना था बिकॉज उन्होंने घर के हर एक कोने में वो छिपाए थे.
17: Oh.
12: और छिपाने के साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे चिट्स लिखे थे क्लूज के तौर पर कि आई हैव टू रीड द क्लूज एंड आई हैव टू फिगर आउट. जैसे एक क्लू मुझे याद भी है, इन्होंने लिखा था कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा तोहफा नंबर 100, मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर डैड अपना स्पेशल ड्रिंक रखते हैं. तो आई नो व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट एंड आई वेंट एंड आई लुक्ड फॉर इट. तो मुझे वहाँ से गिफ्ट मिला. ऐसे करके मैंने 7 गिफ्ट्स जो है ये उन्होंने मेरे लिए छिपाए थे. एंड शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, लाइक उनको ड्रॉइंग करना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, आज भी बहुत पसंद है. शी हैड मेड दिस ह्यूज कार्ड, लाइक काफ़ी बड़ा कार्ड, और इस बड़े से कार्ड में एट दैट टाइम आई लव्ड ट्वीटी बर्ड अलॉट. तो उन्होंने ट्वीटी बर्ड पूरा खुद अपने हाथों से बनाकर उसे कलर किया था और अंदर घर के हर एक फैमिली मेम्बर से कार्ड पर एक मैसेज लिखवाया था. At that time, my grandfather was living with us. He is no more in this world now. And उन्होंने भी मेरे लिए एक special message अपनी hand writing में लिखी थी. My brother, my parents, both my sisters, इन सब ने अपनी अपनी ओर से एक message लिखा था. तो वो बड़ा सा card plus all those small chits जो उन्होंने लिखे थे वो आज भी मेरे पास है. And I feel like it's a very special memory for me. That's why मैंने वो chits भी नहीं फेंके. और interesting thing was जो 7 gifts उन्होंने दिए थे, हर एक gift के साथ उन्होंने एक लाइफ लेसन जो है ये भी लिखा था. लाइक एक घड़ी मुझे दी थी एंड शी हैड रिटन दिस वेरी ब्यूटीफुल मैसेज सेइंग कि लाइफ में बैलेंस करना समय बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ करियर सिंस यू आर एट दिस पर्टिकुलर एज नाउ यू विल बी वर्किंग हार्ड, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दो. ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस टाइम विल नेवर कम बैक, सो एन्जॉय इट एज वेल. और उसके रिजेंबलेंस में उन्होंने मेरे को घड़ी जो है ये गिफ्ट की थी, ऐसे ऐसे गिफ्ट दिए थे. सो आई रिमेंबर दैट डे, आई रिमेंबर दोज मेमोरीज एंड साथ ही साथ उसकी जो चीज़ें हैं वो भी मेरे पास है. घड़ी मेरे पास अभी भी है, भले ही अब चलती नहीं है, थोड़ी खराब हो गई, बन भी नहीं सकती, बट आई स्टिल हैव इट.
17: मतलब पूरी खराब हो गई है?
12: हाँ हाँ, लाइक वही, आई कांट गेट इट फिक्स नाउ बट आई स्टिल हैव इट. बंद घड़ी वैसे कहते रखनी नहीं चाहिए, बट इट्स मोर लाइक अ मेमोरी फॉर मी. So okay. yeah, I've got so many memories, so many beautiful memories. So interesting na yaar, aapke paas bhi hogi aisi bahut si special memories hongi, par aap jhijhak rahe ho batane mein. और इफ यू डोंट वांट टू कॉल अस एंड टॉक अबाउट इट, तो आप मैसेज
17: कॉल करने का टाइम भी खत्म हो गया ना.
12: हाँ, आप मैसेज कर दीजिए, हम आपके मैसेजेस पढ़ के ही खुश हो लेंगे एंड वी लिव दोज मेमोरीज विद यू. सो 5599 पर आप हमारे पास अपने मैसेजेस टेक्स्ट कर सकते हैं.
18: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
19: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम.
18: ब्रॉट टू यू बाय इनडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: डिसाइड किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
2: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु केन डॉलर को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
3: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
3: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and Solicitors. Papatoy and Hamilton.
6: अभी समय की ओर देखे पौने 9 बज रहे हैं और किसी ने मैसेज किया है, आई हैव अ बेबी पियानो विच माय नाना गेव मी व्हेन आई वाज 1 ईयर ओल्ड, आई स्टिल हैव दिस एंड नाउ माय बॉयज प्ले विद इट, अलोंग विद दिस आई हैव माय बेबी क्लोथ्स एंड माय बेबी माय किड्स बेबी क्लोथ्स विच दे वो ऑन द फर्स्ट डे एट द हॉस्पिटल टू। और साथ में सपना ने मेरे ख्याल से मैसेज किया है, आई ऑल्सो हैव ऑल मदर्स डे एंड बर्थडे कार्ड्स विच रोशनी एंड मेघा गेव मी टिल डेट।
7: So some beautiful memories जो आपने भी बचा कर रखे हैं एंड यू शेयर द डिटेल्स विद अस, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, इट्स टाइम कि इस घंटे का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपको हम सुनाए, बट बिफोर वी प्ले दैट रोमांटिक सॉन्ग फॉर दिस आवर, आपको याद दिलाना चाहते हैं बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ये होने जा रहा है एंड इट्स हैपनिंग Tomorrow and on Sunday, यानी this weekend, आप पहुंच सकते हैं एंड चेकआउट कर सकते हैं for high return property investments with zero tax. Biggest Dubai Property Expo 26 New Zealand में हो रहा है this weekend 10 AM to 8 PM JW Marriott Auckland में। आप यहाँ पर जो developer principals हैं इनसे मुलाकात कर सकते हैं in person to access exclusive deals जिसमें 0% upfront DLD fee जो है ये शामिल है for qualifying units और deferred payment plans आप checkout कर सकते हैं, projected returns of up to 20% ROI जो है ये आप क्या होता है इसके बारे में details हासिल कर सकते हैं। Whether you are starting out or expanding your property portfolio, आप one-on-one consultation भी book कर सकते हैं जिसके लिए www.buildcaps.com, remember www.buildcaps.com आप विजिट कर सकते हैं या फिर यू कैन जस्ट ड्रॉप बाय एट JW Marriott। और दिस सैटरडे 10 AM से यानी कि कल दिन में 10 बजे से हमारी हम की टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी, JW Marriott में आप जा सकते हैं और डिटेल्स जो है ये हासिल कर सकते हैं। प्लस संडे को भी 10 AM टू 8 PM तक यहाँ पर buildcaps.com या फिर माफ कीजिएगा बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो जो है ये जारी रहेगा that you can go attend and find out details from.
8: Let's go.
3: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज सुबह से लेकर शाम तक ज्यादातर बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन शाम के समय ज्यादा बारिश होगी ऐसा बताया जा रहा है। सनसेट तो 6:20 PM पर होगा। राइट नाउ टेम्परेचर 11.8 डिग्रीज है, हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे, एंड ओवरनाइट टेम्परेचर 10 डिग्रीज रहेगा।
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune at Harrington Living Monaco. Big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: What's going on? क्या बकते हो?
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
1: तो आज की क्या बकते हो स्टोरी जो है ये आपके लिए लाने से पहले आपको हम याद दिला दे, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन,
5: जहां पर आपको हम बताएंगे हमारे आसपास कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है, प्लस आज का हमारा डेली राउंडअप भी आपकी खातिर होगा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: अभी फिलहाल के लिए चलिए आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी कमाल की खबर, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की अगर हम बातें करें तो इसमें ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स जो है ये लोग बनाते रहते हैं, विच एक्चुअली मेक्स अस थिंक कि अच्छा ऐसे भी यू नो रिकॉर्ड्स जो है ये बनते हैं। और अगर इन रिकॉर्ड्स की जानकारी आपको हम दें, मैंने एक बार पढ़ा था जहाँ पर एक शख्स है जिन्होंने अपने बियर्ड में सबसे ज़्यादा कैंडी केन्स जो है ये टिकाए थे, लंबी सी दाढ़ी थी उनकी।
5: अच्छा।
1: और उसमें उन्होंने करीबन 100 something पीसेस ऑफ कैंडी केन्स जो ये टिकाए थे।
5: इतनी बड़ी दाढ़ियां थी?
1: हाँ जी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी। और इसके साथ साथ एक और एक यू नो एक और एक रिकॉर्ड है, इट्स साउंड्स लाइक वेरी पेनफुल, बट ऐसा एक रिकॉर्ड है जहाँ पर किसी ने अपने, हम जब छोटे होते थे वो भी करते थे, लाइक अभी बड़े होकर भी कभी ना कभी ऐसे करते दूसरों को, ऐसे यू नो डराने के लिए, जस्ट टू गिव देम दैट लुक, या फिर ऐसे मस्ती मस्ती में अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं।
5: हाँ हाँ।
1: तो कई लोग जो है ये ऐसा करते, मस्ती मस्ती में भी करते हैं, खासतौर पर जो बड़े होते हैं वो बच्चों को ऐसे यू नो परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। और we have done this, or like most of us have, we must have tried this. तो वहीं पर बताया गया है कि ये जो चीज़ है इसका भी एक रिकॉर्ड है आंखें बड़ी करने का, और ये रिकॉर्ड जो है ये बनाया है सिंडी डेवेल करालो ने, और इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपनी आंखें करीबन 0.71 inches बाहर तक पॉप आउट की थी while she was trying to
5: make बाहर
1: it. हाँ, लाइक इतनी बड़ी कर ली कि इनकी आईबॉल्स जो है 0.71 inches बाहर पॉप आउट हुई। सो इट्स लाइक उतनी बड़ी उन्होंने कर ली थी, बट दैट्स व्हाट आई सेड ना, इट्स काइंड ऑफ पेनफुल एज वेल, जस्ट इमेजिन इफ यू ट्राइंग टू पॉप योर आईज, तो इतनी बड़ी आप कर रहे हो कि आपको ऐसे फील हो कि आपकी आंखों में दर्द हो रहा हो। एक और एक रिकॉर्ड है जिनका नाम है गैरी टर्ना, और ये है यूनाइटेड किंगडम के, इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऑफ द स्ट्रेचिएस्ट स्किन, इनका जो स्किन है ये इतना स्ट्रेच होता है स्पेशली ऑन हिज स्टमक, जो 6.2 inches का लेंथ है अगर आप उसे स्ट्रेच करो तो, लाइक इफ ही स्ट्रेचेस हिज स्टमक स्किन आउटसाइड 6.2 inches तक बाहर स्ट्रेच होता है, और इट्स नॉट बिकॉज ही हैज लॉस्ट सम वेट तो वो लूज स्किन है समथिंग लाइक दैट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनको एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ये कर पाते हैं।
5: अच्छा।
1: या एंड ही हैड turned it into an achievement as well, world record हासिल कर लिया उन्होंने इसकी वजह से ना।
5: तो ऐसी कुछ अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स की बातें आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे थे आज डेली राउंडअप में। देखेंगे न्यूजीलैंड में वो कौन सी जगह है जहां पर पेट्रोल प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं,
1: ये बताएंगे आप
5: जी।
1: ओके, तो थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी देर बाद विल फाइंड इट आउट।

0: What's up, Auckland?
1: सॉरी, चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है और इससे जुड़ी डिटेल्स जो है कि आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं. तो सबसे पहले इधर आपको हम याद दिला दें कि आज अगर देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी में जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं वो है एक बहुत ही खूबसूरत वेद प्रचार प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है मंडे 28th of September से और ये 4th of October तक चलता रहेगा. 32 Glasgow, Papa 2 6:20 PM जहां आप पहुंच सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं. इस साल इस प्रोग्राम का जो 30th या यू कह सकते हैं हाईलाइट है वो है ये कि 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन रहेगा ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड.
2: इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं. श्री राम मंदिर पर 11 Brick Street हेंडरसन में श्री राम कथा जो है ये होगी पूज्य राजन जी के द्वारा. ये अगले बुधवार से मंगलवार 6 अक्टूबर तक होगी, रात 7 से लेकर 9 बजे तक. हर दिन आपके लिए भोजन का भी प्रबंध रहेगा, तो आप जाकर इसमें ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं.
1: और इसके अलावा आपको याद दिला रहे हैं कि आपके लिए होने जा रहा है योर बिग दिवाली सेलिब्रेशन बहुत ही जल्द. महिंद्रा एनजेड दिवाली 2026 मैनिकाओ वेलोड्रोम पार्क जो है यहाँ पर ये होने वाला है और यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं इसका हिस्सा बनने के लिए इन एसोसिएशन विद एनजेड आई कम्युनिटी ट्रस्ट एंड AMI. टॉकिंग अबाउट दिस, याद दिला रहे हैं मैनिकाओ वेलोड्रोम पार्क यहाँ पर सैटरडे 3rd of October को रहेगा, ना यानी कि नेक्स्ट वीक सैटरडे को. अब कुछ ही दिन बाकी है, 1 PM to 9 PM यहाँ पर ये सेलिब्रेशन होने वाला है. एंट्री बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी फी नहीं पे करनी है इसका हिस्सा बनने के लिए. और ऑफकोर्स बहुत सारे डिलिशियस फूड स्टॉल्स तो रहेंगे ही, बच्चों के लिए बहुत से फन राइड्स रहेंगे. फिनाले में जो स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स भी रहेगा, पर अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए इंडिया से DJ लकी आ रहे हैं और ख़ास तौर पर मोहम्मद सादिक और इनकी टीम जो है ये आ रही है ऑल द वे फ्रॉम इंडिया से आपको एंटरटेन करने के लिए फॉर दिस अमेजिंग स्पेशल दिवाली सेलिब्रेशन. तो इसका हिस्सा भी आप जरूर बन सकते हैं.
3: भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन.
4: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
5: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
4: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
5: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
4: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
5: 100% authentic and pure as mother's love.
6: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5K min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply.
7: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. दो लकी विनर. हर एलिजिबल होम लोन ऑफ 500,000 या उससे ज्यादा ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ में एंटर करता है. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. विजिट financeworld.co.nz/bali. फाइनेंस वर्ल्ड लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.
8: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $10 million this Saturday. Get your Powerball ticket in-store or online.
9: Buy a birthday bundle at Macca's and get a birthday bonus. Choose between 35% off toys online at the warehouse or free 30-minute time play at Time Zone. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply. Birdie.
10: Briscoe's half-price birthday blowout is on now with half price off the entire store. That's right. Every single item in store nationwide is half price. All stores open till 9 tonight. Plus, we're giving away $25,000 cash.
11: See online for TCs and exclusions.
12: Get it sorted with Cheap As Deals. Save over 30% on wet and forget moss and mold remover, 5-litre concentrate, now $65. And a 30-centimetre Gardener's Edge green hanging basket, only $5. Limited stock. Cheap As Deals, end Sunday at Mitre 10.
13: Dark toast, butter, jam, or a special chai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: What's going on?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जहां पर we are sharing with you what's going on. हमने आज सुबह से आपको याद दिलाया है कि आज से या आज लास्ट डे है स्कूली छुट्टियां शुरू होने से पहले, because today is Friday 25th of September and coming Monday 28th of September से स्कूली छुट्टियां जो है for 2 weeks ये शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद फिर से term 4 की शुरुआत जो है ये होगी, and then kids will get a chance to go back to school and all. But right now यहां पर अभी अगर देखा जाए तो स्कूल हॉलीडेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है. एंड आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस आर्टिकल जिसे पब्लिश किया गया है. स्कूल हॉलीडेज जो है ये तो आ गए हैं, और ऑफकोर्स इसके साथ साथ कीवीज आर टेकिंग ऑफ एज वेल. ए न्यूजीलैंड ने कहा है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 850,000 कस्टमर्स टू ट्रेवल अक्रॉस इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कल यानी 25th ऑफ सितंबर का इन्होंने डेट दिया था अंटिल 11th ऑफ अक्टूबर तक. इस दौरान इतने सारे पैसेंजर्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर. मोर देन 520 पीपल आर ट्रेवलिंग विद इन न्यूजीलैंड, वाइल ऑलमोस्ट 330,000 आर हेडिंग ओवरसीज. ये बिजिएस्ट डोमेस्टिक ट्रेवल डे माना जा रहा है, वो है आज Friday 25th of October, September, sorry.
2: Understandable, yeah.
1: More than 33,000 customers flying. And where is everyone going if you think? So for South Island getaways, Queenstown, Nelson and Dunedin, jo hai, they have proven to be the most popular destinations according to this data, with almost 150,000 travelers jo ki in destinations ke ho ja rahe hai. Across the Tasman, अगर देखा जाए तो more than 170 people are traveling to Australia, जिसमें सिडनी, ब्रिस्बन एंड मेलबर्न जो है ये लिस्ट टॉप कर रहे हैं. एंड फॉर सम पैसिफिक सनशाइन, मोर देन 50,000 kiwis are heading towards the islands, जिसमें Rarotonga और ऑफ कोर्स फीजी एंड अपिया जो है ये शामिल है एज द फेवरेट्स. एंड फॉर लॉन्ग हॉल ट्रेवल्स, सिंगापुर जो है ये नंबर वन माना गया है एज एन इंटरनेशनल ट्रेवल, फॉलोड बाई जापान एंड LA. और एयर न्यूजीलैंड ने रिमाइंड किया है ट्रेवलर्स टू चेक देयर कैरी ऑन वेट इकोनॉमी पैसेंजर्स के लिए खास तौर पर, क्योंकि उनको 7 kg की लिमिट जो है ये मिलती है. और अगर आप आज ट्रेवल करने वाले हैं सो ये याद रखें, आज ही स्कूल छुट्टियां जो है ये, आई मीन इट्स द लास्ट डे, सो ऑफिशियली वी कैन से कि आज से शुरू हो रही है इन अ वे. तो बहुत से लोग ट्रेवल करेंगे, स्पेशली ऑकलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आप फेस करोगे. सो इफ़ यू हैव टू ट्रेवल टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, अपना जो टाइम वगैरह है अच्छे से आप चेक कर ले, कन्फर्म कर ले, एंड समय से पहले ही अगर आप निकल जाए तो अच्छा है, स्पेशली इफ़ यू ट्रेवलिंग इन द आफ्टरनून आफ्टर स्कूल आवर्स.
2: यस, मेक श्योर आप अच्छी तरह से प्लान करके तब निकले. और डेली राउंडअप पे और भी जानकारियां जो है ये हम आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो आपको देने वाले हैं. कल दो और लोग थे जिन्हें $251 का वाउचर जो है ये मिला फॉर्चून की ओर से, और जो फाइनल ड्रॉ है ये मंडे को होगा ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. तो अब एक अपॉर्चुनिटी हम आपको देने जा रहे हैं अगर आप ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं. और फॉर्चून की ओर से नमस्ते इंडियन सुपर मार्केट नोचो या लोटस सुपर मार्केट के ऑकलैंड स्थित किसी भी एक आउटलेट के लिए आप $251 का वाउचर जीतना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है आपके पास, क्योंकि फॉर्च्यून मंडे से आपके लिए बहुत ही शानदार दिवाली प्रमोशन लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल्स हम आपको देंगे. लेकिन अभी अपनी एंट्रीज भेजने का मौका है आपके पास.
1: ऑल यू नीड टू डू इज फॉर्च्यून लिखना है आपको. सबसे पहले फॉर्च्यून लिखे, उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम और अपना लोकेशन, लिखकर 5599 पर आप सेंड कर सकते हैं. नाउ रिमेम्बर FORTUNE, फॉर्च्यून फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना लोकेशन लिखकर हमारे पास अब सेंड कीजिए। इस दिन फिलहाल आप कहाँ से हमारा साथ दे रहे हैं ये आपको बताना है। यू डोंट नीड टू राइट द एग्जैक्ट एड्रेस, यू जस्ट नीड टू राइट द सबर्ब प्रोबेबली कि कहाँ से आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड और जल्दी जल्दी 5599 पर आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं।
0: Hollywood's most wanted.
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
16: मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
1: चलिए अब Bollywood's most wanted जबकि आपके लिए लेकर आ रहे हैं। This is the first time ये गाना आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं on हम। The very first time ये सॉन्ग जो है ये आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस गाने के बारे में थोड़ी बातें कर ले। अभी नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है एक फिल्म जिसका नाम है मैं ना रहा मेरा। और ये जो फिल्म है मैं ना रहा मेरा, इसमें बड़े दिनों बाद नजर आने वाले हैं अध्ययन सुमन। अध्ययन सुमन आपको पता है,
17: शेखर सुमन के बेटे हैं
1: जी। तो अध्ययन सुमन जो है ये इसमें दिखने वाले हैं विद दिविता राय जो कि अपना डेब्यू कर रही है इसके साथ। 23rd of October को मेरे ख्याल से रिलीज हो रहा है। और इस फिल्म के गाने कंपोज किए हैं राहुल नायर ने, और इसी फिल्म का ये सबसे पहला सॉन्ग जो रिलीज किया गया है। कमाल की बात ये है कि आफ्टर इट्स रिलीज इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। विद इन फ्यू आवर्स ऑफ इट्स रिलीज इसने मिलियंस में अपने व्यूज़ जो है ये कमा लिए। और जो खूबसूरत आवाज़ इस गाने में है, ये तो खैर रिटायर हो चुके हैं फ्रॉम बॉलीवुड सिंगिंग, लेकिन जैसे कि इन्होंने ये भी कहा था कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए इन्होंने अपनी कमिटमेंट दी थी वो प्रोजेक्ट्स ये पूरी कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब ये अपनी इंडिविजुअल सिंगिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जहाँ पर ये खुद जो गाने बनाते हैं वो गाना पसंद करेंगे अपने इंडिविजुअल चैनल पर, बॉलीवुड फिल्मों के लिए वो गाना नहीं पसंद करेंगे, अब किसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो गाना फिलहाल नहीं पसंद करेंगे। एंड द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट इज अरिजीत सिंह। तो चलिए उनकी आवाज़ में ये गाना फिल्म मैं ना रहा मेरा, उसी का टाइटल ट्रैक आपके लिए।

0: Streaming on Rover.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enrol by midnight 4 October, so don't leave it too late.
7: Get your EasyVote card. Enrol by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
8: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $10 million this Saturday. Get your Powerball ticket in-store or online.
9: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
10: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
14: What's going on?
15: 22 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में और डेली राउंडअप से पहले तो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने अपनी एंट्रीज जो है ये हमारे पास भेजी है. फॉर्च्यून लिखा है अपना नाम और अपना जो सबब ये लिखकर हमारे पास भेजा है. सो शुक्रिया, आपके नामों को हम मंडे वाले ड्रो में शामिल कर रहे हैं. फिलहाल आज डेली राउंडअप में सबसे पहले अगर देखें पेट्रोल प्राइसेस जो है न्यूजीलैंड के हर एक कोने में जो दाम है ये ऊपर गया है, लेकिन नो रीजन हैज फेल्ट द स्पाइक क्वाइट लाइक नेल्सन.
16: ओह नेल्सन,
15: हाँ
16: ऐसा क्यों?
15: तीन हफ्तों में वहाँ पर जो 91 पेट्रोल है इसका हाँ. प्राइस 46 सेंट्स अ लीटर से ऊपर गया है.
16: वाओ, 3 वीक्स पे?
15: विद इन 3 वीक्स. वन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नेल्सन का जो एवरेज प्राइस फॉर 91 वाज $2.85 अ लीटर फर्स्ट ऑफ सितंबर को. बाय सितंबर 24th यानी यस्टरडे वो बढ़कर एवरेज प्राइस बिकेम $3.31. गैस पाइप के डाटा के मुताबिक ये है 16% इंक्रीमेंट. रीजन में द बिगेस्ट सिंगल डे जंप जो है ये भी देखा गया ऑफ एनी रीजन, जहां प्राइसेस जो है 19 सितंबर को मोर देन 7 सेंट्स अ लीटर बढ़े. अक्रॉस द कंट्री जो एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल 91 है ये 39 सेंट्स बढ़ा, नेल्सन 46 सेंट्स.

0: जॉइंट ऑपरेशन जो टारगेट किया गया था क्राइम एंड ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर, इसके तहत 34 पीपल हैव बीन अरेस्टेड ऑन ड्रग रिलेटेड चार्जेस और पुलिस ने सीज किया है मोर देन 30 किलोग्राम्स ऑफ मिथैम्फेटामिन और 270 किलोग्राम्स ऑफ लूज कैनबिस और मोर देन 6100 कैनबिस प्लांट्स जो है ये भी सीज किए गए हैं इस ऑपरेशन के तहत. तो काफ़ी काम जो ये किया जा रहा है. 4 फायर आर्म्स वर ऑल्सो रिकवर्ड अलॉन्ग विद नियरली 648,000 इन कैश इन 3 डिफरेंट व्हीकल्स. पुलिस का कहना है कि कैनबिस ग्रो हाउसेज जो है ये ऑकलैंड में डिस्कवर किए गए, जबकि ऑपरेशन में ये बात भी पता चला कि एयरपोर्ट्स एंड बॉर्डर्स जो है जिसके साथ पूरा फोकस इनको लगाना होगा, हैवी फोकस जो है ये करते हुए दे वर्किंग विद ऑस्ट्रेलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एज वेल, ताकि इन्हें डिटेक्ट करते हुए एट द वेरी बिगिनिंग रोकने की कोशिश की जाए.
1: यूएफए नेशंस लीग के मैचेस जो है ये आज से शुरू हुए हैं. आज जो मैचेस खेले गए, ग्रीस 2 सेबिया 1, पोर्चुगल 1 वेल्स 0, ऑस्ट्रिया 3 इजराइल 1, नेदरलैंड्स 1 जर्मनी 1, कोसोवो 1 आयरलैंड 0, लिथुएनिया 2 लिचेस्टन 0, डेनमार्क की हार नॉर्वे के खिलाफ 3-2 से हुई और माल्टा की जीत एंडोरा के खिलाफ 2-1 से हुई. कल सुबह 4 बजे से मैचेस एक बार फिर शुरू हो जाएंगे. जॉर्जिया वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड, आर्मेनिया वर्सेस लेटविया, स्वीडन वर्सेस रोमानिया 6:45, मॉन्टेनिग्रो वर्सेस साइप्रस, हंगरी वर्सेस यूक्रेन, इटली वर्सेस बेल्जियम, टर्की वर्सेस फ्रांस, पोलैंड वर्सेस बोस्निया हर्जेगोविना. ये कल के मैचेस जो है यूएफए नेशंस लीग के खेले जाएंगे.
0: और इसके अलावा मोर देन 374,000 हाउसहोल्ड्स और बिजनेसेस अक्रॉस सेंट्रल, ईस्ट एंड साउथ ऑकलैंड आर सेट टू रिसीव अ $377 पेमेंट इंटरेस्ट की ओर से. So, what does this free money or where does this free money come from? Entrust jo hai, they own kareeban 75% of Vector. Electricity Lines Company jo hai Vector, isse ye basically they own karte, ye own karte hai. And jo returns hai, these are basically the money jo eligible hai consumers ko receive karna through an annual dividend. Aur ye since 1994 होता आ रहा है न्यूजीलैंड. एंट्रस्ट का कहना है इट हैज़ पेड मोर देन $2.5 billion टू ऑकलैंडर्स सोफा और फॉर 2026 पेमेंट उन्होंने नीड किए हैं टू बी नेम्ड द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट होल्डर ऑन द वेक्टर नेटवर्क, अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं तो, इन एंट्रस्ट एरिया और एट मिडनाइट ऑन 12th of August. ये जो डेडलाइन है बेसिकली तब तक आपको पूरा करना था. बेसिकली उससे पहले अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें अकाउंट है उसमें आपका नाम होना जरूरी है, देन ओनली यू कैन क्लेम इट. और अगर आप सेंट्रल, ईस्ट या साउथ ऑकलैंड इलाकों में फॉल होते हैं एंड यू आर विद वेक्टर, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दैट इन माइंड. सो ये जो पैसे हैं विल आइदर लैंड डायरेक्टली ऑन योर बैंक अकाउंट या फिर ये आपके पावर बिल पर क्रेडिट हो जाएंगे ताकि नेक्स्ट बिल के हिसाब से इसे आप यूज कर सकें.
1: Just an update on the fuel prices. Ek latest update aaya hai about what the price situation was. Kal ye stuff par report aayi hai. Ek jagah aisi hai jahan par fuel ka price $4.15 per liter hua.
0: Whoa.
1: That's 91.
0: Huh, 91
1: ka price $4.15.
0: Uh-huh.
1: Premium petrol jo hai $4.30. और डीजल वॉज सेलिंग एट $3.90 पर लीटर.
0: वाओ.
1: और ये जगह है वही की.
0: दैट इज वेरी वेरी कंसर्निंग. स्कूल छुट्टियां शुरू हो गई है और इस टाइम पर ये पेट्रोल प्राइसेस आर एक्चुअली बॉदरिंग मी. आई डोंट नो कि यू नो आपका क्या रिएक्शन होगा इस पर, बट व्हाटएवर द अपडेट इज वी गेट तो आपके साथ ही हम जरूर शेयर करते हुए चलेंगे. फिलहाल दैट इज डेली राउंड अप फॉर टुडे.
2: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Lock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: business loan, commercial loan or construction. दो बातें।
1: आज की पहली बात है, इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है।
2: ओके।
1: ये बात अच्छी तरह से आप सुने या आपने सुना होगा होपफुली। जो दूसरी बात है
2: जी,
1: ये पहली बात से रिलेटेड है लेकिन आप कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे अपनी निजी जिंदगी में ये आप पर डिपेंड करता है। तो जो पहली बात थी, इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है।
2: राइट।
1: दूसरी बात, आप क्या हैं ये औरों को तय मत करने दीजिए।
2: अच्छा, एक बार फिर से।
1: आप क्या है
2: हाँ?
1: ये औरों को तय मत करने दीजिए।
2: ओके, सो देयर यू गो। आज कुछ बातें आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं ब्रेकफास्ट शो के आज के हमारे सफर के साथ। जितने लोगों ने इस सुबह से हमारा साथ दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। विशाल, आपका मैसेज आया है हमें ट्राइंग टू फिगर आउट, और कुछ अपडेट हुआ तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। बट आज फ्राइडे है, सो लुक आफ्टर योर सेल्फ, एंजॉय योर फ्राइडे, हैव लोड्स ऑफ फन, एंजॉय योर वीकेंड एंड स्कूली छुट्टियां एज वेल किड्स के पेरेंट्स। मंडे को आपसे एक बार फिर मुलाकात होती है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

0: जो कि आ रही है।
1: माई टाइम विद काशिका।
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:03 हो चुके हैं। भाई देखिए, फ्राइडे का दिन आ जाता है ना जब, तो एक अलग से मूड चेंज हो जाता है। और जब मैं इस तरह की बातें करती हूँ तो व्हाई नॉट आपको याद दिला देती हूँ कि आज हम रैप अप करने वाले हैं फ़ोन की 6 word stories। तो कोई फ़ोन से रिलेटेड 6 word story है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ऑफिस शाउट आउट भी भेज सकते हैं एंड कुछ साइकिल रिसाइकिल वगैरह करेंगे। कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है माय टाइम मेरे साथ कशिका के साथ 10 से 12 बजे।
3: बचाओ क्या

तो याद रहे कि आज हम कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग होने वाली है वैदिक सेंटर में, शाम 7 बजे हम की टीम वहां पे आपको मिलेगी। एंट्री बिल्कुल फ्री है, रिफ्रेशमेंट्स और कावा जो है वो सेल पर होने वाले हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी जीतने के लिए, तो आप पहुंचेंगे ना।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: एक्सपर्ट अड्डा में मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, उसके बाद आई रियलाइज कि ये क्या हो सकता है, जो लोग पुराने बर्थडे कार्ड्स रखते हैं, यू नो दिस अ इमोशनल रीजन बिहाइंड दिस हैबिट। ये एक साइकोलॉजिस्ट के साथ यू नो इन्फॉर्मेशन जब शेयर की गई तो क्या हुआ कि इट्स नॉट बेसिकली यू नो वी कैन से दैट कभी कभी कुछ लोग इम्ब्रेस कर लेते हैं इम्परफेक्शंस, और कुछ लोग हैप्पीनेस को रिलेट नहीं कर पाते और या को रिलेट नहीं कर पाते। उस समय ये पोजिशन जब उनके पास होता है दैट हेल्प्स देम अ लॉट। ऐसे भी जब जिंदगी चेंज होने लग जाती है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इमोशनल कंटिन्यूटी बनी रहती है आपकी, तो कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं शायद वो कार्ड अदरवाइज रखता होगा, बट इट इज़ स्पेशल फॉर देम बिकॉज किसी ने भेजा, किसी ने दिया, किसी का एक उसमें नोट होगा। तो दीज टिकेट्स, दीज कार्ड्स, दीज फोटोज, कुछ भी हो सकता है जो आप पास्ट का अपने पास रखते हैं, दीज लिटिल थिंग्स जो है ना आर नॉट सो लिटिल इन लाइफ। और एक ये रिमाइंडर होता है द मोमेंट जो इसको आपके लिए एक बड़ी स्टोरी बनकर वो सामने आने लग जाता है, और कभी कभी फीलिंग बहुत सिग्निफिकेंट होने लग जाती है। समवन इज़ यू नो रिमेंबर्ड बाय अस, समवन मेड एन एफर्ट, समबडी नोटिस्ड अस। सो ये छोटी छोटी चीज़ें शायद किसी के लिए वो ना हो, बट पीपल हु कीप सच थिंग्स, ओल्ड मेमोरीज रखते हैं, देर इज़ नो गारंटी ऑफ द पर्सन कि वो उनको अभी भी वो बंदा या बंदी जिन्होंने ये कार्ड दिया होगा या कुछ वो प्यार करता है कि नहीं कर रखता है, बट वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरी उनकी रह जाती है। वो उन चीज़ों को चेरिश करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए बहुत मीनिंगफुल थी। वो उस मेमोरी को ऐसे लेते हैं जैसे कि प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन देयर लाइफ। इट कुड बी अ यू नो बकअप मैसेज फ्रॉम अ इनकरेजिंग मैसेज और अ फेयरवेल कार्ड फ्रॉम योर एक्स बॉस एंड योर टीम मेंबर्स, कुछ भी हो सकता है। एंड दैट फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस जो होता है वो लोगों को यूनाइट करता है आपस में। दे वॉन्ट टू कीप दैट टैंजिबल रिमाइंडर जो उनको होता है, एंड फॉर एवर दे आर ग्रेटफुल टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। दिस इज़ कॉल्ड द एंडोमेंट इफेक्ट, और ये जो है कहा जाता है कि मोस्टली ये थ्योरी लोगों के बारे में बताया जाता है कि दे होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यूज ऑफ पीपल ऑफ थिंग्स। एंड जब ये मैं इसके बारे में ये बात कहती हूँ तो ये अपने लिए भी उनके लिए एक सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है। ये थ्योरी जो पर्टिकुलरली होती है, इसको कह नहीं सकते, कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी मेमोरीज आप निकाल निकाल के देखते हैं, पढ़ते हैं। कभी कभी उन बातों को पढ़ने के बाद आपके अंदर से एक खुशी आनी शुरू हो जाती है। सो एक अटैचमेंट की थ्योरी होती है ये बेसिकली। और ये जो है बर्थडे कार्ड से लेके पेरेंट्स का कार्डिगन रखना, चाइल्डहुड स्टफ टॉयज, लव लेटर्स या कोई ऐसी गिफ्ट जो होती है, ये अटैचमेंट, ये पोजेशन एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। देर आर डिफरेंट वेज जिस तरह से हमने कार्ड्स हैं या जो भी कुछ चीज़ें हम रखते हैं, अपनी चीज़ों को जब हम रखते हैं तो ये एक फेज़ हमारी लाइफ में होता है, कोई इंटेंशन नहीं होता इसके पीछे उस समय, बट हम उसको रखते हैं और अपनी बॉडी को ट्रस्ट करते हैं टू रिस्पॉन्ड टू द कार्ड। डज दिस हैपन टू यू? इट्स क्वाइट अ हार्ट फेल्ट थिंग, इजंट इट? और ये बॉक्स में से आपने स्टोर से निकाला और फिर उसको वापस रख दिया, जिस तरह से अभी मैंने आपकी मेमोरीज़ को निकाला बॉक्स में से, अब वापस रख देते हैं, क्योंकि अब आ रही है बारी ऑफिस शाउट आउट की। सर कोई भी कहाँ से सुन रहा है ज़रूर मुझे बताइए, क्या आप इस बात से रिलेट कर पाए?
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Sanatan World Cup Sports and Cultural Incorporated brings you Valentine's Buffet Restaurant, Lal's Transport in Ram's Group of Companies, 11th Sanatan World Cup 2026, hosted by NZ Sanatan Sports and Cultural Incorporated from September 30th. Auckland comes alive with soccer, netball, volleyball and golf teams from New Zealand, Fiji, Australia, Canada and America, competing across Bill McKinley Park and local venues. Unity through sport, culture and community. Contact Tunman Chairperson Jiten Lal on 021-452-503. Stay tuned to Hub, your official media partner.
3: Wo, Indelible Homes wali kahani sunao na. The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
7: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
8: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था.
10: फिर ये घर कैसे?
11: अरे ये तो Logic Finance के गुरु Kendola का कमाल है.
12: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
9: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
13: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु Kendola को on 0800 Logic. Guru.
14: At Bunnings, lowest prices are just the beginning, and you can also earn Bunnings rewards in every aisle. Whether you're just popping in or stocking up for a project, a trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Simply download the Bunnings app and join Bunnings Rewards today. T's and C's and exclusions apply.

0: ऑफिस शाउट आउट में आज न्यूलैंड से मुझे रीमा आप सुन रही हैं. थैंक यू सो मच. एंड आई नो यू एंड योर सिस्टर इन लॉ इन्जॉय लिसनिंग टू हम. एंड ऐसे में जब आप लोग सुनते हैं ना और फिर जब आप लोग उसके बाद अपना फीडबैक देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस. एंड इसी के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें से एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. जो भी हमारे साथ साथ इस समय उबर ड्राइवर हैं जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए. अगर आपका क्लेम यू नो है विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, तो इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड नाउ, क्योंकि क्लेम्स मैनेजर जो हैं अब आपके टच में रहने वाले हैं. अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो कर सकते हैं. इनटेक फॉर इज़ नाउ ओपन. लेकिन एक चीज़ है कि इनके फ़ोन की टीम जो है करंटली जो नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज की, दे आर रनिंग टू द फुल कैपेसिटी. उनके पास कॉल उठाने को शायद वक्त ही नहीं होगा, या कुछ बेटर आइडिया जो उन्होंने शेयर करने के लिए कहा है आपके साथ वो है nyfservices.com के ज़रिए आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं. तो मेक श्योर उबर ड्राइवर्स, आपने ध्यान से इसे सुन लिया है, nyfservices.com. आज कुछ गाने मैं ऐसे बजा रही हूँ अलग अलग. पहला गाना जब मैंने बजाया ना, देन आई रियलाइज भाग मिल्खा भाग में दिव्या दत्ता का आज बर्थडे है. वेरी वेरी फाइन, स्ट्रॉन्ग, फैंटास्टिक एक्ट्रेस. और कल जो है बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, आई थिंक इट्स टुमारो इट्सेल्फ, जहाँ तक मुझे लगता है शायद रणबीर कपूर अपना बर्थडे लगता है कि कल के दिन मुझे लगता है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर. नहीं, उनका बर्थडे नेक्स्ट वीक में है. बट कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कि 28th को 26 बना दिया, 26 को 28th. आज नहीं, कल एक्चुअली चंकी पांडे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप मुझे 5599 पे जरूर टेक्स्ट कर सकते हैं.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

ईट बेटर लिव बेटर। वैसे एक बात बता देती हूँ, एक कंपनी है अपाहट में, जितने लोग वेलिंगटन से सुन रहे हैं, ऑटो प्राइड कार्स लिमिटेड जो अपाहट में है, इनको कन्विक्ट किया गया द मंथ ऑफ मे इन रिलेशनशिप टू टू चार्जेस जहाँ पे नॉन एक्सप्लॉयड किया टेम्प्रेरी एंड अनलॉफुल वर्कर्स। और ये कनेक्शन जो है, ये ट्रीटमेंट जो है, ये इन माइग्रेंट वर्कर्स पे 2023 से करते चले आ रहे, जो कि न्यूजीलैंड आए थे ऑन विजिटर वीज़ा और उसके बाद उनको रिक्रूट किया ऑटो प्राइड कार्स ने। अब दोनों को लंबे लंबे आज पे कैश पे काम करवाया जा रहा था विदाउट एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, टैक्स रजिस्ट्रेशन और बेसिक लॉ प्रोटेक्शंस। दे वर्क फॉर 6 डेज अ वीक, टिपिकली 9 आवर्स अ डे, एंड दे वर पेड $100 कैश पर डे। माय गुडनेस, आवरली रेट ऑफ $11, मिनिमम वेज भी नहीं था। दिस इज अलार्मिंग ऑनेस्टली। तो उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस भी लग चुके हैं, एंड या बी वेरी वेरी केयरफुल। आप देखिए, उनको जो कार कंपनी जो है, ये ऑटो राइडर्स, इनको 170,000 का फाइन लगा है।

ईट बेटर लिव बेटर, बट एक बात है, इस दुनिया पर हमें आना भी है, जाना भी है। वेटरन एक्टर कॉमेडियन मुश्ताक खान जो है आज सुबह गुजर गए एट द एज ऑफ 56। बहुत एक्सटेंसिवली हिंदी सिनेमा में इन्होंने काम किया, हम है राही प्यार के, जोड़ी नंबर वन, वेलकम, कुछ ऐसे ब्यूटीफुल मूवीज़ में इन्होंने काम किया। एंड ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज बैटलिंग विद कैंसर। और यही कह सकती हूँ, हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इनकी यू नो वेलकम में इनका जो कैरेक्टर था बल्लू के नाम से काफ़ी फेमस था, एक डिसेबल्ड हॉकी प्लेयर जो इन्होंने अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और अनिल कपूर के साथ, कैटरीना कैफ के साथ जो मूवी में इन्होंने काम किया, ही वाज जस्ट टू गुड। और इसके साथ साथ गदर टू में, स्त्री टू में भी ये हमें नज़र आए। सो रेस्ट इन पीस, इतना ही कहना चाहती हूँ। ड्रीम डायरी आपके लिए खुल रही है, ज़रूर कुछ है तो बताइए।

0: डायरी
1: ड्रीम डायरी में आपने लिख के भेजा है दैट यू नो योर वाइफ ड्रीम्ड ऑफ अ बेबी बॉय एंड शी स्टिल नॉट यू नो दे जस्ट मैरिड एंड उनको बेबी भी नहीं हुआ है. बेसिकली ये जैसे कि कल मैंने बताया था आपको कि एक बेबी बॉय सिंबलाइज करता है अ बॉय स्पेशली ट्रेट्स ऑफ स्ट्रेंथ विल पावर एक्शन लॉजिक. ये ट्रेट्स आपकी शायद लाइफ में रोज वो चलती ही चलती होंगी. एक बेबी एक बच्चा एक बेबी बॉय सिंबलाइज करता है ब्रेन चाइल्ड ऑफ समथिंग न्यू ऑफ अ ब्रांड न्यू गोल या कोई हॉबी किस तरह से आप उसे लेते हैं एक पर्सनल ग्रोथ आपकी जो होती है. समटाइम्स एक जो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है किसी के अंदर कि भाई फैमिली में लोग कहते रहते हैं अरे शादी हो गई अब तो बच्चा भी होना चाहिए यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ स्टोरीज एंड थिंग्स. ये एंग्जाइटीज़ होती हैं आपके अंदर और कभी कभी ये एंग्जाइटीज़ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की जो होती हैं वो ट्रिगर करने लग जाती हैं आपके विजन के अंदर. डोंट फील यू नो कि कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा. इट कुड बी अ न्यू चैप्टर विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून इन योर लाइफ. हो सकता है फॉर अ न्यू जॉब फॉर अ न्यू रिलेशनशिप फॉर अ मेजर लाइफ चेंज. तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन. सो जस्ट टेक इट ईजी इतना ही कहना चाहती हूँ. लेकिन हाँ आप कम्युनिटी में क्या खास करते हैं हमें ज़रूर बताइए क्योंकि हम चाहते हैं आपकी कम्युनिटी की आवाज़ बनना. श्री राम मंदिर में पूज्य राजन जी जो हैं 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 7 से 9 बजे के दरमियान वहाँ पर प्रवचन करने वाले हैं. आप ज़रूर यहाँ पर पहुँच सकते हैं. वेद प्रचार हफ्ता 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर है आर्य समाज इन न्यूजीलैंड 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटू में 6:20 पे एंड दिस इज़ फ्रॉम 28th of September टिल 4th of October. इसी के साथ साथ मैनेकाओ वेलोड्रोम पार्क मैनेकाओ में 3rd October के दिन 1 बजे दोपहर से लेकर रात 9 बजे तक आपके लिए NZI कम्युनिटी ट्रस्ट एंड AMI आपके लिए लेकर आ रहे हैं दिवाली सेलिब्रेशंस. DJ हैं वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं फन राइड्स हैं बहुत कुछ होने वाला है. तो आप इस दिवाली सेलिब्रेशन में जरूर पहुंचिए.
0: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.
1: हमारे आप पॉडकास्ट को तो डेफिनेटली ध्यान से सुनते चले जाते हैं और आपको बताना चाहती हूँ अनफिल्टर्ड में सैंडी रूस भी किसी न किसी से बात करते हैं. उन्होंने बात की इस बार तान्या पिंटो से जो कि एक सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट हैं और ये आपको बताना चाहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गॉन योर मनी योर प्रॉपर्टी. देखो आज मैं कैसी हैवी बातें कर रही हूँ इतने प्यारे प्यारे दिन पे. बट डोंट वरी लेट्स गेट ऑन टू द वर्क. अगर आपको इनका पॉडकास्ट सुनना है 5599 पे आप ड्राइव लिख के टेक्स्ट कर सकते हैं. वेलकम फिल्म में थे मुश्ताक.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो चलिए अब आपको लेके चलती हूँ एक ऐसे गाने की तरफ जिस फिल्म में मुश्ताक जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोल अदा किया था, एंड आई थिंक वी ऑल रिमेम्बर्ड हिम, हम्बल, जेंटल, वेरी काइंड। आई हैव पर्सनली मेट हिम इन मुंबई एज वेल, एंड इट रियली बिकम्स रियली सैड व्हेन यू हियर थिंग्स लाइक दिस। बट चलो, गाना आपके लिए आ रहा है, हम है राह प्यार के, फिल्म का।

0: ब्रांच नहीं है।
1: क्या बोलते हैं नेजी दबा, क्या बोले ले बमाए, अपन कुछ करते ना यार अपने पब्लिक के लिए, करते ना अबा पटेल लोग के लिए भाई।

0: My time with Kashika.
1: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, अभी तो नहीं.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
0: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की?
2: बाली बुला रहा है.
0: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती.
2: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
0: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
1: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
6: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
8: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
7: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
0: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
0: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
12: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में. बिलकैट रियल एस्टेट एंड B&W डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट JW मैरियट ऑकलैंड, 10 AM टू 8 PM. देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड. डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन. रजिस्टर नाउ, विजिट bilcaps.com. प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स.
13: Hum, time check.
14: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
13: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. The cost of living remains New Zealand's top concern ahead of this year's election. Ipsos has released its latest monitor, which also saw unemployment overtake housing for only the second time since 2018. Managing Director Karen Hercock says it's sitting in fourth behind healthcare and the economy.
16: This is the highest we've seen unemployment for some time, highest level since November 2020.
15: The average price of 91 octane petrol has soared to $3.42 a litre, with the cheapest option in Auckland's Epsom. Gas be showing a rise of nearly 50 cents over the last 4 weeks, and diesel is also up. A new region took out the top spot for the country's most expensive rental market in August. Trade Me data showing Otago outpaced Auckland and the Bay of Plenty. Spokesperson Casey Wild says market factors drove the increase.
17: Between student housing cycles, the winter ski season and tight local inventory, supply just couldn't keep up.
15: And researchers overseas believe some sick African elephants are using plants to cure themselves. A herd in Kenya was seen consuming 35 different plants, 25 of which are known to have medical properties. In sport, Golf First and the USA lead the international team 3-2 after the opening day of four ball matches at the President's Cup in Chicago. Kiwi Ryan Fox and Aussie Adam Scott lost their matchup. Despite trailing, team captain Jeff Ogilvie says it's an encouraging start.
18: 2-3, we'll take that. The boys have got a round under their belt now.
15: And in sailing, an ominous performance from Peter Burling, winning all three practice races with Luna Rossa at the America's Cup preliminary regatta in Italy.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
19: Hum par shok soochnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
20: Suchit kiya jata hai ki Shri Ramchandra, mool nivasi Navanava, Nandera Fiji ke swargye Shri और श्रीमती महादेव लाल मठी राखी राखी फिजी के सुपुत्र का आज प्रातः सुबह 1 बजे हैमिल्टन अस्पताल न्यूजीलैंड में शांतिपूर्वक निधन हो गया। वे कस्तूरी चंद की प्रिय पति और रीना सिंह और कैलाश चंद हैमिल्टन के स्नेही के पिता थे। अंतिम संस्कार कैलाश चंद्र जी की जानकारी के लिए आप 0273852026 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने। सूचित किया जाता है कि रामचंद्र मूल निवासी नवनावा नंदेरा फिजी के स्वर्गीय श्री और श्रीमती महादेव लाल मट्टी राखी राखी फिजी के सुपुत्र आज प्रातः सुबह 1 बजे हैमिल्टन अस्पताल न्यूजीलैंड में शांतिपूर्वक उनका निधन हो गया। वे कस्तूरी चंद के प्रिय पति और रीना सिंह और कैलाश चंद हैमिल्टन न्यूजीलैंड के स्नेही के पिता थे। अंतिम संस्कार के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी के लिए कैलाश चंद्र से ऑन 0273852026 पर।
19: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
13: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा। प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
20: मौसम की तरफ अगर हम देखें तो भाई मौसम आज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। दी हाइज ऑफ 16, ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 10, क्लाउडी डे रहेगा, कुछ शावर्स एक्सपेक्टेड हैं, बादल शाम के समय आपको नजर आएंगे। फील्स लाइक 13 डिग्रीज, 620 पर सनसेट बताया गया है।

की घड़ी में समय सुबह की 11:05 होने वाले हैं। आपका साथ निभा रही हूँ मैं काशिका 12 बजे तक। और ऐसे में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे अभी मुझे सुन रहे हैं, आई वुड लव टू वेलकम यू ऑल माई टाइम में मेरे साथ, काशिका के साथ। ये 12 बजे तक आपका मेरा साथ डेफिनेटली बना रहेगा। बाय द वे, एक और चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आज का एक सफ़र जो है 6 वर्ड स्टोरी का हम ख़त्म करेंगे फॉर द टेलीफोन। अब टेलीफोन से रिलेटेड आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 5599 पे आप अपनी 6 वर्ड की स्टोरी मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं एक रील बनाऊं और फेसबुक और इंस्टा पे ऐड करूं। सो ये कशिश फूस के साथ जाने से आपके लिए 10 से 12 बजे तक मुमकिन हो जाता है। और ये कशिश फूस जिनकी ओर से जब माटा आ जाता है तो टेस्ट में, एक स्वाद में एक अलग सा तड़का लग जाता है। और आज का दिन है शुक्रवार।

0: संडे से डेलाइट सेविंग का यू नो इफेक्ट शुरू होने वाला है. और जब मैं कहती हूँ इफेक्ट, तो एक होता है सर्कैडियन रिदम. मॉर्निंग की डेलाइट जो होती है आपके इंटरनल क्लॉक को सेट करती है और आपको अलर्ट फील कराती है ड्यूरिंग द डे, और फिर आपकी जो मेलेटोनिन्स होते हैं वो रात को रिलीज़ करते हैं. तो आपके जो मूड होते हैं वो लाइट के साथ ट्रिगर होते हैं, और ये केमिकल आपको इम्प्रूव करता है, आपके फोकस, आपके इमोशनल बैलेंस को और आपकी हैप्पीनेस को. रेगुलर डे टाइम की जो एक स्लीप होती है ये आपको हेल्प करती है, विच प्रिवेंट्स इंसोमिया और ये स्लीप साइकिल एज वेल. ये ब्राइट लाइट जो होती है ये इफ़ेक्ट करती है हमारे अलर्टनेस पे और हमारी एक परफॉर्मेंस के ऊपर. ये एक चीज़ जो है ये हमें कई लोगों को इम्पैक्ट करती है. कई लोगों को ये नेचुरल लाइट जो है, इट्स अ वंडरफुल थिंग ऑफ कोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर अस कीवीज वी डोंट गेट इनफ लाइट ड्यूरिंग द डे. कभी बादल होते हैं, कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है, कभी नहीं होता. एंड लाइट एंड स्लीप प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस. लैक ऑफ सनलाइट हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी काम करना शुरू कर देता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप मोस्टली अपने आप को जब यू नो डेलाइट सेविंग की बात आती है, किस तरह से ये इफ़ेक्ट करने लग जाता है हमारी बॉडी को. कुछ लोग एक एक हफ्ता लगा देते हैं, एंड यू नो जो वो हफ्ता भर होता है चैलेंज की तरह आपके लिए शुरू होता है. मोस्टली कहा जाता है इट्स अ 5-10-20 रूल फॉर सनलाइट. सिंपल गाइडलाइन के हाउ मेनी मिनट्स शुड यू स्पेंड आउटसाइड इन द मॉर्निंग टू सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक एंड इम्प्रूव योर स्लीप. कहते हैं कि जो सनी डे होता है 5 मिनट बाहर ज़रूर निकाला करें. क्लाउडी डे होता है स्पेंड मिनिम यू नो 10 मिनट्स आउटसाइड क्लाउडी डे वाले दिन. रेनी डे डार्क डे है स्पेंड 20 मिनट्स आउटसाइड. बाहर जाते हैं तो आप विंडो ग्लास से देखते हैं जो लाइट को ब्लॉक कर देती है, तो एक लाइट की वेवलेंथ जो है आपकी आँख को ज़रूर चाहिए होती है. स्टेप इनटू द पोर्च बालकनी इन योर ऑन योर डेक और वेर एवर यू कैन. जितना आप यू नो इस लाइट को लेंगे विद इन एन आवर ऑफ वेकिंग अप द मोर बेनिफिशियल इट विल गेट. ये नेचुरल लाइट आपकी आइज को जब हिट करती है इट इज़ सेफ. Never stare directly at the sun is what is very very important. Daylight saving ये आपके mood, आपकी tiredness आपकी बढ़ाती है. और benefits क्या हो सकते हैं इसके? ज़्यादा समय मिलता है आपको daylight में.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J Crew. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer, $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer, $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
6: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
6: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
10: Briscoe's half-price birthday blowout is on now with half price off the entire store. That's right. Every single item in store nationwide is half price. All stores open till 9 tonight. Plus, we're giving away $25,000 cash.
11: See online for T's, C's and exclusions.
1: When India
4: कम्स टू टाउन आओतियारोवा का फील ही कुछ अलग हो जाता है टिकट्स अब अवेलेबल है nzc.nz पर बी देयर क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं ये है ब्लैक कैप्स वर्सेस इंडिया There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
11: अच्छा
7: बताओ तो अंडा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
13: My Time with Kashika brought to you by Kashish Foods eat better live better
14: Mid Morning Maza
0: Six-word story. Okay, मैं सिक्स वर्ड स्टोरी की तरफ तो पहुँच चुकी हूँ बट मेरे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट आए थे और आज के जो टेक्स्ट आए हैं उसमें है जस्ट वन स्क्रोल सनराइज केम अर्ली जस्ट वन स्क्रोल सनराइज केम अर्ली ही लुक डाउन शी वॉक्ड पास्ट शी लुकड डाउन ही लुक डाउन शी वॉक्ड पास्ट Left the notification, ignored the person. Left the notification, ignored the person. Thumb scrolls up, life passes by. Thumb scrolls up, life passes by. Battery died, real life finally started. Battery died, real life finally started. Oh, this was really nice. I think, good one. Text still remains. The sender doesn't. Whoops. ये तो बहुत ही अच्छा है द टेक्स्ट द नहीं सॉरी टेक्स्ट स्टिल रिमेन्स द सेंडर डजंट बहुत सारा डीप मीनिंग है इसके साथ
13: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
1: तो जब मैं बात कर रही हूँ अबाउट यू नो लाइफस्टाइल के बारे में, तो लाइफस्टाइल में आपको पता है दुबई से बेहतर कोई जगह नहीं है. और दुबई का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो होने वाला है जहाँ पे हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स विद ज़ीरो टैक्स की अगर आप तलाश में हैं तो यही वो जगह है जहाँ आपको पहुँचना है. JW Marriott, ये बिगेस्ट दुबई का प्रॉपर्टी एक्सपो होने वाला है जो होने वाला है कल एंड परसों 26 एंड 27 को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे एट द JW Marriott. और यहाँ डेवलपर प्रिंसिपल्स जो हैं आप इनसे मिल सकते हैं जो आपको एक्सक्लूसिव डील्स जो हैं वो दिला सकते हैं और साथ साथ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ज़ीरो अपफ्रंट DLD फीस ऑन क्वालिफाइंग यूनिट्स, डिफर्ड पेमेंट प्लान और साथ साथ ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं रिटर्न्स ऑफ अप टू 20% ROI. अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट करना चाहते हैं या एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक 1-to-1 कंसल्टेशन जो है आप कर सकते हैं विद द डिवेलपर. buildcaps.com के ज़रिए आप ऑनलाइन बुक कीजिए या बेटर रहेगा कि JW Marriott कल आप पहुँच ही जाएँ. मैं होने वाली हूँ वहाँ पर सुबह 10 बजे से एट द JW Marriott कल सैटरडे, तो आपसे बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो में मेरी मुलाकात होने वाली है आपके साथ.

0: ईट बेटर लिव बेटर एंड कभी कभी जब बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं हमें लगता है क्या करें. सो 2050 का हेल्थ डेमोग्राफिक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. ये एक चीज़ है, इट्स वन फैक्ट दैट न्यूजीलैंड की हेल्थ सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव ओरियन हेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रैड पॉटर, इन्होंने बताया कि बाई 2050 मोर देन 1.5 मिलियन न्यूजीलैंडर्स will be of the age of 65 and that's compared to 800,000 today. Aur ye bhi unhone bataya ki we are going to have a change in the way we deliver health care holistically in New Zealand. Ab ye demand se ye meet up to nahi kar pa rahe hain with about more hospitals, more clinics, more funding. That part, however, they will be still working on this, but yeah, this is something very alarming. Mujhe bhi nahi pata tha ki aisa abhi kuch hota hai.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: रेस्क्यू में रिसाइकिल में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने मील को प्लान किया कर, राइट अमाउंट ऑफ फूड विद राइट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इनका इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना करें, एक लिस्ट बनाएं क्या क्या लेफ्ट ओवर्स अगर आपके होते हैं। एक वीकली प्लान जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने जैसे उस दिन कहा था ईट मी फर्स्ट, वो एक प्रायोरिटी बना लीजिए अपने, चाहे फ्रीजर्स में हो या आप अपने फ्रिज में, ईट मी फर्स्ट का एक कॉलम बना लीजिए। डेफिनेटली एक विजिबल स्पॉट अगर आप सोच लेते हैं, लेबल करेक्टली कर लेते हैं, अपने घर के लोगों से कहें देखो इस चीज़ को जल्दी फिनिश करो, ईट मी फर्स्ट वाला जो रैक है उसमें जल्दी खाओ, और रेगुलरली इसको आप मॉनिटर करते चले जाएं। प्रॉपर स्टोरेज इज़ द की, जहाँ पे जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं जो हमारे बच जाते हैं उनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में लगा देते हैं विद ईट मी फर्स्ट स्टिकर्स, और डेट के साथ आप उसमें ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लेफ्ट ओवर्स इन द फ्रिज फॉर अप टू 2 days एंड इन द फ्रीजर विद लॉन्ग शेल्फ लाइफ। एंड आई होप दीज थिंग्स हेल्प अस।
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है आपके लिए शुक्रवार. मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दिन कहलाएगा सोमवार. हाँ भाई अभी के लिए चलती हूँ लेकिन सोमवार की सुबह 10 बजे वेट मेरी रील एकदम 6 स्टोरी की तैयार हो चुकी है और एकदम आके एकदम सामने मेरी पॉपअप हो गई. लेकिन हाँ फेसबुक के पेज पर आ चुकी है, इंस्टा पे बहुत जल्दी आ जाएगी. तो अपना ख्याल रखिएगा, आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, डे लाइट सेविंग में अपना भी ध्यान रखिएगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. चंकी पांडे जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई थिंक ही वॉज हिलेरियस इन दिस मूवी. This is Kashika signing off from the Ham Studios. Look after yourselves. Take care. Bye-bye.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।